मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम चैनल के 909 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड के 16.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, मोबाइल ऐप के न्यूज़ जो ऑन एयर ऐप पर। ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की षष्ठी तिथि, तदनुसार दिनांक 28 जुलाई 2026 ईस्वी। प्रातः के 5:56 होने वाले हैं। अब हमारे केंद्र से आज के प्रसारण मंगल ध्वनि के साथ आरंभ होते हैं।

मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये

मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी में, तत्पश्चात अंग्रेजी में।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। बिहार और असम की राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। बिहार के गृह विभाग ने आश्वासन दिया है कि वे 26 जुलाई को शाम 6 बजे से पहले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी, आपराधिक शिकायतें और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया तुरंत शुरू करेगा। आधिकारिक बयान के अनुसार समय सीमा से पहले दर्ज मामलों के संबंध में गिरफ्तार या हिरासत में लिए व्यक्तियों को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे से पुनः शुरू होगी। कल नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। मानसून सत्र के लगातार छठे दिन भी नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण कल संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। विपक्ष के हंगामे के बीच कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुच्छेद साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे।
1: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मीन तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है तो कांग्रेस भी हमने अपील किया फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं कि आप बोलिए।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक करने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की है। वे नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित इक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। ये समझौता कल नई दिल्ली में पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुआ। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाएं भारत की लोकतांत्रिक और विकास यात्रा की आधारशिला हैं। श्री सिंह ने नई दिल्ली में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये पहल विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप आर्थिक रूप से सशक्त, तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर पंचायतों के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को जांच दल में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर शामिल करने का निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह में पहली स्थिति रिपोर्ट पेश करेगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें ये दावा किया गया था कि केंद्र सरकार अगले महीने की 25 तारीख की रात से भारत में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाएगी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को निराधार बताया है और कहा है कि सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। इकाई ने नागरिकों को केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने की सलाह दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने चीन यात्रा के दौरान पेइचिंग में चीन के उप विदेश मंत्री हुआ चेनयिंग से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। विदेश सचिव ने भारत और चीन के बीच साझेदारी की दृष्टि को आगे बढ़ाने और व्यापार तथा आर्थिक संबंधों में पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के अवसरों पर भी चर्चा की।

वंदना कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। अपने साथी कुंदन कटारिया का, आपका साथी हाजिर है ये भक्ति रचनाओं का कार्यक्रम लेकर। प्रभु श्री राम केवल एक नाम नहीं बल्कि मर्यादा, धर्म और आदर्श जीवन जीने का मार्ग है। उनकी भक्ति का अर्थ है मन में करुणा रखना, अपने वचनों का पालन करना और हर परिस्थिति में सच्चाई के मार्ग पर चलना। रोम रोम में राम का वास होना ही सच्ची भक्ति है, जहां अहंकार मिट जाता है और केवल समर्पण बचता है। आइए आप और हम सभी आज के वंदना कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं प्रभु की आरती के साथ।

श्रोताओं, भोलेनाथ की भक्ति सरल, सच्ची और अहंकारहीन जीवन का आधार है, जो मन को शांति और कठिन परिस्थितियों में अटूट विश्वास देती है। भगवान शिव को महाकाल और भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि वे सिर्फ एक लोटा जल और सच्चे मन के भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। आइए भोलेनाथ को याद करते हैं।

श्री बालाजी की भक्ति हमारे जीवन में असीम शक्ति, शांति और अटूट साहस का संचार करती है। उनके दरबार में आने मात्र से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और मन को शांति मिलती है। बालाजी अपने भक्तों के सभी संकट और भय पल भर में हर लेते हैं। उनकी पूजा से जीवन में संयम, बल और सही निर्णय लेने की बुद्धि मिलती है। आइए बालाजी को याद करते हुए ये भजन सुनते हैं।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति रचनाओं का कार्यक्रम वंदना, आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से। श्रोताओं, जब माता रानी शेर की सवारी पर आती है तो इसका अर्थ है बुराई का नाश और भक्तों की रक्षा करना है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सिंह शक्ति, साहस और धर्म का प्रतीक है। शेर को सबसे ताकतवर और निडर माना गया है, जो

गोविंद मेरो हे, गोपाल मेरो हे। भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण और अगाध प्रेम का प्रतीक है ये वाक्य। केवल एक पंक्ति नहीं, बल्कि भक्त का अपने आराध्य के साथ अटूट रिश्ते का अनुभव है।

बिल्कुल श्रोता हूँ। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। भगवान झूलेलाल को वरुण देवता का अवतार माना जाता है। उनकी भक्ति हमें जल, जीवन और एकता का संदेश देती है। भगवान झूलेलाल का वास्तविक रूप जल और ज्योति माना जाता है। दीपक की ज्योति हमें अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाती है। आइए भगवान झूलेलाल को याद करते हैं इस भजन के माध्यम से।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से अपने साथी कुंदन कटारिया के साथ। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आइए सुने चिंतन। आज का विषय है जीवन के सिद्धांत और वाचक स्वर हैं शिवदयाल शर्मा के।
1: जीवन के सिद्धांत। जीवन में कुछ बातें हमेशा स्मरण रखनी चाहिए कि सिद्धांतों पर चलना मुश्किल अवश्य है, परंतु असंभव नहीं है। अथवा सिद्धांतों पर चलकर दुनिया से हारना झूठ के दम पर जीतने से कई गुना बेहतर है। जीवन में हार या जीत से भी बढ़कर कोई चीज महत्वपूर्ण है तो वह आपके सिद्धांत है, मानवीय मूल्य है। सिद्धांत अर्थात सच्चाई का रास्ता, श्रेष्ठता का पथ और सच्ची मानवता जो आदर्शवादिता एवं शास्त्रानुकूल परिपथ है। जितने भी हमारे महापुरुष और दार्शनिक हुए हैं, उनकी महानता के पीछे बस एक ही कारण था कि उन्होंने जीतने के बजाय हारना स्वीकार किया, परंतु अपने सिद्धांतों का परित्याग कभी नहीं किया। भले ही वे कम बोलते थे, मगर सटीक और नपे तुले शब्द जो सत्य हो वही बोलते थे, क्योंकि कम बोलना कोई अज्ञानता नहीं है, बल्कि जितने भी महापुरुष हुए हैं वे मितभाषी ही हुए हैं। पूत के पांव पालने में ही पहचान लिए जाते हैं, यानी बचपन से ही उनका कम बोलने का स्वभाव होता है। इसका एक सर्वमान्य सिद्धांत है, संस्कृत भाषा में एक सूक्ति है, मही यांसह प्रकृत्या मितभाषिण है, अर्थात महान व्यक्ति स्वभाव से ही कम बोलने वाले होते हैं। सत्य हमेशा कड़वा होता है, इसीलिए सत्य का मार्ग सुगम तो नहीं होता, निश्चित ही सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्कृष्ट जरूर होता है। पग पग पर आपकी परीक्षाएं होंगी, कदम कदम पर आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, तब जाकर इन सब के बाद एक समय ऐसा भी आएगा जब प्रत्येक जुबान पर आपके ही किस्से होंगे। अतः सिद्धांत वह दृष्टिकोण है जिसके द्वारा हम अपने जीवन को नियंत्रित करते हैं। यदि हमारे सिद्धांत पूर्ण रूप से मानवीय मूल्यों अथवा वेद शास्त्रों पर आधारित है, तो हम जान सकते हैं कि हम उस मार्ग पर चल रहे हैं जिसको सृष्टिकर्ता ने हमारे लिए ही बनाया है। हम उस अर्थ को समझ सकेंगे, न कि अपने मतलब के अनुसार उसकी व्याख्या करेंगे। हम जितना अधिक सच्चे सिद्धांत का मनन और चिंतन करेंगे, उतना ही परा अपरा शक्ति को पहचान भी सकेंगे। अतः यह स्पष्ट हो जाएगा कि अगर आप सिद्धांतवादी हैं तो जीत से भी ज्यादा चर्चे तो आपकी हार के होंगे। उदाहरण से हम विचार करें तो पाएंगे कि महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह आदि इस बात का जीता जागता प्रमाण है। सिद्धांतवादी होने का तात्पर्य है कि वह व्यक्ति अपने नियमों मूल्यों का पालन करता है और अपनी प्रत्येक क्रिया के प्रति सतर्क और ईमानदार रहता है। स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि सिद्धांतों के माध्यम से व्यक्ति सच्चा एवं जिम्मेदार जीवन जी सकता है। अतः व्यक्ति के सिद्धांतवादी होने या न होने की आवश्यकता समुचित रूप से उसके व्यक्तिगत प्राथमिकताओं, मान्यताओं और जीवन दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। सिद्धांतवाद व्यक्ति के विचार और मूल्यों के प्रति उसके गहरे या स्थायी विश्वास का प्रतीक होता है, जो उस व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर उसके निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। अतः सिद्धांतवादी व्यक्ति को प्रत्येक क्षेत्र में देर से ही सही सफलता अवश्य मिलेगी। सिद्धांत

0: राष्ट्रवादी होना जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिस जीवन में सिद्धांत नहीं, वह जीवन कभी भी श्रेष्ठ एवं एक आदर्श नहीं कहा जा सकता। जीने को तो पशु भी अपना जीवन यापन करते हैं, खाना पीना, उठना बैठना, बच्चे पैदा करना तो वे भी करते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्यमेतत् पशुभिर् नराणाम् धर्मो हि तेषां मधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। अर्थात कोई सिद्धांत या नियम नहीं है तो मनुष्य पशु तुल्य है।
1: जीवन के सिद्धांत, इस विषय पर आप चिंतन सुन रहे थे शिवदयाल शर्मा से। लीजिए सुनिए ये संदेश।

बिल्कुल श्रोताओं, ये है आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय। अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:10 पर किसान भाई अपना कार्यक्रम सुनेंगे। खेतीहरा वास्ते जानकारी का विषय रहेगा पशुओं के आहार में नमक का महत्व। 7:20 पर आप सुना करते हैं श्री रामचरित मानस गान। आज आप सुनेंगे भाग संख्या 318 को। कार्यक्रम सुप्रभात आप सुना करते हैं सुबह 7:30 पर। इस कार्यक्रम में हम आपसे कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे और सुनवाएंगे कुछ फिल्म गीत। सुबह 8 बजे वक्त रहते हैं समाचारों का, हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाते हैं। भजनों पर आधारित कार्यक्रम सुगम संगीत आप सुनेंगे सुबह 8:45 पर। राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम मरुमंगल आप सुनेंगे सुबह 9:10 पर। आज के हमारे कलाकार होंगे चंपा मेथी और उनके साथी। फिल्म संगीत आप सुनेंगे सुबह 9:30 पर। गा मेरे मन गा, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 10 बजे। कार्यक्रम विवरण आप सुना करते हैं हमारे केंद्र से सुबह 6:50 पर, दिन में 12 बजे और संध्या 6 बजे। एक ही शीर्षक से ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 12:05 पर। गजलों पर आधारित कार्यक्रम सुगम संगीत आप सुनेंगे दिन में 12:30 पर। खेत खलियान कार्यक्रम 12:50 पर। जानकारी का विषय रहेगा फर्टिगेशन अपनाएं उपज बढ़ाएं, दिन में 1 बजे। हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से दिन में 1:05 पर। भाई ने अपना कार्यक्रम सुनेंगी घर आंगन, दिन में 2 बजे वक्त रहता है समाचारों का, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाते हैं। उर्दू सर्विस के कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। युवा साथी अपना कार्यक्रम सुना करते हैं युववाणी संध्या 5 बजे। सिरायकी के समय रहेगा संध्या 6:05 पर। ग्रामीण श्रोता अपना कार्यक्रम सुना करते हैं चौपाल संध्या 7 बजे। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे भेंट वार्ता उर्वरकों का संतुलित उपयोग, वार्ताकार पृथ्वीराम से संजय बेद की बातचीत, प्रगतिशील किसान से श्रीपाल शर्मा की बातचीत। भक्ति संगीत आप सुनेंगे संध्या 7:45 पर। संसद समीक्षा रात्रि 8 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित की जाएगी। एक ही फिल्म से रात्रि 8:15 पर। स्पोर्ट्स स्कैन रात्रि 8:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे। राजस्थानी कार्यक्रम गोरबा

0: ज्ञानेश्वरी यादवं रजत पदक प्राप्त्यर्थम् अभिनन्दितवन्तः। अधुना भारतस्य पदकतालिकायाम् एकं स्वर्णपदकं, त्रीणि रजतपदकानि, एकं कांस्यपदकं च एवम् आहत्य पञ्च पदकानि सन्ति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काईरूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काईरूट एरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं भी दी। बिहार और असम की राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों पर दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। बिहार के गृह विभाग ने आश्वासन दिया है कि वह 26 जुलाई को शाम 6 बजे से पहले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी, आपराधिक शिकायतें और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया तुरंत शुरू करेगा। उधर असम के गृह और राजनीतिक विभाग ने बताया है कि विरोध प्रदर्शनों के संबंध में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ राज्य की किसी भी पुलिस प्राधिकरण द्वारा कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे से पुनः शुरू होगी। कल नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। मॉनसून सत्र के लगातार छठे दिन भी नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण कल संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। विपक्ष के हंगामे के बीच कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं।
2: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मीन तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है तो कांग्रेस की हमने अपील किया फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोर जोर के कहते हैं कि आप बोलिए।
1: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक आज सुबह संसद भवन में आयोजित की जाएगी। मंगल मिलन के नाम से प्रचलित ये बैठकें पारंपरिक रूप से संसद सत्र के दौरान मंगलवार को आयोजित होती हैं। इस बैठकों का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। ये समझौता कल नई दिल्ली में पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुआ। इस सहयोग का लक्ष्य एयर इंडिया के व्यापक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ साथ मंत्रालय की पर्यटन स्थल प्रचार पहलों का लाभ उठाकर भारत की वैश्विक पर्यटन क्षमता को बढ़ाना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक करने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की है। वे नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। मौसम विभाग ने केरलम के उत्तरी जिलों में तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। केरलम के 6 जिलों एर्नाकुलम, त्रिशूर, मल्लपुरम, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉट

0: limb deficiencies or reduced muscle power. In the same event, Shilpa K. Shila was upgraded to the bronze medal, further boosting India's tally. India Meteorological Department IMD has forecast very heavy rainfall today over parts of Chhattisgarh, Odisha, Delhi, Haryana, Chandigarh, Himachal Pradesh, Madhya Maharashtra, Punjab, South Interior Karnataka, Uttar Pradesh, Uttarakhand and Coastal Karnataka. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर, एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्स पर, ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। कार्यक्रम सुनिए खेतिहरा वास्ते। जानकारी का विषय है पशुओं के आहार में नमक का महत्व।
2: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों पशुओं द्वारा खाया जाने वाला जो नमक आप पशुओं ने ना खा वो साधारणतः नमक दो तत्व जहाँ सोडियम और क्लोराइड से मिलके बनेड़ो हुआ है और अपन इन अंग्रेजी की भाषा का माँ सोडियम क्लोराइड भी कह देवा और मोटा तौर पर आ दोनों तत्वों की पशुओं ने जरूरत हुआ है और बिया तो शरीर का माँ 0.2% तक सोडियम हुआ है और पशुपालक भाइयों शारीरिक माध्यम में अमल क्षार संतुलन बनाए रखने खातर भी नमक की जरूरत पड़े। नमक आंत का मां अमीनो एसिड और शर्करा का अवशोषण को भी काम करे और इन अलावा पशुओं ने नमक आप आहार का माध्यम से या फिर दूसरा खाद्य पदार्थों के माध्यम से खुआवा और शरीर में होने वाला जो को चयापचन है जो की क्रिया है पहले को नमक पशुओं को आहार खाना में चाव भी उत्पन्न करे क्योंकि नमक से लार बढ़ने की जिकी सहायता पशुओं ने मिला और लार से आहार का पचन का मां सहायक हुए। तो ये वास्ते आप मोटा तौर पर केस कहाँ का अपना पशुओं जो को आहार है बिंग लिए नमक की बहुत ज़्यादा जरूरत हो और अपने टेम सर पशुओं ने नमक है वो देना चाहिए क्योंकि कई बार यहाँ जगह पशु डिखर है या फिर कपड़ा लत्ता है या फिर दूसरे जगह कचरा है वो खाना शुरू कर देवे और अपने ये बात को पता लग जाना चाहिए कि पशुओं ने अब नमक की जरूरत है और ज़्यादा टाइम तक अगर पशुओं ने आहार गमा नमक ना मिले तो पशु की वह कि लकड़ी है या फिर खुद को पेशाब है खाना पीना शुरू कर दे तो अपना जगह वैज्ञानिक लोग है भी आप बात बताओ कि जगह पशुओं ने आप नमक ना खिलावा वहाँ पशुओं की जो भूख है वह 2-3 सप्ताह बाद गवा कम हो जाए। नमक की कमी से आहार की जो प्रोटीन और ऊर्जा को जो को प्रयोग है वो ठीक से कोनी होनी जगह की वजह से पशुओं का जो शारीरिक भार है वो भी कम हो जाए और दूध देने वाला जगह पशु है वहाँ दूध उत्पादन में भी बात करें आप भाई लोगों पशुओं ने आप नमक के तरीका से देश का और कितनी मात्रा में देश का तो जो दूध ना देने वाला जगह पशु है वन आप जो सोडियम की मात्रा है वह 1.67 ग्राम लेके 100 किलोग्राम तक का भार वाला पशु ने देश का ये दूध देने वाला जो पशु है खतरा आप ने 101.4 ग्राम जो को नमक है और पशु को अगर भार 1 क्विंटल का लगभग है तो आप अभी ने 101.4 ग्राम जो को नमक है वो अपने देना चाहिए है और जक्का पशुओं का वजन में बढ़ोतरी होने लगी तो व्यंग लिए आपने 1.56 ग्राम यानी कि 150 ग्राम जो को नमक है वो यानी कि यहाँ मांस का आकर रोज अगर आपने 1 किलोग्राम भार बढ़ यानी 150 ग्राम जो को नमक है वो 1 किलोग्राम रोज भार बदन वाला जगह पशु अपन आपने देना चाहिए यानी जगह भार 150 ले गए 600 किलोग्राम हुआ है तो अपन आप 150 ग्राम का लगभग नमक है वो देना चाहिए। अगर गर्भावस्था में पशु है तो बंग लिए आपने 1.5 ग्राम जो को नमक है रोजीना देनो है और जगह 190 ले गए 270 दिन का गर्भाधान की जो की अवस्था है वहाँ खतर आपने तो नमक जो को पर्याप्त हुआ है और जब तक वातावरण का तापमान की बात है तो 25 डिग्रियों ले गए 30 डिग्री तई है तो बी टाइम अपन 11 ग्राम जो को नमक है वो 100 किलोग्राम भार वाला पशु ने अपने देना है। अगर तापक्रम अपने आसपास को 30 डिग्री के लगभग है तो 44 ग्राम जो को नमक है वो 100 किलोग्राम का भार का पशु ने अपने देना चाहिए है। और इनके अलावा जगह अपने कुकड़ पालन भाई लोग कर रखे है तो कुकड़ है मुर्गी पालन है बंग लिए भी आहार गा में पर्याप्त नमक होने की बहुत ज्यादा जरूरत हो क्योंकि पर्याप्त नमक अगर टाइम पर आप ना देवा तो बंग की कमी चुकी हुआ है कि वृद्धि दर रुक जाए और अंडा देने की क्षमता है मुर्गियों का वह कम हो जाए। और इनके अलावा भाई लोगों अगर कुकड़ पालन का माँ आहार का माँ पान नमक की जिसकी मात्रा है वह पर्याप्त रूप से ना रखा जगह की वजह से क्यों हो जाए कि कुकड़ है मुर्गा है वे एक दूसरे का पंख नोचना शुरू कर देवे तो इन वास्ते अपने समझाना चाहिए कि अने नमक की जरूरत है। और मोटा तौर पर माना तो एक युवा पशु गाय है या फिर भैंस है बिना पा एक दिन का माँ साधारणतः लगभग 13 ग्राम साधारण नमक की जरूरत हो और वैज्ञानिक आ बात बताओ है कि 500 किलोग्राम प्रति ब्यांत दूध देने वाली जिसकी गाय है या भैंस है बिना लगभग 30 ग्राम नमक है वो रोजाना अपन ने देना चाहिए है। इनके अलावा गोवंश है भैंस है बकरियां है या फिर भेड़ है बंग दाने का माँ नमक की जिसकी मात्रा अब 1% तक का पा मिला सका और कुकड़ का दाने का माँ 0.5% की दर्शू नमक आप मिला सका तो इन तरह आप पशुओं का आहार गा माँ मुर्गी पालन गा माँ नमक का

0: आपको वो आहार गमा देना चाहिए ताकि अपना जगह पशु है वे बढ़िया गुजारो कर ले और अच्छो दूध उत्पादन भी आपने मिलते रहे। और नमक की वजह से भाई लोगों की एक पशुओं जो स्वास्थ्य है वो बढ़िया बने हुए है। तो आप बात हूँ ध्यान रखना ऐसा प्रणाम मैं चालू राम राम सा राम राम।
1: पशुओं के आहार में नमक का महत्व, इस विषय पर आप जानकारी सुन रहे थे कार्यक्रम खेतिहर वास्ते में। आइए सुने लोक भजन में विष्णु सागर को।

आप सुन रहे थे लोक भजन में विष्णु सागर को। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। श्रोतों आइए सुने श्री रामचरित मानस गान। आज आप सुनेंगे लंका कांड में भाग संख्या 318 को। कलाकार हैं रविंद्र साठे।

लंका में घमासान युद्ध हो रहा है। एक ओर श्रीराम तो दूसरी ओर रावण के जयघोष के साथ दोनों ओर के वीर सेनानी एक दूसरे पर चढ़ दौड़ते हैं। वानर और भालू भीमकाय शिलाखंड किले पर फेंकते हैं। राक्षसों के पैर पकड़ उन्हें धरती पर पटक देते हैं। श्री राम के प्रताप से वानर सेना राक्षसों के झुंड के झुंडों को मसल कुचल डालती है और चारों ओर राम का जयघोष गूंज उठता है। राक्षसों के समूह युद्ध स्थल से भाग खड़े हुए। नगर में स्त्रियों, बच्चों और विकलांगों का क्रंदन सुनाई देने लगा। नगर निवासी इस विपत्ति के लिए रावण को कोस रहे हैं। रावण ने जब अपनी सेना के पस्त होकर युद्धभूमि से भागने का समाचार सुना तो भागते सैनिकों को रोक चेतावनी दी, जो भी युद्ध में अपनी पीठ दिखाकर भागेगा मैं अपनी तलवार से उसे मार डालूंगा। मेरे दिए हुए भोजन पर पलने और भोग विलास करने के बाद अब तुम लोगों को प्राणों का मोह हो गया है। रावण से अपनी भर्त्सना सुनकर राक्षस योद्धा एक बार फिर युद्ध में आ डटे। सोचा, रावण के हाथों मरने की अपेक्षा लड़ते हुए शत्रु के हाथों मरना ही श्रेयस्कर है। नए उत्साह के साथ राक्षसों ने वानर सेना को त्रस्त कर दिया। अब भयभीत वानर भागने लगे। जिस समय हनुमान ने अपनी सेना में भगदड़ का समाचार सुना उस समय पश्चिमी द्वार पर मेघनाथ से उनका युद्ध हो रहा था। द्वार तोड़ना कठिन लग रहा था। हनुमान को अतिशय क्रोध हो आया। काल की भांति गर्जन करते हुए एक भीमकाय शिलाखंड लेकर वे लंका के किले पर जा चढ़े। फिर मेघनाथ के रथ को सारथी समेत छिन्न भिन्न कर दिया और लात से मेघनाथ की छाती पर ऐसा प्रहार किया कि वो धराशायी हो गया।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। आज आपने सुना लंका कांड में भाग संख्या 318 को। कलाकार थे रविंद्र साठी। मीडियम वेव 326.79 यानी 918 किलो हर्ट्स पर, FM बैंड के 100.1 मेगा हर्ट्स पर। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुप्रभात।

सुप्रभात कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। अपने साथी कुंदन कटारिया का आज का ये प्रोग्राम लेकर हाजिर है आपका साथी। बात करेंगे कुछ विषयों पर और सुनवाएंगे कुछ फिल्मी गीत। सबसे पहले बात करते हैं आपसे स्वतंत्रता सेनानी हमारे आदर्श। स्वतंत्रता सेनानी हमारे सच्चे आदर्श हैं क्योंकि उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। महात्मा गांधी जी, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे महान वीरों ने हमें देश प्रेम और एकता का पाठ पढ़ाया है। महात्मा गांधी जी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश को एकजुट किया। भगत सिंह ने देश के लिए कम उम्र में हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व कर अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी। उनके त्याग से हमें देश से प्यार करना और उसकी रक्षा करना सीखते हैं। वे सिखाते हैं कि कठिन समय में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उन्होंने जाति और धर्म से ऊपर उठकर देश को एक साथ जोड़ा। ऐसे थे हमारे स्वतंत्रता सेनानी और उनका आदर्श हम सभी को अपने जीवन में अपनाना चाहिए, तभी हमारा समाज और देश प्रगति करेगा। बातें और भी करेंगे श्रोताओं, इस बीच आपको सुनवाते हैं एक गीत। महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ में फिल्म पूरब और पश्चिम से। इस गीत को लिखा है इंदिवर ने और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: शोधों बात करते हैं राष्ट्र सेवा की। हमारी जन्मभूमि है जिसे हम अपनी मातृभूमि यानी कि माँ की भांति मानते हैं। इस देश में पल बढ़कर हम विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं, एक अच्छे जीवन को जीने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। हमारी जन्मभूमि ही हमें सभी प्रकार की सुख सुविधाएं और रोजगार देती हैं। हमें अपनी मातृभूमि से स्वतः ही प्रेम होना चाहिए। देशभक्ति का अर्थ है अपने देश के साथ प्रेम करना। ये मानव के हृदय में जलने वाली ईश्वरीय ज्वाला है जो अपनी जन्मभूमि को अन्य सभी से अधिक प्यार करने की शिक्षा देती है। देशभक्त अपने देश के लिए बड़े से बड़े त्याग करने के लिए आतुर रहते हैं और अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान होने के लिए सदा तैयार रहते हैं। देशभक्ति एक श्रेष्ठ गुण है। कहा गया है कि माँ और मातृभूमि तो स्वर्ग से भी महान होती है। अपने देश के दुखों और खतरों में हमें एक साथ खड़ा होने, इसके लिए कार्य करने और यदि आवश्यकता पड़े तो इसके लिए अपना जीवन अर्पण करने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या इसी देश ने अपनी गोदी में हमें खिलाया नहीं, अपनी विपुलता से हमारा पोषण और अपनी हार्दिकता से हमें सुरक्षा प्रदान नहीं की? अपने देश से प्यार न करना अकृतज्ञता के सिवा कुछ नहीं। तो हमें अपने देश के प्रति और अपनी मातृभूमि के प्रति प्यार होना चाहिए। जिसकी गोदी में हम खेलकर बड़े हुए हैं। एक और गीत मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म देश प्रेमी से। गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
2: नफरत की

बिल्कुल श्रोताओं, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो। हम सभी इस मातृभूमि की रक्षा के लिए एक हैं। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुप्रभात, आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से। बात करते हैं, जल ही जीवन है, केवल एक कहावत नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व का सबसे बड़ा सत्य है। पृथ्वी पर मौजूद जीवन का हर रूप पानी पर निर्भर करता है। हमें दैनिक जीवन में इस अमूल्य प्राकृतिक संसाधन की बचत करने और इसे प्रदूषित होने से बचाने के लिए जागरूक होना होगा। जल हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग है। मानव शरीर का लगभग 70% हिस्सा जल से बना है। यह हमारे पाचन, तापमान नियंत्रण

और कोशिकाओं तक पोषक तत्व पहुंचाने के लिए अनिवार्य काम करता है। फसलों की सिंचाई से लेकर हमारे भोजन तक, पानी के बिना कृषि व्यवस्था और खाद्य उत्पादन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु और हमारे पर्यावरण का संतुलन जल पर ही टिका हुआ है। धरती पर उपलब्ध पानी का बहुत छोटा हिस्सा ही हमारे पीने योग्य है। दिन प्रतिदिन के बढ़ते जल संकट को देखते हुए जल का संरक्षण समय की मांग है। बारिश के पानी को व्यर्थ बहने देने की बजाय उसे इकट्ठा करना चाहिए। हमें अपने दैनिक जीवन में भी पानी की बचत करनी चाहिए। जल संरक्षण के प्रति समाज में जागरूकता फैलाएं और पानी का संतुलित उपयोग करें। जल बचाना केवल एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य की नींव है। तो हम सभी का कर्तव्य है कि जल को बचाएं और उसे आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रखें। एक और गीत फिल्म शोर से लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में।

श्रोतो, आइए प्रोग्राम के आखिर में एक और गीत आपको सुनवाते हैं, फिल्म जॉनी मेरा नाम से, आवाज किशोर कुमार की। इस गीत को लिखा है इंदिवर ने और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

कार्यक्रम सुप्रभात अपने साथी कुंदन कटारिया के साथ आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें, कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा

0: और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष तंत्र की सराहना की। विक्रम 1 की सफलता के बाद स्काई रूट के संस्थापकों से की मुलाकात। बिहार और असम सरकारें नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लेंगी। विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार प्रदर्शनकारी भी रिहा किए जाएंगे। एनडीए संसदीय दल आज नई दिल्ली में अपनी साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक करेगा। पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और चीन ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। और भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं की शॉटपुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी चर्चा हुई। विक्रम 1 भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट है। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष तंत्र की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं भी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में भी विक्रम 1 की सफलता की सराहना की थी।
4: विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है।
3: बिहार और असम की राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
5: गृह विभाग की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार 26 जुलाई की शाम 6 बजे तक राज्य के किसी भी हिस्से में विरोध प्रदर्शन में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कोई दंडात्मक, प्रतिशोधात्मक या प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस अवधि तक दर्ज सभी प्राथमिकी, परिवाद और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की विधिक प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जाएगी। इसके साथ ही इन मामलों में गिरफ्तार या निरोधित सभी व्यक्तियों को जल्द रिहा किया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन में नामित व्यक्तियों के खिलाफ भविष्य में भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
3: उधर असम के गृह विभाग ने बताया है कि विरोध प्रदर्शनों के संबंध में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ राज्य के किसी भी पुलिस प्राधिकरण द्वारा कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकार का विरोध प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कोई और प्रतिकूल कार्रवाई करने का प्रस्ताव नहीं है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक आज सुबह संसद भवन में आयोजित की जाएगी। मंगल मिलन के नाम से प्रचलित ये बैठकें पारंपरिक रूप से संसद सत्र के दौरान मंगलवार को आयोजित होती हैं। इन बैठकों का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी

0: संबंधित पक्षों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया के सांसदों को भी गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाएं भारत की लोकतांत्रिक और विकास यात्रा की आधारशिला हैं। श्री सिंह ने नई दिल्ली में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये पहल विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप आर्थिक रूप से सशक्त, तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर पंचायतों के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट।
2: ये समझौता कल नई दिल्ली में पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुआ। इस सहयोग का लक्ष्य एयर इंडिया के व्यापक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ साथ मंत्रालय की पर्यटन स्थल प्रचार पहलों का लाभ उठाकर भारत की वैश्विक पर्यटन क्षमता को बढ़ाना है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये साझेदारी एयर इंडिया के व्यापक वैश्विक नेटवर्क और भारत के विविध पर्यटन विकल्पों का लाभ उठाकर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देश की उपस्थिति को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि इस सहयोग के अंतर्गत संयुक्त गंतव्य अभियान और स्टॉप ओवर पर्यटन को बढ़ावा देने सहित विजिट इंडिया पास जैसी पहलों पर विचार किया जाएगा। समझौते के अंतर्गत मंत्रालय और एयर इंडिया डिजिटल और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर संयुक्त प्रचार अभियान, सह ब्रांडेड डेस्टिनेशन मार्केटिंग और पर्यटन संबंधी कहानियों का संचालन करेंगे। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक करने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की है। वे नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्री गोयल ने विनिर्माण, नवाचार और निर्यात को मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार खिलौना क्षेत्र प्ले बुक का भी शुभारंभ किया। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया था कि केंद्र सरकार अगले महीने की 25 तारीख की रात से भारत में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाएगी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावे को निराधार बताते हुए कहा है कि सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने चीन यात्रा के दौरान पेचिंग में चीन की उप विदेश मंत्री हुआ चुनयिंग से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। विदेश सचिव ने भारत और चीन के बीच साझेदारी को आगे बढ़ाने और व्यापार तथा आर्थिक संबंधों में पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के अवसरों पर भी चर्चा की। चीन में भारतीय दूतावास के अनुसार दोनों अधिकारियों ने भारत चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को भी स्वीकार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थानीय चुनावों के दौरान मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान ने बताया है कि उसके कार्यकर्ता मुख्तार यूनिस की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। ये चुनाव, जो मूल रूप से एक दिन के लिए निर्धारित थे, अब 8 से 10 अगस्त तक 3 चरणों में आयोजित किए जा रहे हैं। पीपीपी और पीएमएलएन ने कई निर्वाचन क्षेत्रों में

0: दूसरे पर चुनावी धांधली का आरोप लगाया है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार किया है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, ओडिशा, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दक्षिण आंतरिक तथा तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पूर्व भारत के कुछ हिस्सों, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरलम, माहे, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज दिन में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज राज्य के अलग अलग हिस्सों में तेज से बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अनेक हिस्सों में कल रात से बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, देहरादून, टेहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उधमसिंह नगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश और गर्जन के साथ बिजली चमकने की संभावना जताई है। विभाग की चेतावनी के मद्देनजर राजधानी देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर में आज सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली लगभग 50 सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने का कार्य जारी है। हालांकि चारधाम यात्रा मार्ग फिलहाल खुले हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मॉनसून सक्रिय रहेगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता है। शर्मिला राष्ट्रमंडल खेलों के पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। इस अवसर पर शर्मिला ने कहा कि वे देश के लिए पदक लाकर बहुत प्रसन्न हैं।
2: हम बहुत खुश है, हमारे देश के लिए मेडल लाके हम आगे भी ऐसे ही मेडल लाते रहेंगे और नेक्स्ट कॉमनवेल्थ की अच्छी तैयारी करेंगे। इस मेडल से मेरे आगे का रास्ता और आसान हो गया और अच्छी मेहनत करके और अच्छा रिकॉर्ड बनाएंगे।
0: सर्वेश कुशारे ने पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीता है। भारत के पदकों की संख्या अब 10 हो गई है। राष्ट्रपति और खेल मंत्री ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद प्रियंका। पेपर लीक पर सख्ती से जुड़ा विधेयक लोकसभा में पेश होने की खबर आज नवभारत टाइम्स और जनसत्ता सहित सभी अखबारों की प्रमुख खबर है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, पार्टियां राजनीतिक नफा नुकसान के गणित में जुटी, हंगामे के बाद विपक्ष चर्चा को राजी। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, 10 साल जेल, 10 करोड़ जुर्माने का प्रस्ताव, आज बहस संभव। दैनिक जागरण की खबर है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन को हिंसक बना रहे अपराधी, 989 की हुई पहचान। पत्र ने प्रदर्शन का प्रोटोकॉल शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जहां पुलिस की सख्ती पर सवाल उठाए हैं, वहीं पुलिस कर्मियों पर हमले का संज्ञान भी लिया है। पत्र ने कहा है कि उचित ये होगा कि न्यायालय ये सुनिश्चित करे कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के नाम पर अराजक तत्व बचने न पाए। अमर उजाला ने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का बयान प्रकाशित किया है, देश में जल्द ही 10 और 20 रुपए के पॉलीमर यानी प्लास्टिक नोटों का परीक्षण शुरू हो सकता है, आरबीआई के प्रस्ताव को सरकार ने दी मंजूरी। हिंदुस्तान ने लिखा है, 100 करोड़ से अधिक आय वाले करदाताओं की संख्या 5 वर्ष में 4 गुना बढ़ी। सरकार ने कहा, समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने से आय में बढ़ोतरी के संकेत सामने आए हैं। सूर्यास्त के बाद कल दिखेगा बकमून का आकर्षण, शबाब पर होगा चांद। हिंदुस्तान ने बताया है, दूधिया रोशनी बिखेरता हुआ पूर्ण चंद्र बकमून की शक्ल में नजर आएगा, प्रत्यक्ष चंद्र घटनाओं में से एक नग्न आंखों से भी देख सकेंगे।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष तंत्र की सराहना की। विक्रम 1 की सफलता के बाद स्काई रूट के संस्थापकों से की मुलाकात। बिहार और असम सरकारें नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लेंगी। विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार प्रदर्शनकारी भी रिहा किए जाएंगे। एनडीए संसदीय दल आज नई दिल्ली में अपनी साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक करेगा। पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और भारत और चीन ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। The headlines. Prime Minister Narendra Modi.

0: दी गई नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया NCPI को भी NDA की मीटिंग में शिरकत के लिए मदु किया गया है। सियाहत की वजारत ने इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के तहत आलमी सतह पर भारत को तरजीही सियाहती मुल्क के तौर पर फरोग देने की खातिर एयर इंडिया के साथ मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। सियाहत और सकाफत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में नई दिल्ली में इस समझौते पर दस्तखत किए गए। इस इश्तराक का मकसद आलमी सतह पर भारत की सियाहती झलक को उजागर करने के लिए वजारत के इकदाम के साथ साथ एयर इंडिया के वसी अंदरून मुल्क और बैरून बैनुल अक्वामी नेटवर्क को बरूएकार लाना है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब शेखावत ने कहा कि इस साझेदारी से अहमियत की हामिल बैनुल अक्वामी मार्केट्स में भारत की मौजूदगी को मुस्तहकम बनाने के लिए भारत की मुतनव्वे सियाहती सलाहियत उजागर हो सकेगी। सरकार ने खिलौनों के शोबे को तकवीत पहुंचाने और खिलौनों की आलमी मार्केट में 2032 तक भारत की हिस्सेदारी 5% तक पहुंचाने में मुआवनत के लिए एक टास्क फोर्स कायम करने का ऐलान किया है। कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में सनत और दाखिली तजारत के फरोग के महकमे के ज़ेर एहतमाम खिलौनों के शोबे के बारे में एक मीटिंग से खिताब करते हुए ये ऐलान किया। कॉमर्स और सनतों की वजारत ने कहा है कि ये टास्क फोर्स आलमी वैल्यू चेन के साथ मुल्क की खिलौनों की सनत को मरबूत करने, मैनुफैक्चरिंग सलाहियत को मुस्तहकम बनाने और कारोबार करने में सहूलत पैदा करने पर तवज्जो मरकूज करेगी। इस मौके पर जनाब पीयूष गोयल ने कहा कि भारत की खिलौनों की सनत की तरक्की से विकसित भारत के मकसद की समत मुल्क की पेशरफ्त की अक्कासी होती है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिसरी ने बीजिंग में चीन के नायब वजीर खारजा हुआ चुनयांग से मुलाकात की और बाहमी ताल्लुकात के तमाम तर पहलुओं का जायजा लिया। जनाब मिसरी ने इस नज़रिए को आगे बढ़ाने के तौर तरीकों पर भी तबादले ख्याल किया कि भारत और चीन साझेदार हैं और तजारती और इकतसादी रबतों में बाहमी तौर पर मुफीद नतीजों के जरिए एक दूसरे के लिए मौके दस्तियाब करा सकते हैं। चीन में भारतीय सफारतखाने के मुताबिक दोनों अहदेदारों ने भारत चीन सरहदी इलाकों में अमनो इस्तेहकाम बरकरार रखने की अहमियत को तस्लीम किया। इससे कबल जनाब मिसरी ने बीजिंग में चीन की पीपल्स सियासी सलाहकार कॉन्फ्रेंस की 14वीं कौमी कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल होंग लियांग के साथ अपनी मीटिंग के दौरान सियासी और अवाम से अवाम के रबतों की सतह पर भारत और चीन के दरमियान बाहमी तबादलों को वसत देने के तौर तरीकों पर तबादले ख्याल किया। इस मीटिंग में चीन में भारत के सफीर विक्रम दुराय स्वामी भी मौजूद थे। उत्तराखंड में मौसमियात के महकमे ने आज रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनज़र वार्निंग जारी की है। हमारे नामा निगार ने बताया है कि रियासत में कई मकामात पर कल रात से लगातार बारिश होने की वजह से सड़क रास्ता बंद हो गया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: उत्तराखंड में देहरादून और कई दीगर हिस्सों में कल रात से लगातार बारिश हो रही है। देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर में सभी स्कूल और आंगनवाड़ी मराकज आज बंद हैं। लगातार बारिश होने से पहाड़ी खित्तों में दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा हो गया है। देही इलाकों में तकरीबन 50 सड़कों का रास्ता बंद है और बहाली का काम जारी है। अलबत्ता चार धाम यात्रा का रास्ता फिलहाल खुला है और इंतजामिया सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए है। मौसमियात महकमे के मुताबिक रियासत में अगले चंद रोज तक मानसून के सरगर्म रहने का इम्कान है। बेशतर इलाकों में हल्की से लेकर औसत बारिश होने जबकि कई मकामात पर तेज बारिश होने की भी पेशगोई की है। देहरादून से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बनी नौ इंसान की बहबूद फितरत को महफूज रखने और इसका ख्याल रखने में पिनहा है। एक संस्कृत श्लोक शेयर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क की रिवायत भी सभी को इंसाफ के रास्ते पर चलने की तरगीब देती है। वजीर खारजा डॉक्टर SJ Shankar ने आज पेरू के यौम आज़ादी के मौके पर वहां की हुकूमत और आवाम को मुबारकबाद पेश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत पेरू के साथ ताल्लुकात मजबूत बनाने का ख्वाहिशमंद है। वजारत खारजा ने एक तजारती जहाज MV Omorphi पर हमले के बाद कल भारत में यूक्रेन के सफीर डॉक्टर ओलेक्जेंडर पोलिशचुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय शहरी हलाक हो गया।

0: इस वाक़े पर उन्हें अपनी शदीद तश्वीश से आगाह करते हुए वजारत ने तजारती जहाज़ों पर इस तरह के हमलों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। दौलत मुश्तरका खेलों में भारत की पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो में 9.81 मीटर की सीज़न की बेहतरीन कारकर्दगी के साथ खवातीन शॉर्ट पुटर F57 मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। इस कामयाबी के साथ ही शर्मिला दौलत मुश्तरका खेलों में सोने का तमगा हासिल करने वाली पहली पैरा एथलीट बन गई हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने दौलत मुश्तरका खेलों के दौरान शर्मिला धनखड़ के सोने का तमगा जीतने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने कहा कि दौलत मुश्तरका खेलों में भारत की तरफ से पैरा एथलीट्स में पहली बार सोने का तमगा हासिल करके शर्मिला ने तारीखी कामयाबी हासिल की है। नौजवानों के उम्र और खेलों के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने शर्मिला धनखड़ को मुबारकबाद देते हुए कहा कि उनके जज्बे ने आलमी सतह पर पूरे मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया है। स्कॉटस्टोन स्टेडियम में भारतीय हाई जंपर सर्वेश कुशारे ने भी मर्दों के हाई जंप मुकाबले में चांदी का तमगा जीता है। सदर जमहूरिया ने मर्दों के हाई जंप मुकाबले में चांदी का तमगा हासिल करने पर सर्वेश कुशारे को भी मुबारकबाद पेश की है। खेलों के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सर्वेश को मुबारकबाद देते हुए कहा कि उनकी शानदार कारकर्दगी ने पूरे मुल्क का नाम रोशन किया है। इसके अलावा वेट लिफ्टर वलूरिया अजय बाबू और ज्ञानेश्वरी यादव ने चांदी का एक एक तमगा जीता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मर्दों के वेट लिफ्टिंग में 79 किलोग्राम जुमरे में चांदी का तमगा हासिल करने पर वलूरी अजय बाबू के तईं नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। खवातीन के शॉर्टपुट F57 मुकाबले में कांसे का तमगा जीतने पर शिल्पा के शैला को मुबारकबाद पेश करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि उनका अज़्म और मुसलसल कोशिश करते रहने का जज्बा सभी को तरगीब देता है। मर्दों की 16वीं हॉकी जूनियर नेशनल चैंपियनशिप 2026 आज सुबह तमिलनाडु के शहर कोयम्बटूर में शुरू हो रही है। इस टूर्नामेंट में मुल्क की मर्दों की बेहतरीन हॉकी टीमें हिस्सा लेंगी जो 12 दिन यानी 8 अगस्त तक मुकाबला करेंगे जिसमें कौमी चैंपियन का फैसला होगा। टूर्नामेंट का इफ्तिताह डिवीजन सी के पूल ए मैच में आसाम और मिजोरम के दरमियान मुकाबले से होगा। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया कौनन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात की छह सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार इनकलाब की छह सुर्खी है, पेपर लीक के खिलाफ तरमीमी बिल लोकसभा में पेश। अखबार प्रताप लिखता है, इंजीनियरिंग मसनूआत की बरामदात में 21% इजाफा, 5 गुना से ज्यादा की छलांग। अखबार ने तजारती जहाज पर हमले में एक भारतीय मल्लाह की मौत के वाक़े पर एहतजाज दर्ज कराने के लिए यूक्रेन के सफीर को तलब किए जाने की खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। अखबारात ने वज़ीर आला रेखा गुप्ता के हाथों त्यागराज स्टेडियम में 22वीं दौलत मुश्तरका टेबल टेनिस चैंपियनशिप का इफ्तिताह किए जाने की खबर को भी नुमाया किया है। अखबार इनकलाब ने ईरान के रहबर आला मुश्तबा खामेनाई के इस बयान को अहमियत दी है कि अमन मुआहदा लबनान पर इसराइली हमलों के खात्मे से मशरूत। अखबारात की दीगर अहम बैन अलाक़वामी खबरें इस तरह है, गिरफ्तारी के वारंट के बावजूद नेतन्याहू अमरीका रवाना।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खलाई शोबे में भारत के फरोग पाते हुए प्राइवेट इको निज़ाम की सताइश की है। वज़ीर आज़म ने विक्रम 1 की कामयाबी के तनाजुर में स्काई रूट एरो स्पेस के बानी अहलकारों से मुलाकात की। बिहार और आसाम की सरकारों ने नीट मामले पर एहतजाज करने वाले अफराद के खिलाफ केस वापस लेने और मुख्तलिफ इल्जामात में गिरफ्तार किए गए अफराद को रिहा करने का ऐलान किया है। एनडीए पार्लियामानी पार्टी आज नई दिल्ली में अपनी हफ्तेवार मंगल मिलन मीटिंग का एहतमाम करेगी। सियाहत की वजारत ने इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के तहत आलमी सतह पर भारत को तरजीही सियाहती मुल्क के तौर पर फरोग देने की खातिर एयर इंडिया के साथ मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। भारत और चीन ने सरहद पर अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने की अहमियत का इरादा किया है और दौलत मुश्तरका खेलों में भारत की पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ ने खवातीन के शॉटपुट मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर, FM बैंड के 16.1 मेगाहर्ट्ज पर, मोबाइल ऐप के न्यूज जोन एयर ऐप पर। यह आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। श्रोतों, आइए सुने भजनों पर आधारित कार्यक्रम सुगम संगीत।

0: भजनों पर आधारित कार्यक्रम सुगम संगीत आप सुन रहे थे आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से। इस समय स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारत की पैरा शॉटपुट खिलाड़ी शर्मिला

अंकर ने कॉमनवेल्थ गेम्स में F57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जमा राशि में राजस्थान देश में चौथे स्थान पर। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने जोधपुर, पाली, बालोतरा और आसपास के क्षेत्रों में नदियों के प्रदूषण से बचाने के लिए ठोस कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए और प्रदेश के नगरीय निकायों में 24,752 संविदा सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। भारत की पैरा शॉटपुट खिलाड़ी शर्मिला धनकर ने ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं की शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीत लिया है। इसके साथ ही शर्मिला कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। वहीं भारतीय हाई जंपर

0: ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं की शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीत लिया है। इसके साथ ही शर्मिला कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। वहीं भारतीय हाई जंपर सर्वेश कुशारे ने स्कॉट्सटाउन स्टेडियम में पुरुषों की हाई जंप स्पर्धा में रजत पदक पर कब्जा जमाया। इसके अलावा भारोत्तोलक वल्लूरी अजया बाबू और ज्ञानेश्वरी यादव ने एक एक रजत पदक हासिल किया। राज्य में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 3,85,00,000 से अधिक बैंक खाते खोले गए हैं। वित्त मंत्रालय के अनुसार इन खातों में 24,610 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा है और जमा राशि के मामले में राजस्थान देश में चौथे स्थान पर है। प्रदेश में 2,19,00,000 से अधिक महिलाओं के जनधन खाते हैं जो कुल खातों का 57% है। योजना के तहत 2,87,00,000 से अधिक रुपए डेबिट कार्ड भी जारी किए गए हैं। जनधन खाता धारकों को दुर्घटना बीमा, ओवरड्राफ्ट सुविधा और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज धौलपुर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के मनिया कस्बे में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। फूलपुर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत सरकारी अस्पतालों की क्लेम निस्तारण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया गया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अनुसार क्लेम रिव्यू कमेटी अब संबंधित अस्पतालों में पहुंचकर मामलों की सुनवाई कर रही है, जिससे लंबित क्लेम का तेजी से निस्तारण हो रहा है। अब तक 98,000 से अधिक अपीलों में से लगभग 72% मामलों का निस्तारण किया जा चुका है। साथ ही 19,61,00,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। गौरतलब है कि इससे अस्पतालों को समय पर भुगतान मिलेगा और मरीजों के स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सकेगा। प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान खरीफ सीजन 2026 के लिए 31 जुलाई तक बीमा करा सकते हैं। वहीं रबी 2026-27 सीजन के लिए ये आवेदन 31 दिसंबर तक किए जा सकते हैं। किसान किसी भी नजदीकी बैंक शाखा, केंद्रीय सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक, डाकघर या CAC के माध्यम से ये बीमा करा सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल या अधिकृत बीमा एजेंट के माध्यम से भी बीमा कराया जा सकता है। खरीफ मौसम में बाजरा, ज्वार, मक्का, मूंग, मोठ, तिल, कपास और मूंगफली सहित 14 फसलें अधिसूचित की गई हैं। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और प्रतिकूल मौसम से होने वाले फसल खराबे से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को खरीफ और रबी दो फसल मौसमों के लिए प्रदेश में लागू किया है। जयपुर को हरा भरा और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए सहकारिता विभाग की ओर से सहकार वन विकसित किया जा रहा है। विभाग के सचिव समित शर्मा ने बताया कि जयपुर विकास प्राधिकरण ने इसके लिए 88 बीघा भूमि उपलब्ध कराई है। लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होने वाला ये सहकार वन पर्यावरण संरक्षण और जन जागरूकता का केंद्र बनेगा।
1: बेसिकली एक एनवायरमेंटल सेंटर होगा जहाँ पे फ्रूट ट्रीज लगेंगे, जहाँ पे लोग जा सकेंगे, जहाँ पे एक वाटर बॉडी होगी, बच्चों के लिए स्थान होगा, पास में जो फॉरेस्ट की भी लैंड है तो वाइल्ड लाइफ के लिए भी स्थान होगा। तो जयपुर में एक ऐसा शांत, प्राकृतिक, सुरम्य, रमणीय स्थल विकसित करने का प्रयास है जहाँ पे कि क्षेत्रवासी जा सकें, वहाँ पे अपने बच्चों को ले जा सकें, वॉकिंग ट्रैक भी होगा, अपने स्वास्थ्य में भी सुधार करें, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़े और जयपुर को अधिक से अधिक ऑक्सीजन मिल सके, जयपुर के लंग्स की तरह वो एक्ट करे, लंग्स की तरह काम करे।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने जोधपुर, पाली, बालोतरा और आसपास के क्षेत्रों में नदियों को प्रदूषण

0: से बचाने के लिए ठोस कार्य योजना बनाने को कहा है। कल जयपुर में शासन सचिवालय में हुई बैठक में मुख्य सचिव ने जिला प्रशासन, संबंधित उद्योग संघों, सीईटीपी संचालन समितियों को इसके निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जोजुड़ी सहित अन्य नदियों में उद्योगों का प्रदूषित पानी नहीं जाने देने के लिए प्रभावी उपाय किए जाएं। बैठक में सीईटीपी संयंत्रों के प्रभावी संचालन, रखरखाव और प्रदूषित पानी के वैज्ञानिक निस्तारण पर भी जोर दिया गया। प्रदेश में गर्भवती महिलाओं की बेहतर देखभाल और सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा कि उच्च जोखिम वाली गर्भवतियों की नियमित निगरानी, समय पर जांच, परामर्श और उपचार सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अगले एक महीने में संभावित प्रसव वाली महिलाओं की समय रहते चिकित्सकीय जांच कराने के देश दिए। श्रीमती राठौर ने 104 एम्बुलेंस सेवा की गुणवत्ता की रैंडम जांच कर फीडबैक लेने तथा कमियों का तत्काल समाधान करने को भी कहा। उन्होंने गंभीर एनीमिया और चांदीपुर वायरस की स्क्रीनिंग पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। प्रदेश के नगरीय निकायों में 24,752 संविदा सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। स्वायत्त शासन सचिव ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन 15 अगस्त से 28 सितंबर तक किए जा सकते हैं। अभ्यर्थी की पात्रता की शर्तें वेबसाइट पर देख सकते हैं। ये भर्ती राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट्स रूल्स 2022 के तहत की जाएगी। पात्र अभ्यर्थियों का चयन ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। राजस्थान ने अंगदान शपथ अभियान में देश में पहला स्थान हासिल किया है। स्वास्थ्य विभाग के स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन सोटो की संयुक्त निदेशक डॉ. चित्रा सिंह ने बताया कि अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सोटो और शिक्षा चिकित्सा निदेशालय की ओर से राज्यव्यापी अभियान चलाया गया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 1,17,000 से अधिक लोगों ने अंगदान की शपथ ली है। और अब मौसम। पूर्वी भारत के ऊपर बने नए तंत्र के असर से प्रदेश में अगले कुछ दिनों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने के आसार हैं। आज भरतपुर, सवाईमाधोपुर, धौलपुर सहित सभी पूर्वी जिलों में रिमझिम बारिश का दौर चल रहा है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार बीकानेर और जोधपुर संभाग के कुछ इलाकों में गरज के साथ मध्यम से कहीं कहीं तेज मेघ पड़ सकता है। वहीं प्रदेश के बाकी हिस्सों में छिटपुट स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात होने के आसार हैं। इसके अलावा जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग में बारिश बढ़ने और कहीं कहीं भारी बरसात होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की पैरा शॉटपुट खिलाड़ी शर्मिला धनकर ने कॉमनवेल्थ गेम्स F57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जमा राशि में राजस्थान देश में चौथे स्थान पर। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने जोधपुर, पाली, बालोतरा और आसपास के क्षेत्रों में नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए ठोस कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। और प्रदेश के नगरीय निकायों में 24,752 संविदा सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्स पर, एफएम बैंड के 100.1 मेगा हर्ट्स पर, मोबाइल ऐप के न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। ये आकाशवाणी सूरतकट का कॉटन सिटी चैनल है। श्रोतों लीजिए, सुनिए राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम मरुमंगल। आज के हमारे कलाकार हैं चंपा मेथी और उनके साथी।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मरुमंगल आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से। आज के हमारे कलाकार हैं चंपा मेथी और उनके साथी।

मरुमंगल कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से किया जा रहा है। आज के हमारे कलाकार हैं चंपा मेथी और उनके साथी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम मरुमंगल। आज के हमारे कलाकार थे चंपा मेथी और उनके साथी। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर, FM बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्स पर, मोबाइल ऐप के न्यूज़ जोन या ऐप पर। ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। इस समय सुबह के 9:30 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार, अपने साथी कुंदन कटारिया का। प्रोग्राम का पहला गीत मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में। फिल्म का नाम है बड़े घर की बेटी। इस गीत को लिखा है संतोष आनंद ने और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। ये गीत इस बात के साथ, तुमसे मिलने की ये दिल हसरत रखता है, तुमसे मिलने की ये दिल हसरत रखता है, दिन रात ये दिल तेरे लिए धड़कता है, जब कभी भी गुजरती हो पास से मेरे, तेरी पायल की आवाज़ सुन दिल मचलता है, तेरी पायल की आवाज़ सुन दिल मचलता है।

श्रोतो, आइए प्रोग्राम का अगला गीत फिल्म प्रेम ग्रंथ से। आवाजें हैं अलका याग्निक और विनोद राठौड़ की। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से। प्रोग्राम का अगला गीत फिल्म समुंदर से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतकार आर डी बर्मन।

श्रोताओं, आइए सुने फिल्म बाजी से लता मंगेशकर और शबीर कुमार को। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

गा मेरे मन गा, ये प्रोग्राम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। अपने हर दिल अजीत साथी कुंदन कटारिया का आपका साथी हाजिर है ये प्रोग्राम लेकर। आज का ये प्रोग्राम समर्पित है अभिनेत्री आयशा झुलका के जन्मदिवस पर। 28 जुलाई 1972 को उनका जन्म हुआ। उन्हीं की फिल्मों के गीत आज इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाएंगे। अभिनेत्री आयशा झुलका, उन्होंने मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम किया। इसके अलावा उन्होंने बंगाली, कन्नड़ और तेलुगु फिल्मों में भी काम किया। 3 दशकों से अधिक के करियर में उन्होंने 60 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने फिल्म कुर्बान, जो जीता वही सिकंदर, खिलाड़ी, मेहरबान, दलाल, बलमा, वक्त हमारा है, रंग, संग्राम, जय किशन, मासूम जैसी सफल फिल्मों में उनके अभिनय

भी मिला। आज उन्हीं के फिल्मों के गीत आपको सुनवाएंगे इस प्रोग्राम में। पहला गीत फिल्म कुर्बान से, आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की, गीतकार समीर और संगीतकार आनंद मिलिंद।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: श्रोता, हम आपसे बात कर रहे हैं और सुनवा रहे हैं अभिनेत्री आयशा जुल्का के जन्मदिवस पर उन्हीं की फिल्मों के गीत। बॉलीवुड एक्ट्रेस जिन्होंने 80 और 90 के दशक की फेमस स्टार्स की लिस्ट में गिनी जाती है। आयशा ने अपने करियर में कई शानदार फिल्में दी हैं। उन्होंने कई बड़े स्टार्स संग स्क्रीन शेयर भी किया है और उन्हीं के गीत आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म मासूम का ये गीत, आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की। इस गीत को लिखा है गुलजार ने और संगीतकार आरडी बर्मन।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अभिनेत्री आयशा जुल्का के जन्मदिवस पर ये फिल्मी नगमे। अगला गीत फिल्म बलमा से, आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की, गीतकार समीर और संगीतकार नदीम श्रवण।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोतों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गा मेरे मन का, आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से। आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं अभिनेत्री आयशा जुल्का के जन्मदिवस पर उनकी फिल्मों के गीत। उन्होंने हिंदी फिल्मों के साथ साथ उड़िया, कन्नड़, तेलुगु भाषाओं में भी की फिल्मों में अभिनय किया। 1992 की फिल्म खिलाड़ी के लिए उनको जाना जाता है, जिसमें वे अक्षय कुमार के साथ भूमिका निभाई थी। इसी का गीत आपको सुनवाते हैं अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज़ में फिल्म खिलाड़ी से। गीतकार अनवर सागर और संगीतकार जतिन ललित।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: जी हाँ श्रोताओं, आपसे हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री आयशा जुल्का के जन्मदिवस पर। फिल्म खिलाड़ी, जो जीता वही सिकंदर और मासूम जैसी फिल्मों से अपनी पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस आयशा जुल्का को बड़े पर्दे पर आए हुए काफ़ी समय हो चुका था। उन्होंने 1983 में आई फिल्म कैसे कैसे लोग में एक बाल कलाकार के रूप में अभिनय कर की शुरुआत की थी अपने करियर की। और 90 के दशक में आयशा जुल्का किसी स्टार से कम नहीं थी। वो तब के बड़े स्टार्स आमिर खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन के साथ लीड एक्ट्रेस के तौर पर नज़र आती थी। उन्हीं की फिल्म का एक और गीत फिल्म दलाल से। आवाजें हैं कुमार सानू और

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोता, हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री आयशा जुल्का के जन्मदिवस पर। उन्होंने 1991 में अभिनेता सलमान खान के साथ फिल्म कुर्बान से अभिनय शुरू किया था। इसके बाद वो कई सफल फिल्मों में दिखाई दी, जिसमें जो जीता वही सिकंदर, खिलाड़ी, वक्त हमारा है, संग्राम, बलमा, ये सभी फिल्में शामिल है। उनकी एक फिल्म रक्षक भी आई थी, जिसका गीत हम आपको सुनवाते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीत आनंद मिलिंद का।

श्रोता, हम आपसे बात कर रहे हैं अभिनेत्री आयशा जुल्का के जन्मदिवस पर। उन्हीं के फिल्मी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। 1993 में उनको 38वें फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया सर्वश्रेष्ठ महिला नवोदित अभिनेत्री के रूप में। फिल्म खिलाड़ी और जो जीता वही सिकंदर के लिए। 2023 में उन्हें 23वें भारतीय टेलीविजन अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया खुशहाल परिवार के लिए। एक और गीत उनकी फिल्म का, इक्का राजा रानी, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में। इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीतकार नदीम श्रवण।

श्रोता, हम आपसे बात कर रहे थे अभिनेत्री आयशा जुल्का के जन्मदिवस पर। 90 के दशक की मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री आयशा जुल्का, जिनके फिल्मों के गीत आपको हम सुनवा रहे थे कार्यक्रम गा मेरे मन गा के तहत। और अब घड़ी की सुई हमें और इजाज़त नहीं देती है, इसी के साथ ही अपने दोस्त कुंदन कटारिया को कार्यक्रम से अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे गा मेरे मन का। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़। इसके अलावा आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी हमें सुन सकते हैं। 11 बजे हैं। अब श्रोता सुने फिल्म संगीत।

आइए श्रोताओ, अब सुनते हैं ये गीत। फिल्म का नाम है गाइड, आवाज दी है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा और संगीत एस डी बर्मन का है।

आइए अब सुनते हैं प्रेम पुजारी। इस फिल्म का ये गीत आवाज दी है किशोर कुमार ने। गीत लिखा नीरज ने और संगीत एस डी बर्मन का है।

आइए श्रोता, अब सुनते हैं सिलसिला। इस फिल्म का यह गीत आवाज दी है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। जावेद अख्तर ने इस गीत को लिखा और शिवहरि का संगीत है।

आइए अब सुनते हैं कभी कभी। इस फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में, खयाम ने इस गीत को संगीत दिया और लिखा शाहिर लुधियानवी ने।

आइए श्रोता, अब सुनते हैं कुदरत। इस फिल्म का ये गीत आवाज दी है किशोर कुमार ने। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा और संगीत राहुल देव बर्मन का है।

आइए अब सुनते हैं पराया धन। इस फिल्म का ये गीत आवाजें हैं किशोर कुमार की। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और आर डी बर्मन का संगीत है।

आइए अब सुनते हैं ये गीत, हंसते जख्म। ये है फिल्म का नाम, आवाज दी है मोहम्मद रफी ने, कैफी आजमी ने इस गीत को लिखा और मदन मोहन का संगीत है।

फिल्म संगीत इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। आइए अब सुनते हैं एक दूजे के लिए। इस फिल्म का ये गीत आवाज दी है लता मंगेशकर ने, लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

आइए अब सुनते हैं ये गीत। फिल्म का नाम है किस्मत, आवाज दी है आशा भोसले ने।

आइए अब सुनते हैं बेटी बेटे इस फिल्म का ये गीत। आवाज दी है मोहम्मद रफी और आशा भोंसले ने। हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा और शंकर जयकिशन का संगीत है।

अभी श्रोता सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्ज पर, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज। दोपहर के 12 बजे हैं। अब श्रोता सुने कार्यक्रम विवरण।

अब से थोड़ी देर बाद 12:05 पर श्रोता सुनेंगे एक ही शीर्षक से फिल्म संगीत। आज सुनेंगे मोहब्बत शीर्षक के गीत। 12:30 पर श्रोता सुनेंगे सुगम संगीत। खेत खलिहान का समय रहेगा 12:50। इसमें किसान भाई सुनेंगे आज बातचीत। फर्टिगेशन अपनाएं, उपज बढ़ाएं, इस विषय पर जानकारी। 1:05 पर बहनें सुनेंगी कार्यक्रम घर आंगन। इसमें जानकारी के विषय रहेंगे बुजुर्गों का सम्मान व घर के संस्कार, कुटीर उद्योग और योजनाएं, प्राकृतिक तरीके से निखारे रूप, इसके अलावा राजस्थान के प्रमुख भोजन, इन विषयों पर बहनें जानकारी सुन सकती हैं। 2:30 पर श्रोता फिल्म संगीत का आनंद ले सकते हैं। संध्या 5 बजे युवाणी का प्रसारण किया जाएगा। इसमें दहेज प्रथा एक सामाजिक कुप्रथा, पारिवारिक जीवन मूल्य, प्लास्टिक मुक्त भारत, स्वच्छ भारत अभियान और आज का इतिहास विषय पर श्रोता जानकारी सुन सकते हैं। सराइकी का समय

रहेगा संध्या 6:05। चौपाल का प्रसारण संध्या 7 बजे किया जाएगा। इसमें जानकारी के विषय रहेंगे स्वच्छ दुग्ध उत्पादन कैसे बढ़ाएं, जीवाणु खाद के फायदे, इसके अलावा किसान भाई एक भेंट वार्ता भी सुन सकते हैं, उर्वरकों का संतुलित उपयोग, वार्ताकार पृथ्वीराम से बातचीत करेंगे संजय बेत। इसके अलावा प्रगतिशील किसान से बातचीत भी आपको सुनवाई जाएगी श्रीपाल जी से। आठ बजे संसद समीक्षा,

किसान से बातचीत भी आपको सुनवाई जाएगी। श्रीपाल जी से आठ बजे संसद समीक्षा, 8:15 पर श्रोता सुनेंगे एक ही फिल्म से फिल्म संगीत, 9:15 पर गोरबंद का प्रसारण किया जाएगा और रात्रि 10 बजे गीत गंगा इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा।

अभी श्रोता कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:05 हुए हैं। अब श्रोता सुने एक ही शीर्षक से फिल्म संगीत। आज का शीर्षक है मोहब्बत। इस शीर्षक को हमें बनाकर भेजा है रघुनाथपुरा से लालगिरी गोस्वामी और रामपुरा मटोरिया से मुरारी शर्मा ने। आइए सुनते हैं ये पहला गीत जिसे हमने फिल्म मुगले आजम से लिया है। आवाज दी है मोहम्मद रफी और साथियों ने।

आइए अब सुनते हैं त्रिशूल, इस फिल्म का ये गीत। आवाज दी है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। शाहिर लुधियानवी ने इस गीत को लिखा और संगीत खयाम का है।

आइए अब सुनते हैं अर्पण। इस फिल्म का ये गीत आवाज दी है अनवर ने, गीत लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

मोहब्बत ऐसी धड़कन है जो समझाई नहीं जाती। आइए अब सुनते हैं प्रेम रोग, इस फिल्म का ये गीत। आवाज दी है सुरेश वाडकर ने।

अभी आप सुन रहे थे एक ही शीर्षक से फिल्म संगीत। आज का शीर्षक था मोहब्बत। इस शीर्षक को हमें बनाकर भेजा था रघुनाथपुरा से लालगिरी गोस्वामी और रामपुरा मटोरिया से मुरारी शर्मा ने। 12:30 हुए हैं। अब श्रोता सुने सुगम संगीत। सुगम संगीत में आइए सुनते हैं ये गजल।

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। हम आकाशवाणी के कार्टन शिडी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़। इसके अलावा आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी हमें सुन सकते हैं। दोपहर के 12:50 हुए हैं। अब किसान भाई सुने कार्यक्रम खेत खलिहान। इसमें आज जानकारी का विषय है फर्टिगेशन अपनाएं, उपज बढ़ाएं।
1: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों, कृषि उत्पादन प्रक्रिया में सिंचाई जल और उर्वरक दो बहुत महत्वपूर्ण आदान है। कृषि उत्पादन की एक टिकाऊ व्यवस्था का सागे सागे पर्यावरण की शुद्धता बनाए रखने खातर उर्वरकों को कुशल प्रबंधन बहुत ज्यादा जरूरी है। फसलों की अच्छी बढ़वार और पैदावार के लिए अलग अलग पोषक तत्वों की जरूरत पड़े। मृदा में पोषक तत्वों की कमी होने पर उर्वरकाशू अंगी आपूर्ति जकी है बापा कर्षका। भाई लोगो, उर्वरक जगह है भी बहुत महंगा आदान मानी जाए। इन वास्ते अंगो जो को उपयोग है वो बड़ी कुशलता पूर्वक करना जरूरी है, क्योंकि उर्वरकों के उपयोग को पूरा लाभ जद ही मिल सके जद आने जरूरत के हिसाब से संतुलित और सही ढंग से अंगो प्रयोग करा। खेत से अधिक उपज लेने खातर उर्वरकों को संतुलन इस प्रकार करा कि फसल की मांग और जरूरत के हिसाब से जका जरूरी पोषक तत्व है भी उपलब्ध होता रहे और माटी को जो स्वास्थ्य है वो भी सुरक्षित बनो रहे। अब मौके पर देखा तो फसल और भूमि की जरूरतों के हिसाब से उर्वरक और जल को समुचित स्तर बनाए रखने के लिए फर्टिगेशन एक बहुत ही बढ़िया और महत्वपूर्ण प्रणाली है। बात करना फर्टिगेशन के बारे में तो फर्टिगेशन एक ऐसी प्रणाली है जका मा उर्वरक ने सिंचाई जल में मिश्रित करके सीधी पौधों की जड़ा तक पुगायो जाए। भाई लोगों, फर्टिगेशन से उर्वरकों की कम मात्रा में जल्दी से जल्दी कम और कम अंतराल पर पहला से नियोजित सिंचाई का सागा अपन देश का इस पौधा ने जरूरत के हिसाब से पोषक तत्व मिलता रहे और मूल्यवान जका उर्वरक है बंगो दोहन भी बहुत कम हुए। फर्टिगेशन के माध्यम से जल और पोषक तत्वों को सही समन्वय रख के फसलों की अच्छी पैदावार और गुणवत्ता सुनिश्चित कर सका। इस पौधा ने जरूरत के हिसाब से पोषक तत्व मिल जाए और मूल्यवान जका उर्वरक है ज्यादा महंगा जका उर्वरक है बांगो दोहन भी बहुत कम हुए। उत्पादन में वृद्धि खातर गुणवत्ता युक्त फसल

लेस का इंगा माध्यम छू और इंगा इस्तेमाल छू छिड़काव विधि की तुलना में श्रम भी बहुत ज्यादा कम हुए। फर्टिगेशन में उर्वरकांग जो उपयोग है वो लगभग तरल रूप में ही करो जाए, पने शुष्क और दानेदार जगह उर्वरक है बंगो प्रयोग फर्टिगेशन का मां भी करियो जा सके। इमें शुष्क और दानेदार उर्वरकों को इस्तेमाल करने से पहला पानी में घोल बना गे और फिर अपा इन काम में ले सका। उर्वरकों के घोल ने फर्टिगेशन से पहला छानना जरूरी है, ये बात को पूरा ध्यान रखना है। और बूंद बूंद सिंचाई तंत्र का मां भी उर्वरक अपा अच्छी तरह छान गे और बिना काम में ले सका। अब इनका कई तरह का जगह फर्टिगेशन का फायदा है बे थन बता दूं। इस एक तो पौधा ने जरूरत के हिसाब से उर्वरक और पानी की जी सही मात्रा है वह मिल जाए। जमीन के अंदर जो को प्रदूषण है वो भी बहुत कम हुआ है फर्टिगेशन की वजह से। और फसल ने जरूरत के हिसाब से ही पोषक तत्व जगह है व्यापार निर्धारित करके दे सका। भाई लोगों फसल की वृद्धि और उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पादन भी आप इसे प्राप्त कर सका। फर्टिगेशन का और भी कई फायदा है जहाँ उर्वरक और पानी सीधा पौधे की जड़ा तक पहुंचा सका। घुलनशील उर्वरक और रसायनों का समुचित प्रयोग इन वजह से हुआ है। मिट्टी का अलग अलग उर्वरकों की सहचलता के हिसाब से उर्वरक ने खेत में आप नाक सका। भाई लोगों फर्टिगेशन उर्वरक देने की जी सुरक्षित विधि है, इसे पौधा की जड़ा ने की भी तरह की कोई हानि को नहीं होनी। इन अलावा फर्टिगेशन के द्वारा जी ड्रिप सिंचाई करके आप बंजर भूमि है बिना उपजाऊ बना सका और अच्छी फसल प्राप्त कर सका। अलग अलग उर्वरक ने अलग अलग मात्रा में आपने निर्धारित करके और बिंग हिसाब से भूमि में नाक सका। इन अलावा और भी कई फायदे है जहाँ पौधा ने सही मात्रा में पानी मिल सके और इंग सागे पानी जो है वो भूमि में चारों ओर इन्हें बिना खिंडा कोनी। और कई तरह जगह खरपतवार है बे भी पैदा कोनी होनी जिस क्या पौधा ने पोषक तत्व की कई भी तरह कोई कमी जी है वह कोनी रहनी। अब बात करा फर्टिगेशन का मां कई सावधानियां रखनी भी बहुत ज्यादा जरूरी है जिया उर्वरक ने मिलाता टेम बंगी संगति के हिसाब से ही बंगू मिश्रण जो है वो अपने तैयार करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सावधानी ना रखेंगे तो बिना कई फायदा जगह होने के बजाय अपने नुकसान भी हो सके। तो ये वास्ते जब भी आप उर्वरक जगह मिलाओ तो बाकी संगति जकी है बाकी किस्म जकी है बिंगो अपन पूरा ध्यान रखना जरूरी है, फिर ही अपन मिश्रण जो है वो तैयार करना चाहिए। इस क्या है कि एक तो आपस में रासायनिक क्रिया जकी है बा कोनी होनी, कई बार आप ऐसा उर्वरक आपसरी में मिला देवा जबकि जैसे रासायनिक क्रिया करके अरबे कोई अलग से कोई रसायन तैयार कर देवे, तो आपने इन बात को पूरा ध्यान रखना है। और बढ़िया तरीके से अगर आप मिश्रण तैयार करांगा तो बीच में अपनी जो फसल है बढ़िया पैदा होगी और आपने ज्यादा फायदा होगा। भाई लोगों उर्वरकों को जो विलय है घोल जो को है बनाने के लिए उर्वरकों को मिश्रण पहला से आपने तय करना जरूरी है और बिंगो जो को अनुपात है वो सही होना जरूरी है। सल्फेट और फास्फेट युक्त जका उर्वरक है बने कैल्शियम युक्त उर्वरक के साथ मिश्रित कदे नहीं करना चाहिए, इन बात को पूरा ध्यान रखना है। और इन अलावा अपन धीरे धीरे जकी रासायनिक खेती है बिंगो थोड़ा सा जो को तरीको है वो अब धीरे करना पड़ेगा धीमो करना पड़ेगा। और अब जैविक खेती जकी है बापा करांगा तो बीच क्या का आपने जो को रासायनिक तरीको है वो छूट जाएगा और आपने जो फसल है वह बढ़िया और बेहतर होगी। भाई लोगों अब रासायनिक जो को तरीको है वो इतो ज्यादा दूषित हो गयो कि बिंग वजह से खाद्यान्न जो को पैदा कर ला रहा हाँ जो को अन्न आपा पैदा कर ला रहा हाँ वो भी जहरीलो हो गयो। तो अब जैविक खेती अब धीरे धीरे अपनानी शुरू कर दो, एक बार थोड़ा सा कम रकबा में आप शुरुआत कर दो बी बाद में धीरे धीरे बिंग बढ़ोतरी आप करता रहे बीच क्या है कि एक तो खाद्यान्न जो है वो साफ सुथरो और शुद्ध पैदा होगा और दूसरी बात है कि बीच पर्यावरण भी नाश को नहीं होनी। आप कई बार रसायन छिड़का तो अपना रसायन जो है वो पूरा पर्यावरण ने नुकसान पुगावे अपने जीवन ने भी नुकसान पुगावे और इन अलावा माटी जकी है वह भी दूषित होने ला रही है। अब देखे कि नानी आप माटी के अंदर कठोरपन आने ला रहे है, माटी के अंदर कई तरह जगह सोरा है बे भी देखने मिलने ला रहा है, फसलों जकी है भी अपनी माड़ी होने ला रही है। कई बार आप इसी किस्म बिजांत कर देवा जकी किस्म अपनी भूमि माने ही कोने नहीं, तो ये मोटा सा कारण इंगी वजह से है कि आप माटी को जो को नाश है वो बहुत ज्यादा कर दियो। माटी में पानी धारण करने की क्षमता बिल्कुल खत्म होगी, माटी के मांझ की उर्वरा शक्ति है वह भी बिल्कुल खत्म होगी। तो आप धीरे धीरे जैविक खेती अपनावा और जैविक खेती से अपनी जिकी फसल है अपनी जिकी माटी है बिना भी बचाना जरूरी है, आने वाली जिकी पीढ़ी है बिना भी बचाना जरूरी है। और इन अलावा थाने बता दें अब इसी बहुत सी किस्म याद कर रखी है जिकी किस्म अपने कम रासायनिक छिड़काव की वजह से भी बढ़िया बेहतर अपा ले सका। और इंगा सागे सागे पानी बचाना भी जरूरी है क्योंकि बिना पानी थान ध्यान ही है के जीवन है और के फसल है कुछ भी कोनी बनी। तो अब पानी बचावा सा और पानी बचा के अपा अपनी जी फसल है बिंगी पैदावार बढ़ावा। और इंग सागे सागे अपने इन बात को भी ध्यान रखना है कि अब जका कीटनाशक आप कीट नियंत्रण खातर छिड़कन ला रहा हाँ तो बे क्या है कि अब धीरे धीरे थोड़ा सा कम कर देवा और बिंग जगह को जैविक जो को नियंत्रण है वो अपना लेवा। बहुत सा ऐसा तरीका है जिया आपने नीमनाशी को प्रयोग कर सका आप और इंग अलावा ऐसा रसायन आप जगह जैविक तरीका है बन अपना आगे तैयार कर सका जगह की वजह से ना तो कोई अपना मित्र कीट खत्म हुए ना अपनी भूमि नाश हुए

0: ਨਾ ਪਰਿਆਵਰਣ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਇਹ ਬਾਤਾਂ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜੀ ਭੂਮੀ ਵੀ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੋ ਖਾਦਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਚੱਕਰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਗਰ ਖੇਤੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜੀ ਭੂਮੀ ਉਰਵਰਾ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਵਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਿਤਰੀਆਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਭਾਈ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਾਤ ਔਰ ਕਿ ਅਬ ਪਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਚਾਉਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਸਿੰਚਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੀ ਫੁਹਾਰਾ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਬਰਸਾਤ ਕੋ ਇਕੱਠੋ ਕਰੇ ਕਰਾਂ, ਜਾਂ ਖੇਤ ਗਾਵਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟੋ ਮੋਟੋ ਟਾਂਕੋ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਹੋਦੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਡਿੱਗੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕੀਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜੋ ਕੋਈ ਅਤਿਰਿਕਤ ਆਪਣਾ ਕਨ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਸਿੰਚਾਈ ਔਰ ਫੁਹਾਰਾ ਜਿਹੀ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੁਕੀਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜੋ ਕੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਮ ਖਪਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੀ ਫਸਲ ਹੈ ਬਿਨ ਪੂਰੋ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਪਿੱਛੇ। ਇੰਗਾ ਔਰ ਵੀ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖਰਪਤਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਖਰਪਤਵਾਰ ਕਮ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਚੜ ਕੋਣ ਕਰਨੀ ਪੜੇਨੀ। ਔਰ ਜਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਧਾਣੀ ਲਗਾਵਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਮਤਲੀਕਰਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਖਾਲਾ ਛੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੱਟ ਬਾਂਧ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਣ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖਾਲੋ ਜੋ ਹੈ ਵੀ ਮਾਕੀ ਬੀਤਰੀਆਂ ਕਚਰੋ ਮਚਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲੀਕੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਬਾਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ ਮਾਂ ਬੜੋ ਸਿਓਕ ਰਹੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸਾ ਪਣਬ ਹੂੰ ਖੇਤ ਕਾਨੀ ਚਾਲੂ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਾ, ਰਾਮ ਰਾਮ।
1: अभी किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम खेत खलिहान। इसमें जानकारी का विषय था फर्टिगेशन अपनाएं उपज बढ़ाएं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में नारेबाजी की। लोकसभा में कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों और विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी। इसके बाद प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। अध्यक्ष ने सरकार और विपक्ष से सदन सुचारू रूप से चलाने तथा लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू करने की अपील की। हंगामा जारी रहने पर लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी इसी मुद्दे पर विरोध के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। इससे पहले एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेता शामिल हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज अपने आवास पर आयोजित युवाओं के साथ संवाद सपनों की उड़ान कार्यक्रम में युवाओं से बातचीत की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा देश और प्रदेश का भविष्य हैं तथा उनके आगे बढ़ने से राज्य का विकास होगा। उन्होंने युवाओं से सरकारी नौकरियों के साथ साथ स्टार्टअप्स और स्वरोजगार के अवसरों को भी अपनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने प्रवासी राजस्थानी दिवस से पहले प्रदेश और जिला स्तर पर कला और संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा भी की। कार्यक्रम में नीट परीक्षा में देश भर में तीसरा स्थान हासिल करने वाले राजस्थान के छात्र उपलक्ष्य गोयल ने अपने अनुभव साझा किए। मुख्यमंत्री ने पेपर लीक मामलों पर कहा कि राज्य सरकार इस दिशा में पूरी गंभीरता से काम कर रही है। कार्यक्रम में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल सहित प्रदेश भर के युवा मौजूद रहे। जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान में अब 59% से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से जल की सुविधा मिल रही है। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार प्रदेश के 1.7 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों में से लगभग 63 लाख परिवारों तक नल से जलापूर्ति हो रही है। जल शक्ति मंत्रालय मंत्री सीआर पाटिल ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। देश भर में जल जीवन मिशन के तहत अब 15.89 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है, जबकि मिशन शुरू होने के

में ये संख्या केवल 3,23,00,000 थी। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा एक दो जगहों पर भारी बारिश दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान में भी कहीं कहीं गरज के साथ हल्की से मध्यम बरसात हुई। सबसे अधिक 7 सेंटीमीटर बारिश आबू रोड और राशमी में दर्ज की गई। इसके अलावा सवाईमाधोपुर, हिंडौन, माउंट आबू, गंगरार, देवदर और रूपबास में 5 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के अनुसार आज भी पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। पशुपालन विभाग ने बारिश के मौसम के दौरान गौशालाओं में मौसमी बीमारी और संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। सवाईमाधोपुर के संयुक्त निदेशक डॉक्टर राजीव गर्ग ने गौशाला संचालकों से जैव सुरक्षा उपायों की पालना सुनिश्चित करने, गौवंश का समय पर टीकाकरण करने और पशुओं को खुले में चरने के लिए नहीं

0: विभाग ने बारिश के मौसम के दौरान गौशालाओं में मौसमी बीमारी और संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। सवाई माधोपुर के संयुक्त निदेशक डॉ. राजीव गर्ग ने गौशाला संचालकों से जैव सुरक्षा उपायों की पालना सुनिश्चित करने, गौवंश का समय पर टीकाकरण करने और पशुओं को खुले में चरने के लिए नहीं छोड़ने को कहा है। उन्होंने संक्रमण की आशंका वाले क्षेत्रों की नियमित निगरानी करने और गौशालाओं में आने वाले नए गौवंश को निर्धारित अवधि तक क्वारंटीन में रखने के निर्देश भी दिए हैं। कोटा संभाग के सरकारी और निजी विद्यालयों में शनिवार को आयोजित होने वाले नो बैग डे पर विद्यार्थियों को अंगदान, नेत्रदान, देहदान और स्वैच्छिक रक्तदान के प्रति जागरूक किया जाएगा। इस पहल के साथ कोटा ऐसा कार्यक्रम शुरू करने वाला प्रदेश का पहला संभाग बन गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ के विद्यालयों में ये जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के कॉटन श्री चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। 1:05 हुए हैं। अब बहने सुने अपना कार्यक्रम घर आंगन।

कै खाती ली निजरा स्यूं भाड़ूं, कै खाती ली निजरा स्यूं भाड़ूं, लाखां बीच छूं थाने टाड़ूं। घोर निराशा रह अंधिया रह, कै घोर निराशा रह अंधिया रह, एक आसगी किरण उछाड़ूं। पीढ़ियां रा मे बेर मिटावना, मारे आंगन जाजम ढाड़ूं। थां पर ओप आम तो रेवे, कै थां पर ओप आम तो रेवे, तिल तिल करने खुद ने गाड़ूं। थाने मनड़े री केवण ने, कै थाने मनड़े री केवण ने, टूट्या फूट्या शब्द संभालूं। लियो फिर थाने मनड़े री केवण, और थारे मनड़े री सुनन वास्ते थारे आप गए विशाले आ गई थारी किरणा बाई। घर आंगन सुनन वाली सगड़ी मेरी भेणा ने राम राम। मेरे कहानी छू बहनों, देखो मौसम चालन लाग रहा बरसात गो, इं बिकेस का कच्चिड़ पिड़ो सो हनी, और ई बदलाव सारू आपने भी देखो अपने रेण सेण गो बदलाव करनो लाजमी है। और शाणा जिका मिणख है नी भी क्यों है कै खान पान में खाटो और चीकनो कम ही खाणो है, नहीं तो देखो हाजमो भी खराब हो सके। और आजकल तो देखो अपने सावन लाग जी, और सावन का जिका हिंडा हिंडन है थे भी तैयार हो जाओ। पर बहनों एक बात सोचने वाली है कै एक बात है कि हिंडा खातर कोई मोटो दरखत भी तो होना जरूरी है, और आजकल तो देखो दरखत तो बियाँ भी कम ही है। पहली एक आध दरखत घर में ही होता, पर आजकल बाखड़ तो छोटी होगी और दरखत देखो कठी हुए कोनी। बड़ी गंभीर बात है जे सोचो तो, फिर भी जरूरत की है आविष्कार की जननी हुआ। तो देखो कोई न कोई तो आपने जुगत है जिकी बिठावनी होसी, और जुगत आई है कि जटे खाली जियाँ दिखे बठे एक रूंख जरूर लगावनो है। आ शाणी बात है नी, क्योंकि एक बात और कहूँ थाने कि बहनो जे आप पानी भी बचावन सारू काम करा, क्योंकि देखो मे बरसैगो जना के है कि जिको अब कह काल भी बहुत तकड़े मेह की संभावना बताईड़ी है, और पानी की बियाँ भी कमी है। तो आप है कि आप अपने आंगन में ही डिग्गी खोद गए और मेह और पानी जो बेलो कर लेवानी, तो वह आप अग आने वाली टीम में अपने काम आ सके। बहुत सारा काम है जिका आप पानी कर सका है नी। और देखो बात चलन लाग रही है मौसम की, तो ई जमा

आज मौसम में थाने सुनावा एक जमा जम कर तू भजन, क्योंकि कोई भी कागज देखो कार्य जिको पलावण वास्ते पहली हरि को गुणगान जरूरी हुए। आ अपनी रीति भी है और थारे सागे मारी प्रीति भी है। लियो सुनो थे सगली और ऋण जुनात कर तो भजन, और भजन पछे कर श्या बहनों आप बहुत सारी बात हेत सू भरी बात। तो आओ बहनों सुनाओ प्यारो सो भजन।

बहनों चोखो सो हनुमान जी को भजन सुनो। और आज मंगलवार भी है और बहनों आज है 28 जुलाई, यानी कि 28 जुलाई ने आज के है विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनायो जावे है। और इन दिन वो दिवस मनावण रो उद्देश्य है वो है बहनों के हर आदमी ने की है के इन बीमारी के बारे में जानकारी मिले और इंग की है समय पर जांच करा ले, टेम पर क्या इंग इलाज हो जाए, और जे इलाज हो जाए तो बचाव की जिसकी संभावना है वह भी की है कि ज़्यादा हो जाए, है नी। तो हेपेटाइटिस की चीज़ है इन पर आप बात करा तो देखो बहनों, वो हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिंगो असर के है कि आपनों जिको लीवर है नी बीम पर पड़े। तो आ बीमारी है जिकी वायरस है, दूषित पानी है, या जिको आपनों खराब खान पान है नी, या फिर इं भी केस का बेसंक्रमित खून हुए बिंग कारण बन सके। तो इंग लक्षण आपा ने किया ठा लागे इं पर बहनों आप बात करा तो के है कि इंग जिया आ बीमारी अपने शरीर में है तो बार बार के है थकान सी महसूस होने लग जाए, भूख है जिकी कम लागण लाग जाए, बुखार या फिर देखो जी है जिको मचलन लाग जाए, नहीं है क्या जी डूबे जी डूबे, और हल्टे मियाँ लागे भी डील में की है बुखार है। और आँख्या गिजकी चामड़ी है नी पीली पड़न लाग जाए, भी पीली अगर लक्षण में लागन लाग जाए, और पेट में की है कि हल्की जी दर्द है या फिर यहाँ लाग बोकर सूजन है, इन तरह का जो लक्षण हुआ है नी तो इंग मतलब हुआ है कि हेपेटाइटिस का ये लक्षण है, यानी कि बीमारी का लक्षण है। तो इंग बचाव का भी आपा जे उपायों की बात करा तो देखो बहनों, जिको हेपेटाइटिस बी गो है वो टिको जरूर लगाना चाहिए, और इन अलावा देखो साफ सुथरो पानी पीणो चाहिए, और ताजा जिको आपा खाणो खावानी वो ताजो बना के आपा ने खाणो चाहिए। इन अलावा देखो जिको आपा डॉक्टर जी कने जावा तो जिको इंजेक्शन लगावे सुई लगावे, या घर में जिका मानस है बेरेजर राजर को उपयोग करे तो वो नहीं होना चाहिए, नहीं बिकिंग काम में लेड़ो नहीं होना चाहिए। और खून चढ़ावन जावे नहीं तो सबसे पहला भी खून की जांच करवा ले, और टेम टेम पर देखो बहनों स्वास्थ्य की आपा ने जांच करवान तो रहना चाहिए, क्योंकि जे आपा टेम टेम पर स्वास्थ्य की जांच करवान तारांगा नहीं तो आपनों के है भी के बीमारी है भी चीज़ को ठा लाग जाए। कई बहनों तो इं डरती कौन जा भी कोई बीमारी ना निकल जाए, जरूरी थोड़ी है कोई बीमारी निकल, इं भी तो उसके नहीं भी कोई चढ़ती बीमारी हुए बा आपा टेमू आपा ठा लाग जाए तो डॉक्टर यहाँ की दवाई ले गया आपा वह नीचे उतार सका, नहीं तो वह चढ़ती चढ़ती ऊपर छज्जे पर जार बैठ जाए जिन्ना फिर आप के करा है। तो इन वास्ते जांच करानी बेहद ही जरूरी है। इन अलावा देखो जे आप दिवस की बात करा तो इन महत्व के है, तो इनकी आप बात करा तो देखो बहनों विश्व जी को हेपेटाइटिस दिवस की इं याद करवावे भी थोड़ी सी जागरूकता और टेम पर सही इलाज से लाखा जिंदियां बचाई जा सके, स्वस्थ जिगर अपने स्वस्थ जिगर और स्वस्थ जीवन री नीम है। तो बहनों बातें तो आप और भी कर, आओ सुनाओ प्यारो सो गीत।

है, माटी का बर्तन है, लकड़ी की कारीगरी है, इसी सी कला है जिकी देश दुनिया में आपकी अलग पहचान रख है। तो बहनों आपां ई हस्तकलाओं की है अपने जीवन में नए आयाम किया जा सका। तो इन पर जे आपां बात करना तो देखो सबसे पहली बात तो है रोजगार। एक देखो भी हर किसी भी कोई भी शेर हुए तो भी मैं नौकरी मिले आ बात जरूरी कौन भी आपने नौकरी मिली जिसी, पर जे आपने ये हस्तकला आती हुए तो आप घरे बैठा के है कोई ना कोई काम करी सका। और तो और आपने सागे सागे जिकी अपनी और भिन्ना है नी बन भी सागे जोड़ गए और बन भी के है कि आप फर्शू अर्श पर ले जा सका। जियाँ कि देखो जिकी अपनी भेना है भी खाली टेम में जियाँ सिलाई है, कढ़ाई है, बुनाई है, या जिका सजावटी समान है, या जिया आजकल कपड़ा का बेग चाल रहे बे, या फिर और भी बहुत सारी चीजा हो सके जिकी हाथों से अपन निर्मित कर सका या बना सका। इनके अलावा देखो जिकी अपनी बहना है बा में आत्मनिर्भरता है, जिन्ना भी कोई देखो बहन है बा आपकी हुनर से आमदनी करे नी तो परिवार की देखो आर्थिक मदद तो वही हो सागे सागे की है बिंग आत्मविश्वास भी बढ़े। और तीसरी बात आ है कि अपनी जिकी संस्कृति है नी बिंगी भी इंगे मिसके है कि रक्षा हुआ है, क्योंकि देखो आप हस्तों जिको हाथों काम करने लग रहा तो वह अपनी एक संस्कृति बन गई, और भी संस्कृति ने जीव तो रखनो भी एक कला ही है। और जीवित कदरे सी जन आपने जिया अब कई लुगाई हैं भी कई चीज़ा काम करना छोड़ दिया तो वे आगे आना टावरन किया बता सी वो काम ही हो। तो अब जिया बिलोने की बात करा आप है नी तो बिलोनो पहला देखो बे बिलोण लगाइया करती तो वह मदानी होती और होती वह जिकी चीज होती भी वो जेरनियों अर मन अलग अलग चीज नेत्रार पुतन की नाम होता भी सारा ही की है का आपने याददाश्त तू गायब भी हो गया नी पहला लगाया सारा नाम याद रहता तो वह अपनी संस्कृति वह कट्ठी निकट्ठे की है गायब हो जाए। तो बिंगो की है का आप अपनी संस्कृति ने जो हस्तकला आप नानती हो नी तो आप अपनी संस्कृति की रक्षा कर सका। और देखो जे आप कला अपनावा तो नई पीढ़ी ने आप सिखा सियाँ कि और मैंने की है कि बाजार से भी जोड़ सियाँ और अपनी जिकी पुरानी कला है नी बा आने वाली पीढ़ियाँ तक भी पहुँचेगी। और बहनों जिको हाथ तो निर्मित समान है बिंगी मांग भी आजकल बहुत ज़्यादा है, जे आप कोई समान हाथ तो बना के बाजार में बेचा नहीं तो बिंगी की है कि लोग खरीदार बहुत करे क्योंकि बन बे चीज़ें पसंद आवे। तो आपने के है कि आप चाहिए कि सबसे पहला तो आप अपने हुनर ने पहचाना और देखा कि आप चीज़ अच्छी बना सका फिर भी हुनर ने और ज़्यादा सुधार। आजकल तो देखो कोई चीज़ आप आन लाग रही है नी मान लो कोई ऊन कोई काम आन तो है कोई अपन क्रोसियो चलान हुए या फिर देखो पहले लगाया दरिया बनती है दोपहर बैठ गए दरवाजे में डाल गए मांचा या फिर वो लगा गए वो पार्ट्स हो बिंग माँ बे धागा बांध गए कितनी दरिया बनती लगाइया चरखा काती सूत काती कोई डेरियो काती कोई की करती। आजकल तो भी जिया लगाइया गायब भी होगी बिथ खत्म भी होगी नहीं वो सारो ही की सिस्टम की रे कौन ही पहले कितो कितो लगाइया काम भी करती कितो काम उन तो बंग है आजकल तो कितनी सुराई होगी है काम की भी सुराई होगी लुगाइया काम हाथ वाला काम तो रे ही कौन ही पहला गब्बा भी देखो हाथा धोती पानी भी सिर पर डोगे कितनी दूर दूर उल्यांती और अब फिर भी लुगाइया का मन टेम कौन ही है बेबी तो टेम काटती है बनाई तनाई सो करती छोरियाँ छपरियाँ भी आप गुदाई जो पहले ही तैयार करके रख लेती है कितनी वो देखो इतनी सोहनी सोहनी तो बे आज देखो थारी मम्मी कोई संदूक है मैं तो मेरी माँ को संदूक देखूँ तो भी मैं इतनी सोहनी सोहनी चीज़ें मम्मी के हाथ की बनाएड़ी है तो ते भी कोई देखो थारी माँ को हाथ की आप देखा नहीं आप मावा के हाथ की दादी की है नानी की बे कितनी चीज़ा खाने वाली चीज़ा बनाने वाली चीज़ा पहनने वाली चीज़ा हर चीज़ में भी माहिर होती है। आजकल देखो बिकी तो दोस्त के है आजकल पढ़ाई भी दूसरी होगी है पहले पढ़ाई गो इतो कौन ही उन तो है पहले काम गो उन तो भी काम सीख ले आजकल पढ़ाई गो गो भी पढ़ाई नौकरी लागनो है नौकरी लागनो है नौकरी माड़ी कौनी पर आप अपनी संस्कृति से जुड़ा रहे वानी वह बहुत ज़्यादा जरूरी है। हरी बातें तो बहनों और भी करांगा आओ सुनाओ प्यारो सो गीत।

मैनो थे सुनन लाग रहे हो थारू आपको प्रोग्राम घर आंगन और मैं हूँ थारी भाई किरना। तो अपन बातें करन लाग रहे हाँ आज मोकड़ी सारी। तो आज अपन बात करा बेणो एक इसी समस्या के बारे में जिकी की है कि हर भेण की है भेण क्यों आजकल तो भाइयों में भी हो रही है बा है बाल जड़नों है नी बेणो। तो बाल की है कि अपनी खूबसूरती का सागे सागे अपने स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है। अब देखो जे बाल ना हुआ है नी जे टेम मान लो जवान आदमी है या जवान लुगाई है और बिना टेम से बाल गिरन लाग जाए तो बन डर रहन लाग जाए बिक ठीक की है कि गंज ना निकल जाए नी। तो इन वास्ते की है कि खूबसूरती तो है ही जे बाल सोना लंबा लंबा हुआ है तो देखो बेजा ही फूटरा लग गया है नी। और बे बाल की है कि जे ना ही हुआ है नी घना लंबा तो फिर इं वो कर देखिए मेरे बाल तो कितना छोटा है नी। तो आजकल और फिर देखो जे बे जड़न लाग जाए आपा सिर दुआ तो इतना ही तात्मा हुआ है और बाहवा तो भी बेता ही तात्मा आवे तो फिर डरनो तो लाजमी बने है नी। इन वास्ते के है कि वो है क्या खातर है वो आप बात करा तो देखो भी जिका बाल जड़ना है नी बेनो वो जिया मौसम में बदलाव होने लाग रहे जिया पहला देखो गर्मी अब बरसात ऋतु आई तो बरसात में तो और भी ज़्यादा देखने मिल रहा है। और इन अलावा देखो जिया तनाव है मान लो आप कोई चिंता रखा अपने मगज माई तो भी की है कि बाल जड़न लाग जाए। इन अलावा जे आपां जी को खान पान करा बिंगमा के है जे पोषक तत्वों की कमी है नी तो भी अपना बाल के है जड़न लाग जाए। और जे सही से बाला की देखभाल ना करी जाए हैं और कई बार के है आजकल तो गांव गांव में यही हो रही है कि दियारी प्यार शैम्पू मंगाओ शैम्पू सिर दो शैम्पू में हुए कि है नीरो ही केमिकल हुआ है और जे केमिकल आप अपने सिर पर लगा सियाँ तो के है कि बाल तो जड़ना ही जड़ना है। इन वास्ते पहला देखो लुगाइयाँ के है छाऊँ दही हूँ है नी आंवला रीठड़ा सिक्का काई इन से सिर धोती तो बंग बाल जड़ता भी कोनी आ। मैं तो अड़ता ही सुनियो है कि राख से भी पहला लुगाइयाँ सिर धोती हैं तो भी बंगा बेजा लंबा लंबा बाल होता ऐसा फूटरा बाल होता। पर आजकल के है कि जितनी सोराई चाल गई नी एक तो दूसरा देखा देखी भी आप टेलीविजन में देख लियो नी वो शैम्पू बड़ी है तो वो ही शैम्पू लिया या तो ऐ शैम्पू वाला आपा ने नी बाजनो। आपा ने की है पहली बात तो है अपनी जिकी खुराक है नी भी पर ध्यान देवा अच्छो आपा खान पान खावा सबसे ज्यादा तो देखो प्रोटीन हुए अपने भोजन में प्रोटीन की कमी हुए नी तो भी सी बाल जड़े। और प्रोटीन क्या में हुए दाला में तो आपा ने सारे प्रकार की दाल जिन्ना भी दाल बनावानी तो हर प्रकार की मुट्ठी मुट्ठी दाल लेके सारी दाल बे के फिर बनानी चाहिए हैं। और बाद दाल आपा ने खानी चाहिए। इन अलावा आप अंकुरित अनाज है बिन्ने खाँ तो बिन्न प्रोटीन हुए तो वो भी आपा ने खाना चाहिए। और कई बेड़ा की आदत तो है कि बाला ने बहुत कसगे बंद है तो वो भी आपा ने नहीं करना चाहिए। और गिला बाल भी आपा नहीं बाना चाहिए जे आप सिर धो गया या बाला ने बासा तो देखो बाल तो जड़े ही जड़ेगा है नी। और इन अलावा की है कि भी कई बेड़ा तो भाई टेम ही कौन मिले भी सारा दिन बाला ने बंद ही रखे कोई कंघ सी कौन फेरी जाए तो निरंतर की है कंघ सी आपा ने रोजा नहीं आपा ने सिर गई कर लेनी चाहिए कंघी तो है बाल बना के सोनी चोटी बना के रखनी चाहिए चाहिए जिनसू की है बाल जड़न की समस्या कम हुए। क्योंकि जो चोटी बनेड़ी रहसी तो बाल टूटेगा कौन नहीं और जितना बाल खुला ज्यादा रहसी वे बीता ही ज्यादा टूटेगा। आजकल तो खुला बाला की रिवाज सी चल रही है हर कहीं पहला तो देखो अच्छो को नहीं मानता खुला बाला ने पर आजकल तो क्या है कि बाल हर किंगे खुला ही दिखे अठे और तो और भी मिंदर मंदर में जावे बठे भी लुगाइया बाल खोल के जावे है पहला तो कहता मिंदर में जावे कोई है नहीं शुभ काम में जावे तो बाल बांध के बैठो बठे पर आजकल तो एक परंपरा ही चल गई है।

तो देखो बाल तो झड़ना लाजमी है, तो आपा ने की है कि बालों की जिया सफाई रखनी चाहिए, और इन अलावा खान पान को आपा ध्यान रख के अपने बालों ने बचा सका। और देखो मैनू कल है गुरु पूर्णिमा, तो आपा गुरु जी को सिमरन करा और सुनाओ प्यारो सो गुरु जी को भजन।

गुरबिन ज्ञान न उपजे, कै गुरबिन ज्ञान न उपजे, गुरुबिन मिले नरा, गुरु चरणा में शीस धर, मिले जीवन की चा। सही बात है भेणो, गुरु बिना की भी कोनी। गुरु है तो ही देखो आपने ज्ञान हुए है, हर एक चीज़ को ज्ञान गुरु से ही हुआ है। और माँ से बड़ो गुरु कौन हो सके, है नी? पहली गुरु अपनी माँ हुआ है, और भी बाद अपनो गुरु वो हुआ है जिको आपने जीवन की सही राह दिखा ले, है नी? और एक गुरु गुणो

अपने जीवन में भेजा ही जरूरी है। जे गुरु है तो आपनो जिको जीवन है वो एक अच्छी दिशा में जावे, है नी। तो बेनो बात करेंगे तो और भी बहुत सारी इच्छा ही, पर के है कि अब आ स्टूडियो घड़ी बाई बात की इजाज़त कौन दे, तो भाई किरणा ने दियो राम राम।

अभी बहने सुन रही थी कार्यक्रम घर आंगन। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी किरण शर्मा। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: FIRs in cybercrime cases across 18 states and union territories. 7.1 magnitude earthquake hits southern Japan, tsunami warning issued. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम उम्र और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू। एयर इंडिया ने अमृतसर हवाई अड्डे पर इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल शुरू किया है। इससे पंजाब 27 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से जुड़ सकेगा। झारखंड में 6 शीर्ष कमांडर सहित 16 माओवादियों का आत्मसमर्पण। सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की। दक्षिणी जापान में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया, सुनामी की चेतावनी जारी। और छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट, दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के छात्र प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में वे हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। प्रदर्शनों के दौरान पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कई अंतरिम निर्देश जारी किए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने प्रदर्शन वाले सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, कैमरा फुटेज, वायरलेस संचार रिकॉर्ड, पीसीआर लॉग और प्रदर्शनों से संबंधित अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखें। न्यायालय ने आदेश दिया कि प्रदर्शनकारियों से एकत्र किए गए डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन उसे सार्वजनिक न किया जाए। पीठ ने दिल्ली सरकार को दर्ज एफआईआर की जांच जारी रखने की अनुमति दी है, लेकिन कहा कि कार्यवाही लंबित रहने के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। पीठ ने दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों से याचिकाओं में लगाए गए आरोपों पर जवाब भी मांगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार विमर्श विधेयक पर चर्चा शुरू हो गई है। इस समय प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह चर्चा का जवाब दे रहे हैं। आइए सुनते हैं।
2: And for whatever interests. So I think you must compliment Prime Minister Modi and this government. It has finished an unfinished task which you should have accomplished.
1: राज्यसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद कार्यवाही फिर शुरू होने पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसका उद्देश्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में और संशोधन करना है। विधेयक पेश किए जाने के दौरान ही विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरवंश ने सदन की कार्यवाही आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक बैठक संसद भवन में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेता बैठक में शामिल हुए। तृणमूल से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI के सांसद भी गठबंधन की बैठक में शामिल हुए। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को

0: रोकने के लिए सभी हितधारकों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री ने हाल ही में हुए नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने और युवाओं के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। भारतीय जनता पार्टी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि एनडीए संसदीय दल की बैठक में सांसदों को भारत के विभिन्न देशों के साथ व्यापार और मुक्त व्यापार समझौतों से संबंधित घटनाक्रमों की जानकारी दी गई।
1: जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं दुनिया से, वो 2013-14 तक भारी हेवी ड्यूटी लगती थी, लेकिन आज ये जान करके खुशी होगी कि लगभग दुनिया के वो सभी विकसित देश भारत के साथ अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में है। आज जो बिल आ रहा है उस पर सभी लोग सकारात्मक रूप से भाग लें, विपक्ष से भी हम लोग अपेक्षा करते हैं डिस्कशन में भाग लें, उसको पास करें।
0: भाजपा राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पंजाब में बार बार हो रही कथित पेपर लीक की घटनाओं को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की और राज्य के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की।
2: पंजाब में पिछले 5 सालों में 6 मेजर पेपर लीक्स हुए हैं और चीटिंग स्कैम्स हुए हैं। अभी भी 19 जुलाई को पंजाब के फार्मेसी एग्जाम में बहुत मेजर चीटिंग हुई। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी पूरे जेंजी को ये बोलते हैं कि भाई सड़क पे आइए, नेपाल बनाइए भारत को, और जब पीसफुल प्रोटेस्ट युवा पंजाब में करते हैं तो उनपे बर्बरता से अरविंद केजरीवाल लाठी चलाते हैं। पंजाब के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका हर हाल में रेजिग्नेशन होना चाहिए।
0: कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि विपक्ष लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा में होने वाली चर्चा का इंतजार कर रहा है। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने पूरी व्यवस्था की समीक्षा और उसमें सुधार की आवश्यकता पर बल दिया।
3: ये बिल काफी है जो सरकार ने लेके आए हैं, सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स करने से या एक दो चीजें बदलने में क्या हमारे बच्चों के भविष्य बेहतर होने वाला है? बहुत सारे प्रश्न हैं। सरकार की अकाउंटेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे सिस्टम को अब देखना चाहिए और बदलना चाहिए।
0: सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की है। गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने बताया कि E0 FIR के तहत 12,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं।
4: गृह राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को साइबर अपराध के मामलों, खासकर साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में E0 FIR दर्ज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था के अंतर्गत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और हेल्पलाइन 1930 के जरिए मामले दर्ज किए जाते हैं। इससे अपने आप में E0 FIR दर्ज हो जाएगी। इसके बाद इसे तुरंत संबंधित इलाके के साइबर अपराध पुलिस स्टेशन को भेज दिया जाएगा। श्री कुमार ने बताया कि शिकायतकर्ता को E0 FIR को नियमित FIR में बदलने के लिए 3 दिनों के अंदर संबंधित पुलिस स्टेशन जाना होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन IR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonir.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पंजाब में अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज एयर इंडिया के इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही पंजाब उत्तरी अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के 27 वैश्विक गंतव्यों से जुड़ गया है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापो राममोहन नायडू ने वर्चुअल माध्यम से सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आंकड़ों से पता चलता है कि हर साल लगभग 1.5 लाख यात्री अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अमृतसर से दिल्ली की यात्रा करते हैं। इसी तरह लगभग 1.5 लाख यात्री विदेश से दिल्ली आते हैं और फिर अमृतसर की यात्रा करते हैं।
5: हब एंड स्पोक केवल एक एविएशन मॉडल नहीं है, यह एक अपॉर्चुनिटी मॉडल है। दिल्ली जैसे बनेगा हब और अमृतसर नॉर्थ इंडिया का इंटरनेशनल गेटवे बनेगा। पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, इन जैसे बड़े कैचमेंट एरिया आपको यहां से जुड़ेंगे। विदेशों में रहने वाले लगभग 3 करोड़ भारतीयों में करीब 1 करोड़ पंजाबी हैं। एयर कनेक्टिविटी जब बढ़ेगी तो उसका सीधा लाभ अमृतसर की अर्थव्यवस्था को भी पहुंचेगी और हब एंड स्पोक के माध्यम से हमारी एयरलाइंस की रेवेन्यू पर फ्लाइट भी बढ़ेगी।
0: नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा और एयर इंडिया एयरलाइन के अध्यक्ष विपिन कुमार भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि हब विमानन क्षेत्र के लिए सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इससे अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों तक यात्रा करने में आसानी होगी। इस शुरुआत के साथ अमृतसर से प्रतिदिन 2 इजी कनेक्ट उड़ान

0: बातें शुरू हो गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अपने कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन में वर्चुअल माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्र के विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के बारे में बात की।
1: इन 4 वर्षों में समावेशी विकास की सोच के साथ साथ देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व और आत्मगौरव की भावना को नई ऊर्जा मिली है। एक खुशी की बात है कि पिछले वर्ष ऐसे अनेक कार्य किए गए हैं जिनमें भारतीयता की भावना का विस्तार हुआ और हमने औपनिवेशिक मानसिकता के अवशोष को खत्म करने की ओर ठोस कदम उठाए हैं। विकास और जनसेवा की ये यात्रा निरंतर आगे बढ़ेगी तथा हम सब नए संकल्प और उत्साह के साथ अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर रहेंगे।
0: राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन के बच्चों के लिए बचपन बाल परिसर का भी उद्घाटन किया। इस पहल में किलकारी क्षेत्र और समर्थ आंगनवाड़ी सहपालन शामिल हैं। इस अवसर पर उन्होंने बाल परिसर में बच्चों से बातचीत भी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारतीय तटरक्षक बल ICG कर्मियों और उनके परिवारों के लिए 2 महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारों की जानकारी दी। इन नीतिगत सुधारों का उद्देश्य अधिकारियों की भर्ती और सेवा शर्तों में स्त्री पुरुष समानता को बढ़ावा देना है। झारखंड सरकार की नई दिशा नई पहल नक्सल विरोधी अभियान के तहत आज बड़ी सफलता मिली। कोल्हान और लातेहार क्षेत्र में सक्रिय 16 माओवादियों ने रांची में झारखंड पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वालों में 1 रीजनल कमांडर, 3 जोनल कमांडर, 3 सब जोनल कमांडर, 6 एरिया कमांडर और 3 काडर सदस्य शामिल हैं। इनमें 15 लाख रूपये का इनामी रीजनल कमांडर संतोष वासुदेव भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम की सांसदों से मुलाकात की और राज्य के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट पर यह जानकारी साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित लोगों की सहायता के लिए असम सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। ओडिशा में मूसलाधार बारिश जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में बने हवा के गहरे दबाव के कारण राज्य में तेज वर्षा हो रही है और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
2: मौसम विभाग ने अगले महीने की 2 तारीख तक पूरे राज्य में व्यापक बारिश और कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। बालेश्वर, भद्रक, मयूरभंज, केंदुझर और संबलपुर जिलों में आज सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रखे गए हैं। बालेश्वर शहर में पिछले 24 घंटे के दौरान लगातार बारिश के कारण सियासी इलाकों में पानी भर गया और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। जलका नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि कांसावांसा और गमई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से भद्रक जिले में बाढ़ की नई लहर आ गई है। राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को 24 घंटा सतर्क रहने का निर्देश दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिणी जापान में आज एक शक्तिशाली भूकंप आया है। जापान की मौसम एजेंसी ने बताया है कि आज दोपहर कुमामोटो प्रांत में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। एजेंसी ने अरियाके सागर और यात्सुशिरो सागर के तटों के लिए सुनामी की चेतावनी भी जारी की है। क्योशु रेलवे कंपनी ने कहा कि भूकंप के बाद क्योशु शिंकानसेन सहित सभी रेल सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। भारत के पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वर्ण पदक जीतने पर शर्मिला धनखड़ को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम उम्र और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया। राज्यसभा की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू। एयर इंडिया ने अमृतसर हवाई अड्डे पर इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल शुरू किया है। झारखंड में 6 शीर्ष कमांडर सहित 16 माओवादियों का आत्मसमर्पण। सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था

0: शुरू की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का कॉटन श्री चैनल सूरतगढ़ है। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज़। इसके अलावा आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर भी हमें सुन सकते हैं। 2:30 हुए हैं। अब श्रोता सुने फिल्म संगीत।

आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं आया सावन झूम के इस फिल्म का ये गीत। आवाज दी है मोहम्मद रफी ने।

आइए अब सुनते हैं ये गीत। फिल्म का नाम है आप आए बहार आई। आवाज दी है मोहम्मद रफी ने, आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

आइए सुनते हैं दिल दिया दर्द लिया इस फिल्म का ये गीत। आवाज दी है मोहम्मद रफी ने, शकील बदायूनी ने इस गीत को लिखा और संगीत नौशाद का है।

आइए अब सुनते हैं संघर्ष, इस फिल्म का ये गीत, आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने।

हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़। इसके अलावा आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर भी हमें सुन सकते हैं। इस समय दिन के 3 बजे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारी उर्दू सर्विस के कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

अब से कुछ ही देर के बाद यानी 3:05 पर खबरें नशे की जाएंगी और 3:15 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम मेरी पसंद। दोपहर 3:30 प्रोग्राम पेश किया जाएगा आदब नुमा और शाम 4 आप लुत्फानंदोज होंगे फिल्मी मौसीकी से। फिल्मी नापों का ये प्रोग्राम जारी रहेगा 4:50 तक। पर खबरें नशे की जाएंगी और शाम 5 उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। सामिन ये था एक मुख्तसर तारुफ इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों के हवाले से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DT फ्रीडिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। सपहर के 3:05 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशे की जाएंगी।
1: रजी अहमद से खबरें सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने उन एहतजाजी तलबा को रिहा करने की हिदायत दी है जिनकी उम्र 18 साल से कम है और उनका कोई मुजरमाना रिकॉर्ड नहीं है।

रजिया अहमद से खबरें सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने उन एहतजाजी तलबा को रिहा करने की हिदायत दी है जिनकी उम्र 18 साल से कम है और उनका कोई मुजरमाना रिकॉर्ड नहीं है। एयर इंडिया ने अमृतसर एयरपोर्ट पर पंजाब को 27 आलमी मकाम से जोड़ने वाले ईजी कनेक्ट हब एंड एक्सपोक मॉडल का आगाज़ किया है। झारखंड में 16 मौनवाजों ने, जिनमें चोटी के 6 कमांडर भी शामिल हैं, हिफाजती दस्तों के सामने खुद सुपुर्दगी कर दी है। हुकूमत ने 18 रियासतों और मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों में साइबर क्राइम केसेस में E0 FIR दर्ज करने का निज़ाम शुरू किया है। IMD ने छत्तीसगढ़ और ओडिशा में इंतहाई शदीद बारिश के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने आज मुजाहरा करने वाले उन तलबा को रिहा करने की हिदायत दी है जिनकी उम्र 18 साल से कम है और जिनका कोई मुजरमाना रिकॉर्ड नहीं है। अदालत ने हुक्काम से यह भी कहा है कि वो नीट पेपर लीक के मामले पर हालिया मुलगीर मुजाहरों से मुतालिक इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल शवाहद भी महफूज रखें। अदालत ने यह भी कहा है कि पिछले हफ्ते तलबा के मुजाहरों के दौरान तलबा और पुलिस अफसरान के ज़ख्मी होने के इल्ज़ाम की एक शफाफ और आज़ादाना तफ्तीश कराए जाने की ज़रूरत है। मुख्तलिफ दरख्वास्तों की समाअत करते हुए, जिनमें मुजाहरों के दौरान पुलिस का मुबीना तौर पर ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने बुरी हदायत जारी की हैं। अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी बलकवामी हवाई अड्डे पर आज एयर इंडिया के ईजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल के आगाज़ के साथ पंजाब का राबता शुमाली अमरीका, बरतानिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के 27 मकाम से कायम हो गया है। अमृतसर से रवाना रोज़ाना 2 ईजी कनेक्ट परवाज़ें रवाना होंगी। शहरी हवाबाजी के वज़ीर के राम मोहन नायडू ने कहा है कि अमृतसर शुमाली भारत के लिए बलकवामी गेटवे बन जाएगा। पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश समेत बहुत से इलाके अमृतसर के ज़रिए मुंसलिक होंगे। झारखंड की नई दिशा नई पहल नक्सल मुखालिफ मुहिम को आज बड़ी कामयाबी हासिल हुई है क्योंकि कोल्हान और लातेहार खित्तों से ताल्लुक़ रखने वाले 16 सरगर्म मौनवाजों ने रांची में झारखंड पुलिस के सामने खुद सुपुर्दगी कर दी है। खुद सुपुर्दगी करने वालों में एक इलाकाई कमांडर, 3 जोनल कमांडर, 3 सब जोनल कमांडर, 6 एरिया कमांडर और 3 कैडर सतह के अरकान शामिल हैं। इनमें इलाकाई कमांडर संतोष उर्फ वासुदेव भी शामिल है जिस पर 15 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA की पार्लिमानी पार्टी की हिकमत अमली से मुतालिक हफ्तेवार मीटिंग आज सुबह पार्लियामेंट हाउस में मनक़द हुई जिसे अब मंगल मिलन कहा जाता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और दीगर रहनुमा इस मीटिंग में मौजूद थे। इस तरह की मीटिंग पार्लियामेंट इजलास के दौरान रिवायती तौर पर हर मंगल को हुआ करती है जिसका मकसद NDA के मुकम्मल इत्तेहाद का मुजाहरा करना है। तृणमूल से अलग होने वाले अरकान पार्लियामेंट के अरकान NCPI ने भी इत्तेहाद की इस मीटिंग में शिरकत की। इस महीने की 21 तारीख को गुज़श्ता मीटिंग के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पूरे मुल्क में आइंदा होने वाले इम्तहानात में पेपर लीक के वाक़यात की रोकथाम के लिए सभी मुतालिका इदारों की जानिब से मरबूत कोशिशों की ज़रूरत पर ज़ोर दिया था। वज़ीर आज़म ने नीट इम्तहान का पर्चा लीक होने के हालिया वाक़े में मुलव्वस अफराद के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करने और मुल्क के नौजवानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के तई सरकार के अहद को दोहराया था। सियाहत के वज़ीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि सियाहत की वजारत ने रियासती सरकारों, भारतीय मिशनों और मुतालिका फरीकों के साथ मिलकर अहम और सयाहों को रागिब करने वाली इम्कानी मार्केट्स में मुख्तलिफ तरक्याती सरगर्मियाँ शुरू की हैं जिनका मकसद मुल्क में सियाहत को फ़रोग देना है। आज लोकसभा में एक सवाल के तहरीरी जवाब में जनाब शेखावत ने कहा कि इन सरगर्मियों में टूर ऑपरेटरों, इस सनत के मुतालिका फरीकों और मीडिया के साथ मिलकर सियाहत से मुतालिक रोड शो, फूड फेस्टिवल, ट्रेड मीटिंग्स, सयाहों को मुख्तलिफ जगहों और अशिया से मानूस कराने के दौरे, बैरून मुल्क भारतीय शहरियों को रागिब करने और लोगों तक रसाई हासिल करने के प्रोग्राम शामिल हैं। हुकूमत ने 10 और 20 रुपये की

0: कदर के प्लास्टिक के बैंक नोट शुरू करने की भारतीय रिजर्व बैंक की तजवीज को मंजूरी दे दी है। लोकसभा में एक सवाल के तहरीर जवाब में खजाने के वजीर ममलकत पंकज चौधरी ने बताया कि आरबीआई ने 10 और 20 रुपये की कदर वाले 1-1 अरब रुपये चलन में लाने के लिए हुकूमत को एक तजवीज़ भेजी है। उन्होंने कहा कि इन 2 कदरों के प्लास्टिक नोटों के कामयाब तजर्बे के बाद इन्हें जारी करने का सिलसिला बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर दिया जाएगा। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। हुकूमत ने 18 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में साइबर जराइम मामलों में E0 FIR दर्ज करने का निज़ाम शुरू किया है। उम्र दाखिला के वज़ीर ममलकत बी संजय कुमार ने बताया कि E0 FIR के तहत 12,000 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि मरकज़ ने रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को एक प्लेटफॉर्म फ्राहम किया है ताकि वो साइबर जराइम मामलों, ख़ासतौर से साइबर माली धोखादेही मामले में E0 FIR दर्ज कर सकें। पाकिस्तान के कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC के ज़ेर एहतमाम एक लॉन्ग मार्च के दौरान कम अज़ कम 20 अफराद हलाक और दीगर कई ज़ख्मी हो गए। खबरों के मुताबिक ज़ख्मियों में से कई की हालत नाजुक है, जिसके सबब मरने वालों की तादाद में इजाफा होने का अंदेशा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर JAAC ने कहा कि लॉन्ग मार्च के काफ़िले रावलकोट पहुँच गए हैं। तंजीम ने यह भी कहा कि मरने वाले 19 अफराद की शनाख्त हो गई है। JAAC और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान बातचीत मुबैना तौर पर नाकाम हो जाने के बाद इस लॉन्ग मार्च का इनाकाद किया गया। JAAC ने पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से पुरन एहतजाजियों के खिलाफ गोली बारूद और ताकत के ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाया है और अक़वामे मुत्तहिदा इंसानी हकूक से मुतालिक बल्क़वामी तंजीमों और जमहूरी हुकूमतों से अपील की है कि इस मामले में मुदाखलत करें। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर के सभी इलाकों में हालिया दिनों में एहतजाजी मुजाहरों में तेज़ी आ गई है। पूरे खित्ते में लोगों की आमदरफ्त और मवासलाती रबतों पर भी बंदिशें आयद कर दी गई हैं, जबकि कर्फ्यू जैसे इकदाम किए जा रहे हैं और इंटरनेट, न्यूज़, टेली मवासलाती खदमात मअत्तल कर दी गई हैं। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज छत्तीसगढ़ और ओडिशा के लिए तेज से इंतहाई तेज़ बारिश के मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कल तक के लिए बहुत तेज़ बारिश के मुतालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शुमाल मशरक़ी भारत, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, गुजरात, मगरबी बंगाल और विदर्भ के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिन के दौरान तेज़ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इस दौरान दिल्ली और उसके अतराफ आज तेज़ बारिश हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक कौमी राजधानी के बहुत से इलाकों में शाम को हल्की बारिश होने का इम्कान है। उधर आसाम में सैलाब की सूरत हाल में मज़ीद बेहतरी आई है और अब मुतासर ज़िलों की तादाद घटकर 6 रह गई है। सरकारी इतलात के मुताबिक शिवसागर, गोलाघाट, चराइदियों, जोरहाट, नागांव और कामरूप मेट्रोपॉलिटन ज़िले अब भी सैलाब से मुतासर हैं। 21 रेवेन्यू हलकों के तहत आने वाले 631 गाँव में मजमूई तौर पर 4,45,000 से ज़्यादा अफराद पर सैलाब का असर पड़ा है। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने उन एहतजाजी तलबा को रिहा करने की हिदायत दी है जिनकी उम्र 18 साल से कम है और उनका कोई मुजरमाना रिकॉर्ड नहीं है। एयर इंडिया ने अमृतसर एयरपोर्ट पर पंजाब को 27 आलमी मकाम से जोड़ने वाले ईजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल का आगाज़ किया है। झारखंड में 16 मौनवाजों ने, जिनमें चोटी के 6 कमांडर भी शामिल हैं, हिफाजती दस्तों के सामने खुद सुपुर्दगी कर दी है। हुकूमत ने 18 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में साइबर क्राइम केसेस में E0 FIR दर्ज करने का निज़ाम शुरू किया है और IMD ने छत्तीसगढ़ और ओडिशा में इंतहाई शदीद बारिश के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।
1: मीडियम वेव 6071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DT फ्रीडिश पर आप सुन रहे हैं।

आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात मेरी पसंद, ये प्रोग्राम लेकर आपका दोस्त नईम हाजिर खिदमत है आप सभी को मेरा आदाब। आज के प्रोग्राम में खराज अकीदत अपने वक्त की मारूफ अदाकारा कुमकुम को, उनका असल नाम जेबुन निसा खान था, 22 अप्रैल 1934 को बिहार के शेखपुरा में उनका जन्म हुआ। वो हिंदी और भोजपुरी फिल्मों की जानी मानी अदाकारा थीं। उन्होंने तकरीबन 100 से ज़ायद फिल्मों में काम किया और कहा जाता है कि गुरुदत्त अजीम अदाकार ना और फिल्म साज कुमकुम उनकी खोज थी। सबसे पहले गुरुदत्त की आर पार फिल्म से अपने करियर का उन्होंने आगाज़ किया। इसके अलावा मदर इंडिया, नया दौर, सन ऑफ इंडिया, आँखें, ललकार, कई और फिल्मों में उन्होंने बहुत खूबसूरत अदाकारी के फ़राइज़ अंजाम दिए। और तारीख की पहली भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तो है पियरी चढ़ई बो, इस फिल्म की वो अदाकारा थी। शुरुआत के दौर में कुमकुम ने अदाकार धर्मेंद्र के शुरुआती दिनों में उनका साथ दिया था। 28 जुलाई यानी आज के दिन 2020 में मुंबई में कुमकुम ने आखिरी सांस ली।

मुश्किल जीना यहाँ जरा हटके।

हिंदी फिल्मों के अलावा भोजपुरी फिल्मों में भी उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। गंगा मैया, तोहे पियर चढ़ाइबों से जो शुरुआत हुई थी, उसके अलावा लागी नहीं छोटे राम, बलमा, बड़ा नादान, नैहर छूटो जाए, भौजी और गंगा जैसी फिल्मों में अदाकारी करके एक अलग मकाम उन्होंने हासिल किया था भोजपुरी फिल्मों में। 28 जुलाई सन 2020 में मुंबई में उन्होंने 86 साल की उम्र में आखिरी सांस ली।

0: ये
1: ओके
0: आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप हमारी नशा सुन रही हैं। पेश है खिदमत है प्रोग्राम अदब नुमा।
2: सामीन की खिदमत में आदाब अर्ज है। अदब नुमा प्रोग्राम का एक और शुमारा हाजिर है और इस प्रोग्राम में आप सुनते हैं कलाम शायर के तहत किसी न किसी शायर का कलाम और साथ ही साथ एक कहानी जिसे हम कहते हैं उर्दू में अफसाना। तो आज के प्रोग्राम में कलाम शायर के तहत चलिए सुनते हैं मोहतरमा अना दहलवी से इंतहाई खूबसूरत तरन्नुम के साथ।

0: प्यार भला हो तेरा तुझको तेरी।
1: ये था खराज अकीदत। मारूफ अदाकारा कुमकुम को उनकी बरसी के मौके पर उर्दू सर्विस की जानिब से मेरी पसंद प्रोग्राम है।

थी तो उसे हासिल भी कर सकती थी। मैंने सोचा वाकई कौन बेवकूफ़ नीलूफर के हुसूल से इनकार कर सकता है, मगर अरशद अब मैं थक गई हूँ, जी चाहता है अपना घर हो। अच्छा, मैंने हैरत से पूछा, तो फिर इंतखाब कर लो, तुम्हारे पास तो कई अच्छे प्रपोजल्स हैं, वो फैसल कैसा रहेगा? वो तो तुम में बड़ी दिलचस्पी लेता रहा है। उसने बुरा सा मुँह बनाया और बोली, देखा नहीं, हंसता है तो सारी शख्सियत मात पड़ जाती है। फिर उसने कद्र संजीदगी से कहा, अगर फैसल जैसा ही कोई आदमी मुंतखब करना था तो जाने कब का ब्याह कर चुकी होती। उसकी हंसी मेरी तबीयत पर गिरा गुजरती है। मैं उसकी नाजुक मिजाज और हुस्न परस्त तबीयत से वाकिफ था। उसके ख्वाबों का शहजादा मुकम्मल आदमी होना चाहिए। चलने में, बोलने में, सोने में, हंसने में वो कोई मामूली सी कमी भी अपने शहजादे में नहीं देखना चाहती थी। उसने किसी मामूली कमी के बिना पर बेशुमार लोगों को रद्द कर दिया था। ऐसा करने में वो हक बजानिब थी। उसे खुदा ने फुर्सत के लम्हों में अपने हाथों से बनाया था। उसने एमए किया था एंशेंट हिस्ट्री में। कदीम तहजीबों के मुताले में उसे ख़ास दिलचस्पी थी। अपने शौक़ की खातिर तस्वीरें बनाती थी। ब्यूटिशियन और इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स भी किया था। कपड़े और कागज़ के बहुत खूबसूरत फूल बनाया करती थी। हाथों में कलम और सामने कागज़ हो तो बेख्याली में भी गुलबूटे बनाया करती। खाना तो बहुत उम्दा बनाती थी, लेकिन शायद ही कभी उसकी मम्मी ने किचन में उससे कोई काम लिया हो। ताहिरा तो फिर भी खाना बना लिया करती थी। उसने जब मेरे भाई के लिए इनकार किया था तो मैंने उससे बहुत पूछा था, आखिर क्या कमी है मेरे भाई में? उसने सिर्फ इतना कहा था, मुझसे मत पूछा करो अरशद, मैं कुछ नहीं कह सकती। मैंने सोचा शायद कामिल को पसंद करती हो, लेकिन जब उसके बारे में पूछा तो हंस पड़ी। हाँ अरशद, कामिल हर तरह से अच्छा है, लेकिन हंसता मुस्कुराता। यकीन करो, जब संजीदा होता है तो बिल्कुल बोंगा लगता है। इस तरह एक एक करके वो सबको रद्द करती रही। मैंने उसे एक बार प्यार से डांटा था, नीलूफर तुम किसी फरिश्ता सिफत आदमी की तलाश में यूं ही पूरी ज़िंदगी गुजार दोगी। वो एक लम्हे को मुस्कुराई और फलसफियाना अंदाज में बोली, डियर, किसी नापसंदीदा आदमी के साथ ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है कि पसंदीदा आदमी की तलाश में ज़िंदगी गुजार दी जाए। फिर उसने बड़े एतमाद से कहा, अरशद, अगर मैं अपने तौर पर सही हूँ तो मुझे वो ज़रूर मिलेगा। और अब इस बात से 8 बरस बाद जब मैं अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ मुंबई से लौटा हूँ तो भाईयान और ताहिरा भाभी ने मुझे उसके ब्याह की इत्तला दी है। ताहिरा भाभी ने अफसुदगी से कहा था, अरशद, आपा बिल्कुल पागल हो गई हैं, हम सब उनसे नाराज़ हैं, हमारी नज़र में उसकी कोई अहमियत नहीं, कोई वक़्त नहीं जिसे उन्होंने सर पर बिठा लिया है। और अरशद, वो नीलूफर का शौहर एक अखबार के दफ्तर में मामूली सा नौकर है, भाईजान आहिस्ता से मुस्कुरा कर बोले। और फिर भाईजान अपनी गाड़ी में मुझे नीलूफर के दरवाजे पर उतार गए थे। चूना पुती हुई सफ़ेद दीवारों और छोटे नीले गेट वाला घर जिस पर बोगनवेलिया की बेलें लिपटी हुई थीं। मैंने घंटी बजाई तो उसने खुद ही गेट खोला था। एक लम्हे को तो उसने मुझे पहचाना ही नहीं, लेकिन फिर चीख पड़ी, ओ अरशद, तुम मुंबई से कब आए? आज ही सुबह। मैंने उसे गौर से देखा, उसके बदन पे मामूली कपड़े मैले हो रहे थे। वो लड़की जो अपने कपड़ों पर एक ज़रा सा धब्बा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, अब अपने हुस्न नफासत पर सरापा धब्बा थी। उसके पेट की तरफ नज़र गई तो महसूस हुआ कि उसमें दूसरा वजूद भी मौजूद है। मैं सोच रहा था, क्या एक मामूली से बदसूरत आदमी के साथ रहकर यह हसीन लड़की सारी नफासत भूल गई है? आओ अरशद, यहाँ इधर बैठ जाओ, मैं सालन भून रही थी, काम भी करती रहूँगी और तुमसे बातें भी करती रहूँगी। उसने कुर्सी खींचकर किचन के दरवाजे पर रख दी। मेरा मियाँ आते ही खाना मांगता है। वो किचन में खड़ी टमाटर और प्याज काटती रही और बोलती रही, अल्लाह कितनी खुशी हो रही है अरशद तुमको देखकर, कितने अरसे बाद आए हो, रिहाना कैसी हैं, बच्चों को साथ लेकर तो आए होगे, पहले ये बताओ तुमने मुझे शादी की इत्तला क्यों नहीं दी? मैंने ज़रा नाराज़ होकर कहा, इत्तला क्या देती, मुझे मालूम था बाकी लोगों की तरह तुम भी ये पसंद नहीं करोगे। तुमने ऐसा क्यों किया नीलूफर, आखिर उस शख्स में क्या है जिसने तुम्हें मुतासिर किया? कुछ तो है अरशद, वो इत्मीनान से बोली। क्या तुम्हें उससे मोहब्बत थी? मैंने लब दबा कर पूछा। मोहब्बत बिल्कुल नहीं, वो हंस पड़ी। फिर क्या देख कर तुमने उससे शादी की थी? मैंने झुंझला कर कहा। मोहब्बत तो अब हुई है अरशद, पहले तो मैं उससे मिली भी नहीं थी। बातें करते हुए मैंने देखा उसके नाजुक हसीन हाथ गंदे बर्तन धोते हुए कितने अजीब लग रहे थे। मैंने उसकी तरफ इशारा कर

0: करके कहा, मगर तुम्हें तो ये सब पसंद नहीं था। पसंद पसंद कुछ नहीं होती अरशद, इंसान आदी हो जाए तो सब अच्छा लगने लगता है। क्या वो वाकई पागल हो गई है, जैसा कि ताहिरा भाभी ने मुझसे कहा था। मुझे उकताहट सी होने लगी। मैंने उससे कहा, मैं अंदर बैठता हूँ, तुम बर्तन धोकर आ जाओ। ठीक है, मैं कॉफ़ी बना कर लाती हूँ, तुम अंदर बैठो। उसके मकान के सिर्फ दो कमरे थे, एक को उसने बेडरूम और दूसरे को डाइनिंग रूम बनाया हुआ था। मैं डाइनिंग रूम में सोफे पर बैठा उसके कमरे का जायजा ले रहा था। सामने दीवार पर उसकी बनाई हुई पेंटिंग थी, खूबसूरत शानदार पेंटिंग, जिसे देखते हुए लम्हा भर को मैं सब कुछ भूल गया। नीलूफर की आवाज़ ने ही मुझे चौंकाया, वो कॉफ़ी की ट्रे हाथ में लिए खड़ी थी। कॉफ़ी पीते हुए मैंने पूछा, अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुमने ये फैसला क्यों किया, खुद से थक कर या अपने घर वालों की चाह में। खुद से थक कर नहीं डियर, क्योंकि उन दिनों मेरे पास शादी के कई प्रपोजल्स थे। दो बिजनेसमैन, एक डॉक्टर और एक कंप्यूटर इंजीनियर था। मैं सबसे मिली थी, लेकिन कोई मेरी पसंद का नहीं था। मैंने तंज के लहजे में पूछा, अपने शोहर की क्या चीज़ तुम्हें पसंद आई? अरे वो सारा ही मुझे पसंद है, जिसे तुम सब लोग बदसूरत कहते हो, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसकी हंसी बड़ी खूबसूरत है। जब वो संजीदगी से सोचता है तो उसके माथे की लकीरें बहुत अच्छी लगती हैं। जब वो चलता है तो बहुत अच्छा लगता है। जब वो सो जाता है तो ऐसा मासूम दिखाई देता है जैसे कोई फरिश्ता हो। सच बात यह है अरशद, वो अंदर से बहुत हसीन है। वो मुसलसल बोले जा रही थी। ताहिरा की शादी के बाद मम्मी की फिक्रों ने मुझे परेशान कर दिया। उन्हीं दिनों राजेंद्र भवन में मेरी तस्वीरों की नुमाइश हो रही थी। आदिल ने ये नुमाइश देखी थी, वहाँ मुझे भी देखा था। उसने मुझे खत लिखा, मैंने आपकी तस्वीरों की नुमाइश देखी, आपको भी देखा। मैं आमतौर पर इस तरह खत नहीं लिखता, लेकिन आपको और आपकी तस्वीरों को देखकर अंदर से ये ख्वाहिश हुई कि आपको खत लिखूँ। फिर राजेंद्र भवन के मुलाजमीन के जरिए मुझे उसके कई खतूत मिले। उसने लिखा था, आप फनकार हैं नीलूफर, फनकार हुस्न परस्त होता है, लेकिन इस हकीकत से आप इनकार नहीं कर सकती, फनकार हसास भी होता है, और एक हसास फनकार कभी किसी का दिल तोड़ना गवारा नहीं करता। आप बहुत हसीन हैं मिस नीलूफर, हुस्न परस्त हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या हुस्न किसी बदसूरत इंसान में नहीं हो सकता? और अरशद, मैंने उसी लम्हे उसके लिए बहुत कुछ सोच लिया। मैंने उसे लिखा, हाँ मिस्टर आदिल, मैं इकरार करती हूँ कि असल हुस्न इंसान के अंदर होता है। मुझे उसका जवाब मिला, आप बहुत अजीम हैं मिस नीलूफर, और मैं अखबार के दफ्तर में काम करने वाला एक मामूली आदमी। अगर आप हुस्न बातिन की कदरदान हैं तो क्या आप मुझे कबूल कर सकती हैं? मैंने आंखें बंद करके फैसला किया और उसे लिख दिया, हाँ मैं आपको कबूल करती हूँ। शुरू में पापा और मम्मी ने एहतजाज किया, ताहिरा ने भी बहुत समझाया। वो मुझसे मिलकर रोने लगी और बोली, आपा खुदा के लिए पागल ना बनो, वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। लेकिन मैं तो फैसला कर चुकी थी, अब मैं आदिल की बीवी हूँ और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं मुकम्मल हो जाऊँगी। मैंने भरी हुई आवाज़ में दुआ दी, खुदा करे तो सदा खुश रहे नीलूफर। तभी आदिल घर में दाखिल हुआ। नीलूफर जल्दी से मुड़ी, ओ आप आ गए आदिल, देखें ये है अरशद जिसकी बातें मैं अक्सर किया करती थी, ये ताहिरा का देवर भी है, जानती हैं ना आप इसे बहुत अच्छी तरह। वो मुस्कुराया, मैंने महसूस किया उस मामूली आदमी की मुस्कुराहट बड़ी खूबसूरत थी। नीलूफर ने जो कुछ चाहा था उसे मिल गया था।
1: समीन, अभी आपने जनाब शफीउज़्ज़मा से उनका अफसाना सुना उसकी नजर से, और अब प्रोग्राम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं हरिहरन की आवाज में ये गजल।

0: इस गजल के साथ ही आज का अदब नुमा प्रोग्राम अब खत्म होता है। हमें दीजिए इजाजत, आइंदा शुमारे तक खुदा हाफिज।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम अदब नुमा, पेश कर रही थी सबीहा फजल। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीडी रेडियो पर हमारी नशात का सिलसिला जारी है। लीजिए सुनिए कुछ फिल्मी नगमे। आगाज राजा और रंक फिल्म के नगमे से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और साथियों की, मौसीकी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

और ये सुनिए, काली टोपी लाल रुमाल फिल्म का नगमा लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया हुआ। मौसीकी चित्रगुप्त की

दिल भी तेरा हम भी तेरे फिल्म का ये नगमा सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। मौसीकी थी कल्याण जी आनंद जी की। और जब सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ ये नगमा। फिल्म है बारूद, मौसीकी खयाम की।

कचोर फिल्म का ये नगमा आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, और लीजिए सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये नगमा। फिल्म है घर की लाज, मौसीकी रवि की।

ये आकाशवाणी है। अब आप अब्दुल मालिक से खबरें सुनिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC के जेर एहतमाम एक लॉन्ग मार्च के दौरान कम से कम 20 अफराद हलाक और दीगर कई जख्मी हो गए। जनूबी जापान में 7.1 शिद्दत का जलजला आया। महकमे ने सुनामी की वार्निंग जारी की है। इसराइली वजीर अजम बिन्यामिन नेतन्याहू व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की गरज से आज वाशिंगटन पहुंच गए हैं। एयर इंडिया ने अमृतसर एयरपोर्ट पर पंजाब को 27 आलमी मकामात से जोड़ने वाले इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल का आगाज किया है। और दौलत मुश्तरका खेलों में भारत की पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ ने खवातीन के शॉटपुट मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC के जेर एहतमाम एक लॉन्ग मार्च के दौरान कम से कम 20 अफराद हलाक और दीगर कई जख्मी हो गए। खबरों के मुताबिक जख्मियों में से कई की हालत नाजुक है, जिसके सबब मरने वालों की तादाद में इजाफा होने का खदशा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर JAAC ने कहा कि लॉन्ग मार्च के काफिले रावलकोट पहुंच गए हैं। तंजीम ने यह भी कहा कि मरने वाले 19 अफराद की शनाख्त हो चुकी है। JAAC और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान बातचीत मुबैना तौर पर नाकाम हो जाने के बाद इस लॉन्ग मार्च का इनेकाद किया गया है। JAAC ने पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से पुरम एहतजाजियों के खिलाफ गोली बारूद और ताकत के जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल का इल्जाम लगाया है और अक्वामे मुत्तहिदा इंसानी हकूक से मुतालिक बैनुल अक्वामी तंजीमों और जमहूरी हुकूमतों से अपील की है कि वो इस मामले में मुदाखलत करें। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के सभी इलाकों में हालिया दिनों में एहतजाजी मुजाहरों में तेजी आ गई है। पूरे खत्ते में लोगों की आमदोरफ्त और मवासलाती राबतों पर भी बंदी शायद कर दी गई हैं, जबकि कर्फ्यू जैसे इकदाम किए जा रहे हैं और इंटरनेट नीज टेली मवासलात खिदमात मुअत्तल कर दी गई हैं। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने स्काई रूट एरो स्पेस के बानी पवन चंदाना और नागा भारत डाका के साथ गुफ्तगू की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि उनकी बातचीत में विक्रम 1 की कामयाबी नीज कई दीगर दिलचस्प मौजूदात पर खास तौर से तबादला ख्याल किया गया। वजीर अजम ने इस कंपनी के दोनों बानी अफराद के सफर और मुस्तकबिल के उनके मनसूबों के बारे में वाकफियत हासिल करने के बाद मुसर्रत का इजहार किया। जनाब मोदी ने कहा कि उनकी तवानाई जोश और मुस्बत अंदाज फिक्र से भारत के खलाई शोबे के प्राइवेट इको निज़ाम के मुतालिक जज्बे की अक्कासी होती है। जनाब मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम के तई नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। वजीर अजम ने मन की बात के अपने प्रोग्राम में भी विक्रम 1 की कामयाबी की सताइश की थी। अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे पर आज एयर इंडिया के इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल के आगाज के साथ पंजाब का राबता शिमाली अमरीका, बरतानिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के 27 मकाम से कायम हो गया है। अमृतसर से रोजाना 2 इजी कनेक्ट परवाजें रवाना होगी। शहरी हवाबाजी के वजीर के राम मोहन नायडू ने कहा कि अमृतसर शिमाली भारत के लिए बैनुल अक्वामी गेटवे बन जाएगा। पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश समेत बहुत से इलाके अमृतसर के जरिए मुंसलिक होंगे। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने पीचिंग में चीन के नायब वजीर खारजा हुआ चुनिंग से मुलाकात की और बामी ताल्लुकात के तमाम तर पहलुओं का जायजा लिया। जनाब मिश्री ने इस नजरिए को आगे बढ़ाने के तौर तरीकों पर भी तबादला ख्याल किया कि भारत और चीन साझेदार मुल्क हैं और तिजारती और इकतसादी राबतों में भामी तौर पर मुफीद नतीजों के जरिए एक दूसरे के लिए मौके दस्तियाब करा सकते हैं। चीन में भारतीय सफारतखाने के मुताबिक दोनों अहदेदारों ने भारत चीन सरहदी इलाकों में अमन व इस्तेकाम बरकरार रखने की अहमियत को तस्लीम किया। इससे कबल जनाब मिश्री ने पीचिंग में चीन की पीपल्स सियासी सलाहकार कॉन्फ्रेंस की 14वीं कौमी कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल होंग लियांग के साथ अपनी मीटिंग के दौरान सियासी और आवाम से आवाम के राबतों की सतह पर भारत और चीन के दरमियान बाहमी तबादलों को वसत देने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। इस मीटिंग में चीन में भारत के सफीर विक्रम दुराईस्वामी भी मौजूद थे। ये खबरें आकाशवाणी से नष्ट की जा रही हैं। इसराइली वजीर अजम बिन्यामिन नेतन्याहू व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की गरज से आज वाशिंगटन

0: पहुंच गए हैं। जनाब ट्रंप के दूसरी मुद्दत के लिए अमरीकी सदर मुंतखब होने के बाद से दोनों लीडरों के दरमियान ये आठवीं मुलाकात होगी। अपने बयान में इसराइली वजीर आजम ने कहा कि उन्होंने किसी भी बैन अलावी लीडर के मुकाबले अमरीकी सदर से ज्यादा मरतबा मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि दोनों रहनुमा एजेंडे के सभी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे, जिसमें ईरान के मामले को अव्वलीन तरजीह हासिल होगी। हुकूमत ने 18 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में साइबर जराइम मामलों में E0 FIR दर्ज करने का निजाम शुरू किया है। उमूर दाखिला के वजीर मुमलकत बंदी संजय कुमार ने बताया कि E0 FIR के तहत 12,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि मरकज ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को एक प्लेटफॉर्म फराहम किया है ताकि वो साइबर जराइम मामलों, खासतौर से साइबर माली धोखाधड़ी मामले में E0 FIR दर्ज कर सकें। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने आज आसाम के अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात की और रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में सैलाब की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये मालूमात फराहम करते हुए वजीर अजम ने कहा कि मरकज मुतासरीन की मदद के लिए आसाम सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने हरेक की हिफाजत और खुशहाली के लिए दुआ भी की। सुप्रीम कोर्ट ने आज मुजाहरा करने वाले उन तलबा को रिहा करने की हिदायत दी है जिनकी उम्र 18 साल से कम है और उनका कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं है। अदालत ने हुकाम से यह भी कहा है कि वो नीट पेपर लीक के मामले पर हालिया मुलगिर मुजाहरों से मुतालिक इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल शवाहिद को भी महफूज रखें। अदालत ने यह भी कहा कि पिछले हफ्ते तलबा के मुजाहरों के दौरान तलबा और पुलिस अफसरान के जख्मी होने के इल्जाम की एक शफाफ और आजादाना तफ्तीश कराए जाने की जरूरत है। दरखास्तें की समाप्त करते हुए जिनमें मुजाहरों के दौरान पुलिस का मुबैना तौर पर जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने उबूरी हिदायत जारी की है। जनूबी जापान में आज एक ताकतवर जलजला आया। जापान के महकमा मौसमियात ने कहा है कि कुमामोटो खित्ते में आज सहपैर 7.1 शिद्दत का जलजला आया। महकमे ने बोहरा अरियक और बोहरा यात्सुरो के साहली इलाकों के लिए सुनामी की वार्निंग जारी की है। दूसरी जानिब इस ताकतवर जलजले के बाद खित्ते में सभी ट्रेन खिदमात मुअत्तल कर दी गई हैं। दौलत मुश्तका खेलों में भारत की पैरा एथलीट शर्मिला धनकड़ ने ग्लासगो में जारी 9.81 मीटर की सीजन की बेहतरीन कारकर्दगी के साथ खवातीन शॉटपुट F57 मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। इस कामयाबी के साथ ही शर्मिला दौलत मुश्तका खेलों में सोने का तमगा हासिल करने वाली पहली पैरा एथलीट बन गई हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने दौलत मुश्तरका खेलों में शर्मिला धनकड़ के सोने का तमगा जीतने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर जमहूरिया ने कहा कि दौलत मुश्तरका खेलों में भारत की तरफ से पैरा एथलीट्स में पहली बार सोने का तमगा हासिल करके शर्मिला ने तारीखी कामयाबी हासिल की है। नौजवानों के उमूर और खेलों के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने शर्मिला धनखड़ को मुबारकबाद देते हुए कहा कि उनके जज्बे ने आलमी सतह पर पूरे मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया है। सदर जमहूरिया ने मर्दों के हाई जंप मुकाबले में चांदी का तमगा हासिल करने पर सर्वेश अनिल कुशारे को भी मुबारकबाद पेश की है। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC के जेर एहतमाम एक लॉन्ग मार्च के दौरान कम अज कम 20 अफराद हलाक और दीगर कई जख्मी हो गए। जनूबी जापान में 7.1 शिद्दत का जलजला आया। महकमे मौसमियात ने सुनामी की वार्निंग जारी की है। इसराइली वजीर अजम बिन्यामिन नेतन्याहू व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की गरज से आज वाशिंगटन पहुंच गए हैं। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्रेडिश पर आप हमारी नशरियात सुन रहे थे। शाम के 5 बजे चाहते हैं हमारी दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं।
2: आकाशवाणी का ये गार्डन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या के ठीक 5 बजे हैं। समय

नमस्कार युवाणी सुनने वाले सभी दोस्तों को आज हमारी तरफ से। दोस्तों कार्यक्रम युवाणी में आज हम कुछ बातें करेंगे समसामयिक मूल्यों पर, आज के दिन पर और बहुत सारी अन्य जानकारियां भी। इसके अलावा कुछ प्यारे फिल्मी गाने भी हम आपको आज के इस कार्यक्रम युवाणी में सुनवाने वाले हैं। आगाज करेंगे एक मीठे से सुंदर से गीत के साथ, चूँकि मौसम बड़ा दिलकश है, बड़ा रंगीन है, बड़ा सुहाना है। सावन से ठीक एक कदम पहले का ये दिन, ये मौसम हमें झूमने पर मजबूर कर रहा है कि कई मील रेत को काटकर कोई मौज फूल खिला गई, कई मील रेत को काटकर कोई मौज फूल खिला गई, कोई पेड़ प्यास से मर रहा नदी के पास खड़ा हुआ। ये सब अपनी अपनी तकदीर की बातें हैं कि बहुत दूर कहीं एक पेड़ जिस तक पानी की एक धारा पहुंचती है, और कहीं एक पेड़ नदी के ठीक किनारे खड़ा भी सूख जाता है। बहरहाल आगाज करेंगे इस गाने के साथ, फिर करेंगे कुछ और बातें।

दोस्तों, कार्यक्रम के आरंभ में आपने अभी आशा भोसले और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ों में आनंद बख्शी का लिखा एक गाना सुना, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। गाने इसी भाव के आप आज के इस कार्यक्रम में सुनेंगे, लेकिन कुछ बातें भी आपके साथ करनी है, कुछ चर्चाएं, कुछ जानकारियां। सबसे पहले बात करें दोस्तों घर परिवार की। हमारा घर, हमारा परिवार, ये हमारी पहचान होता है। इसके अलावा परिवार के कुछ मूल्य होते हैं जिन्हें हम पारिवारिक मूल्य मान सकते हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़रूरी ये कि बड़ों का सम्मान होना चाहिए। जिस घर में बड़े सम्मानित नहीं हैं, उस घर का रूप घर जैसा नहीं होता। माता पिता और बुजुर्ग, उनकी बातें सुनना, उनका मान रखना, इसके अलावा परिवार के अन्य सभी सदस्य प्रेम और सहयोग के साथ रहें, ये सब पारिवारिक मूल्य हैं। ईमानदारी और कर्तव्य, सबका अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार रहना, ईमानदारी से चलना, और इन्हीं सब चीज़ों से जो छोटे बच्चे किशोरावस्था से युवावस्था की तरफ बढ़ रहे होते हैं, उनमें चरित्र का निर्माण इन सब चीज़ों को देखकर होता है। घर के सदस्य, अगर बड़े सदस्य अगर आस्थावान हैं, कहीं मंदिर में बैठकर दिया जलाते हैं, तो ये सारी बातें बड़े ही सहज भाव से, ये जो तैयार हो रहे हैं युवा हैं, ये जो किशोर हैं, ये सब अपने आप से इन सब चीज़ों को आत्मसात कर लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों, घर के सदस्यों के बीच में विश्वास और अपनेपन की भावना, ये एक भावनात्मक सुरक्षा होती है। और यकीन जाने कि ये जो सुसंस्कृत परिवार होते हैं, यही एक अच्छे समाज की नींव होते हैं।

0: गीत अभी आपने सुना राजा मेहदी अली खान का लिखा हुआ, धुन बनाई थी मदन मोहन ने, आवाज़ें आशा भोसले और साथियों की। अगला गाना सुने लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
5: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
4: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: जी दोस्तों।

विक्रम सुनने आप युववाणी आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। दोस्तों, शामें यूं भी बड़ी खूबसूरत होती है, हमारी थकान को मिटाने वाली होती है। इसके अलावा जैसी आज की शाम है, बादलों से घिरी हुई ठंडी हवाओं के झोंके, ऐसे में ये प्यारा सा गीत जो हिंदीवर लिखा है वो हम आपको सुनवाएं। बात इतनी के साथ कि खुशबू की तरह आया वो तेज़ हवाओं में, और मांगा था जिसे हमने दिन रात दुआओं में, और तुम छत पे नहीं आए, वो घर से नहीं निकला, ये चांद बहुत भटका सावन की घटाओं में।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने आखिर क्यों फिल्म का ये गाना सुना। इंदीवर के बोल थे, राजेश रोशन का संगीत था। दोस्तों, सामाजिक कुप्रथाओं में, सामाजिक बुराइयों में

बहुत सारी बुराइयाँ ऐसी है जो बहुत लंबे समय से चल रही है। समय के साथ उनके स्वरूप में कुछ बदलाव आ गया, वो कुछ कम ज़रूर हो गई, लेकिन आज भी यदाकदा हम इन कुप्रथाओं के बारे में सुनते हैं और कई जगह तो उनका इतना भयंकर रूप देखने सुनने को मिलता है कि हमारी रूह तक कांप जाती है कि आज भी ऐसे लोग हमारे समाज में हैं, तो फिर हम समाज को सभ्य समाज कैसे कह सकते हैं। बात हम कर रहे हैं दहेज प्रथा की। किसी जमाने में ये प्रथा इस भाव में चली होगी कि जहां बेटी का ब्याह होता है तो उसके साथ उसके सहयोग के लिए, मान लीजिए अपना प्रेम प्रदर्शित करने के लिए हो सकता है कि कुछ वस्तुएं उपहार में दी जाती रही हो, लेकिन फिर उसका रूप विकृत हुआ, ये प्रथा कुप्रथा बन गई। फिर थोड़ा सुधार इसमें हुआ, लेकिन आज भी हम ये सुनते हैं कि फलां जगह से ये बुरा समाचार है। तो दोस्तों, बेटी को पढ़ाना और उसे बढ़ाना, उसे अपने करियर की दिशा में सोचने के लिए अगर माता पिता उसका साथ दें तो ऐसी स्थिति में बहुत बदलाव आ सकता है जहाँ बेटियों का करियर बनता है। तो ऐसे में ये प्रथाएं अपने आप से, जो कुप्रथाएं बन चुकी है, वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन साथ ही हम उन लोगों से अपील करें, उन युवाओं को कहें जो ब्याह के दहलीज पे खड़े हैं, तो ऐसे में अगर ये संकल्प लिया जाए कि हम बिना दहेज के विवाह करेंगे, तो ये प्रथाएं स्वतः ही समाप्त हो जाती है। आज के समाज में किसी को दबाव में लेकर कुछ बटोरना, ये अपने आप में गलत बात है, बुरी बात है। बहरहाल कार्यक्रम जो बाणी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सूरतगढ़ से, कार्यक्रम का अगला गीत हम सुने बात इसके साथ कि सुन ली जो खुदा ने वो दुआ, तुम तो नहीं हो दरवाजे पे दस्तक की सदा, तुम तो नहीं हो और महसूस किया तुमको तो भीगी हुई पलकें, भीगे हुए मौसम की अदा, तुम तो नहीं हो।

0: गीत अभी आपने सुना आनंद बख्शी का लिखा हुआ, धुन बनाई थी इस गाने की कल्याण जी आनंद जी ने, आवाज़ें महेंद्र कपूर बलवीर और साथियों ने दी, और फिल्म थी मेरे हम सफ़र। कार्यक्रम का अगला गाना सुने लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: दोस्तों, कार्यक्रम युवाणी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरत कर से। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या के 5:30 हुआ चाहते हैं, यानी युवाणी का आधा भाग अभी हम आपके साथ और हैं। दोस्तों, हमारे देश की सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान छेड़ा गया, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध के साथ प्लास्टिक मुक्त भारत की कल्पना की गई। ये एक ऐसी योजना है दोस्तों जो हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखती है, और अगर पर्यावरण सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। समय पे बरसात का आना पर्यावरण के शुद्ध होने का, उसके अच्छे होने का एक प्रमाण है। प्लास्टिक की वस्तुओं के विकल्प के रूप में हम अगर धीरे धीरे अपनाएं या जो पहले की चीज़ें थी उन्हें पुनः अपने जीवन में अगर लाएं तो ये सारी चीज़ें सुधर सकती है। जैसे बाज़ार जाते समय हम अपने

0: साथ जूट या कपड़े का थैला रखें तो हमें प्लास्टिक की थैली की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ये थैलियाँ एक बार के लिए हमारे साथ हमारे घर आती है, फिर उसके बाद में यही थैलियाँ उड़ उड़ के, अगर आप शहर में रहते हैं, अगर आप गांव में रहते हैं, तो यहाँ नालियों में आती है, इसके साथ ये पशुओं के मुंह में चली जाती है। ये बहुत सारा नुकसान करती है अगर आप सोच के देखेंगे, और यकीनन रोज़ आप देखते भी हैं इन चीज़ों को, लेकिन फिर भी एक संकल्प शक्ति के बिना ये सारी योजनाएं अधूरी रहती है। सरकार अपना काम तभी सही ढंग से कर सकती है जब हम उसका सहयोग करते हैं। गाना सुने अगला। इस गाने के लिए लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम ने आवाजें दी। गाना रविंद्र रावल ने लिखा, धुन राम लक्ष्मण ने बनाई, और फिल्म है हम आपके हैं कौन।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.

0: हर महीने।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
0: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: युवाणी कार्यक्रम इस वक्त आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरत कर से सुन रहे हैं। दोस्तों, बात करेंगे आज के दिन की, आज के इतिहास की, लेकिन पहले हसरत जयपुरी का लिखा एक गाना हम सुनेंगे, जिसे धुन दी शंकर जयकिशन ने, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर की, और फिल्म का नाम है धरती।

दोस्तों, आज के दिन की बात करें, आज के इतिहास की बात करें। आज के दिन 2005 में सौर मंडल के 10वें ग्रह की खोज करने का दावा किया गया था। दोस्तों, आज के दिन 1995 में वियतनाम आसियान का सदस्य बना था। आज के दिन यानी 28 जुलाई को जन्मे कुछ प्रमुख व्यक्तित्व की अगर बात करें तो 1165 में इब्ने अरबी, अरबी के प्रसिद्ध सूफी कवि, साधक और विचारक का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1933 में तरलोचन सिंह का जन्म हुआ, जो दुनिया भर में सिख समुदाय के हक और बेहतरी के लिए जाने जाते हैं। 1957 में आज ही के दिन अनिल जनविजय का जन्म हुआ, जो हिंदी के कवि, लेखक और रूसी तथा अंग्रेजी भाषाओं के साहित्य के अनुवादक हैं। आज ही के दिन 1983 में सुविज्ञ शर्मा का जन्म हुआ, जो भारतीय कलाकार, चित्रकार और उद्यमी हैं। जिनका निधन हुआ, वे प्रमुख व्यक्तित्व जिनका आज के दिन यानी 28 जुलाई को निधन हुआ। आप हैं नंदू नाटेकर, जिनका 2021 में आज के दिन निधन हुआ। वो पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी थे जिन्होंने इंटरनेशनल खिताब जीता था। 2017 में इंद्र कुमार का जन्म हुआ, जो भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध सहायक अभिनेताओं में से एक हैं। 2016 में आज ही के दिन महाश्वेता देवी का निधन हुआ, जो भारत की सामाजिक कार्यकर्ता और लेखिका हैं। आज ही के दिन जगदीश राज का निधन हुआ 2013 में, जो भारतीय हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता रहे हैं। ये भी कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं जो आज के दिन आए या गए। बहरहाल, गाना अब सुनेंगे अलका याग्निक और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में। अनजान के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है।

इस प्यारे प्यारे मौसम में आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सूरतगढ़ का कार्यक्रम युगवाणी। गाना ही ऐसा प्यारा सा हम आपको सुनवाएंगे, बात इतनी के साथ कि खुले से लॉन में हम सब लोग मिलकर चाय पिए, खुले से लॉन में हम सब लोग मिलकर चाय पिए, खुदा हम सबको आत्मिक कर दे। इंसानियत का जो तकाजा है वो हम सब के दिलों में भरे खुदा, और साथ ही हम ये इल्तजा भी करें, ये दुआ भी करें कि हमारे दिलों में सभी प्राणियों के लिए दया और ममता का भाव भरा रहे। यही सही मायने में हमारी इंसानियत है, हमारे इंसान होने का धर्म है। गाना हम आपको सुनवाएंगे मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ, जिसके लिए तर्ज बनाई ओपी नैयर ने, मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म का ये गाना है।

लीजिए दोस्तों एक गाना और सुने जिसे गाया है आशा भोसले और किशोर कुमार ने।

इसी तरह आप सबकी ज़िंदगी में ठंडी हवाएं चलती रहे, ये घटाएं आप पर यूं ही बनी रहे। आज के इस प्रोग्राम से अब हमें अनुमति दें इस बात के साथ कि कोई न जान सका वो कहां से आया था, हर उसने धूप से बादल को क्यों मिलाया था, और सुना है उस पे चहकने लगे परिंदे भी, वो एक पौधा जो हमने कभी लगाया था। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के कार्टून सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारी केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय। पहले सुनिए आज की सभा के शीर्ष कार्यक्रमों के बारे में। संध्या 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम चौपाल। इस कार्यक्रम में

खेतीबाड़ी से संबंधित चर्चाओं के अलावा आज आप भेंटवार्ता सुनेंगे प्रगतिशील किसान देवदासपुरा के स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित श्रीपाल शर्मा की एक रेडियो रिपोर्ट आप सुनेंगे। इसके अलावा उर्वरकों का संतुलित उपयोग विषय पर संजय बैद बात करेंगे पृथ्वीराम से। इस कार्यक्रम चौपाल में गीत और भजन आपको सुनवाए ही जाएंगे। उपलब्ध हुई तो मौसम की जानकारी और बाजार के भाव भी आपको बताए जाएंगे। संध्या 7:45 पर फिल्मों से कुछ भक्ति गाने आपको सुनवाए जाएंगे। एक ही फिल्म के तहत रात 8:15 पर आप फिल्म संगीत सुनेंगे। राजस्थानी लोक संस्कृति का कार्यक्रम गोरबंद आप सुनेंगे रात 9:15 पर। इस कार्यक्रम में आपके फरमाइशी मेल, खत और व्हाट्सएप संदेश स्वीकार किए जाते हैं। गीत गंगा कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 10:00। ये कार्यक्रम फरमाइशी फिल्मी गीतों का हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम है।

लीजिए अब सुनिए कल के दिन प्रसारित किए जाने वाले कुछ मुख्य मुख्य कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय। सुबह 6:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, तत्पश्चात 6:45 पर चिंतन, खेतन अवस्थे कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे सुबह 7:10 पर चर्चा, विषय रहेगा नवजात बछड़ों की देखभाल। रामचरित मानस का सस्वर पाठ मानस गान सुबह 7:20 पर, कल आप सुनेंगे भाग संख्या 319 का पाठ। सुप्रभात, ये कार्यक्रम होगा सुबह 7:30 पर। चर्चा के विषय रहेंगे हमारे पर्व और त्यौहार, राष्ट्र सेवा और जल ही जीवन है। फिल्मी गाने आप सुनेंगे इस कार्यक्रम में। फिल्म संगीत का कार्यक्रम 9:30 पर होगा, जिसमें आप कुछ युगल गाने सुनेंगे। सुहाना सफर 10:00, सैनिकों के लिए 11:00 और कुछ बातें कुछ की दिन में 12:05 पर आप सुनेंगे। किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम खेत खलिहान होता है दिन में 12:50 पर। चर्चा के विषय रहेंगे लागत घटाएं

0: अपने तरस अमल ते गौ माता दी जय भगवान झूलेलाल दी जय। अज भी भगवान झूलेलाल दे हजारों मंदिर हैं जिथा सवेरे शाम आरती गाई वेंदी है, जोत जगाई वेंदी है। भरोच गुजरात दे विच भगवान झूलेलाल दे नाते एक हस्पताल है। झूलेलाल दा एक चालीसा भी लिखा होया है, नित्य प्रीति पढ़े प्रेम प्रीत चित लाए, ताके कार्य सफल करे श्री अमर लाल तां तहीं जाए। जलपति अविनाशी मैं सिमरूं, तुहे ज्ञान विद्या दो माही, तुम समान नहीं कोई उपकारी, पूर्ण करो सब आस हमारी। जय झूलेलाल।
1: संत झूलेलाल दा जीवन दर्शन हुण तुसा डॉक्टर जेसी बतल दिए वार्ता सुनदे पए हवे। हुण पेश है सुफियाना कलाम ते कलाकार हिण नुसरत फतेह अली खान ते उन्हां दे साथी।

सुफियाना कलाम तुसा नुसरत फतेह अली खान ते साथियां दी आवाज़ इच सुनदे पए हवे। हुण प्रोग्राम दे आखिर इच तुहाको सुन वेंदे हां इक मुल्तानी काफी पूरन चंद वडाली ते साथियां दी आवाज़ां इच।

अभी आप सुन रहे थे सराइकी भाषा का कार्यक्रम झोंक माहिती। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। संध्या के 7:00 बजकर

करें, इसे एक बार पुनः सुनें। संध्या के 6:30 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप आकाशवाणी के जयपुर अस्मित केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम आयु और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा, राज्य सरकार का लोगों को पानी, बिजली और स्वास्थ्य संबंधी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने पर विशेष ध्यान। स्वतंत्रता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह इस बार बीकानेर में, मुख्य सचिव ने तैयारियों को लेकर बैठक की। और प्रदेश में 2 अगस्त तक मानसून के सक्रिय रहने के आसार, कल 29 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट। समाचारों के साथ मैं

0: युवाओं के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं होने और वास्तविक सुधार लाने का इरादा नहीं रखने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक पर चिंता जताई। उन्होंने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में आउटसोर्सिंग के जरिए अधिकारियों की भर्ती पर भी सवाल उठाए। विधेयक को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि अपनी बात रख रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रपति भवन में विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में बच्चों के लिए बाल परिसर समर्पित किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने बच्चों से बातचीत भी की। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से केलकारी प्ले जोन और समर्थ आंगनबाड़ी सह पालन का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्र के विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के बारे में बात की। राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 4 साल में राष्ट्रीय भावना को मजबूत करने वाली कई पहल की गई है। इससे औपनिवेशिक मानसिकता को दूर करने और जड़ों की ओर लौटने में मदद मिली है।
1: इन 4 वर्षों में समावेशी विकास की सोच के साथ साथ देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व और आत्मगौरव की भावना को नई ऊर्जा मिली है। एक खुशी की बात है कि पिछले वर्ष ऐसे अनेक कार्य किए गए हैं जिनमें भारतीयता की भावना का विस्तार हुआ और हमने औपनिवेशिक मानसिकता के अवशोष को खत्म करने की ओर ठोस कदम उठाए हैं। विकास और जनसेवा की ये यात्रा निरंतर आगे बढ़ेगी तथा हम सब नए संकल्प और उत्साह के साथ अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर रहें।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार लोगों को पानी, बिजली और स्वास्थ्य संबंधी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के लिए विशेष ध्यान दे रही है। श्री शर्मा आज धौलपुर पहुंचे। उन्होंने फूलपुर में स्टेडियम में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर हर वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रही है।
2: प्रदेश के किसान को समृद्ध और खुशहाली बनाने के लिए पिछले 2.5 साल में सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए अभूतपूर्व कार्य किए हैं। इस दृष्टि से 13.5 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के राम सागर के मध्य सिंचाई परियोजना के पुनर्निर्माण का कार्य का लोकार्पण भी किया गया है। इसी तरह राजाखेड़ा से नागर मीठावाली में 8.5 करोड़ रुपए की लागत से एनीकट बनाकर आज क्षेत्रवासियों को समर्पित किया गया है। सोने का पुर्जा में पुलिस थाना और बिजौली सेवर एवं झिरी में पुलिस चौकी बनाकर उनका लोकार्पण भी किया गया है।
0: मुख्यमंत्री ने इस मौके पर 177 करोड़ रुपए की लागत के कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। ये काम शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और बुनियादी ढांचे से जुड़े हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री डीग के पुंछरी का लोठा पहुंचे। वे विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। श्री शर्मा कल भरतपुर के खेडली गुर्जर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के लिए राशि डीबीटी करेंगे। मुख्यमंत्री मिशन पढ़ो राजस्थान के तहत रीडिंग प्रमोशन कैंपेन का भी शुभारंभ करेंगे। इससे पहले श्री शर्मा ने जयपुर में आज अपने निवास पर युवाओं के साथ संवाद किया। सपनों की उड़ान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिक्षा, खेल, स्टार्टअप, माय भारत वॉलंटियर्स और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं से बातचीत की। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह इस बार बीकानेर में आयोजित किया जाएगा। स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर बीकानेर में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होगा। वहीं एट होम कार्यक्रम जयपुर में होगा। इससे जुड़ी तैयारियों और व्यवस्थाओं को लेकर आज जयपुर में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में बैठक हुई। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को बीकानेर जिला प्रशासन के साथ तालमेल रखते हुए समय पर तैयारियां पूरी करने को कहा। बैठक में समारोह को गरिमापूर्ण, भव्य और सुव्यवस्थित तरीके से आयोजित करने को लेकर चर्चा की गई। बीकानेर संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा और जिला कलेक्टर निशांत जैन भी वीसी के माध्यम से इस बैठक से जुड़े। राजस्थान पुलिस अकादमी आरपीए और यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के बीच अकादमिक सहयोग के लिए एमओयू किया गया है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा की मौजूदगी में आज जयपुर में पुलिस मुख्यालय में आयोजित समारोह में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर की ओर से डॉ विमल कुमार शर्मा की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल मौजूद रहा।

0: इस मौके पर डीजीपी श्री शर्मा ने कहा कि इससे पुलिसिंग, पुलिस कल्याण, मानसिक स्वास्थ्य और प्रशिक्षण के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित होंगे। उन्होंने कहा कि इस एमओयू के माध्यम से राजस्थान के पुलिसकर्मियों को डिस्टेंस लर्निंग और विभिन्न सर्टिफिकेट कोर्स के अवसर मिल सकेंगे। इससे पीएचडी, इंटर्नशिप और एक्सचेंज प्रोग्राम को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही पुलिस बल का क्षमता संवर्धन, तनाव प्रबंधन और पेशेवर दक्षता मजबूत होगी। प्रदेश में 2 अगस्त तक मॉनसून के सक्रिय रहने और अधिकतर हिस्सों में बरसात की गतिविधियां तेज होने के आसार हैं। इस दौरान दक्षिण पूर्वी और पूर्वी हिस्से भारी बारिश से तर बतर हो सकते हैं। मौसम विभाग ने कल 29 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कहीं कहीं तेज रफ्तार हवाएं चलने की संभावना है। जोधपुर संभाग को छोड़कर अन्य सभी स्थानों पर मध्यम से तेज बरसात हो सकती है। इस बीच आज राजधानी जयपुर में दोपहर में पानी बरसा, सवाईमाधोपुर जिले और आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम बरसात हुई। तेज गर्मी और उमस के बाद आज चूरू भी अच्छी बरसात से सराबोर रहा। टोंक में हुई झमाझम बारिश से कई जगह पानी भर गया। भरतपुर में दिन भर कभी हल्की तो कभी मध्यम बरसात हुई। उधर सिरोही में दिन भर रिमझिम बारिश का दौर चला। आबूराज में पहाड़ों पर धुंध छाई हुई है और मौसम सुहाना बना हुआ है। वहीं हनुमानगढ़ और भीलवाड़ा में उमस और गर्मी से लोग परेशान रहे। और अब लिवर के नाम एक जरूरी संदेश। आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य हेपेटाइटिस की पहचान, इलाज और रोकथाम के उपायों को लोगों तक पहुंचाना है। इस साल की थीम इसे खत्म करने के लिए बाधाएं मिटाएं रखी गई हैं। साथ ही वर्ष 2030 तक हेपेटाइटिस मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने पर जोर दिया गया है। एसएमएस अस्पताल के उदर रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर महर्षि ने बताया कि हेपेटाइटिस बीमारी में लिवर में सूजन आ जाती है। समय पर इलाज नहीं होने पर मरीज की स्थिति गंभीर हो सकती है।
1: बचाव के लिए अपने को घर का बना हुआ खाना खाएं, ताजा बना हुआ खाना खाएं, जब भी खाना खाएं तो हाथ धो के खाएं। हेपेटाइटिस बी सी और डी जो कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से या अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से या जो आईवी ड्रग एब्यूजर्स होते हैं इन लोगों में होता है, तो इस तरह के नशे और इस तरह की आदतों से बचें। और जब भी इस तरह के लक्षण आए, इनके लक्षण कॉमन लक्षण होते हैं जैसे पीलिया होना या बुखार होना या पेट में दर्द होना, उल्टी होना या उल्टी का मन करना, इस तरह के लक्षण जैसे भी आते हैं तो अपने नियर बाई गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या हेपेटोलॉजिस्ट से तुरंत दिखा के उसका उचित इलाज करें। धन्यवाद।
0: जयपुर नगर निगम की ओर से एक अनूठी पहल शुरू की गई है। इसके तहत सावन के महीने में मंदिरों से बिल्व पत्र और फूल इकट्ठे कर जैविक खाद बनाई जाएगी। इस पर और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: जेएमसी की ओर से सावन महीने के हर सोमवार को निगम के इलेक्ट्रिक हुपर मंदिरों से जैविक पूजन सामग्री एकत्र करेंगे। इनसे मशीन और कंपोस्ट किट के जरिए उच्च गुणवत्ता वाली खाद तैयार की जाएगी। शिवा अर्पणम नाम से तैयार इस खाद को विशेष पैकेट्स में श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत शहर के तारकेश्वर महादेव, झारखंड महादेव, जंगलेश्वर महादेव सहित 5 प्रमुख शिवालयों से की जा रही है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: प्रदेश में गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए धार्मिक स्थलों पर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। ये दिन गुरुओं के आदर सम्मान को समर्पित है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम आयु और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राज्य सरकार का लोगों को पानी, बिजली और स्वास्थ्य संबंधी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने पर विशेष ध्यान। स्वतंत्रता दिवस का राज्यस्तरीय समारोह इस बार बीकानेर में। मुख्य सचिव ने तैयारियों को लेकर बैठक की। और प्रदेश में 2 अगस्त तक मॉनसून के सक्रिय रहने के आसार। कल 29 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से 12 जिले की चिट्ठी सुनिए। इसे भेजा है लक्ष्मी चंद नागर ने। हाड़ौती अंचल के 12 जिले में पिछले

0: महीने विकास, कृषि, स्वास्थ्य, खेल, महिला सशक्तिकरण, युवा कल्याण और कानून व्यवस्था से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण गतिविधियां रहीं। सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ युवाओं, किसानों और आमजन के हित में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री युवा सुयोग योजना के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत 12 जिले से की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वर्चुअल माध्यम से योजना का शुभारंभ करते हुए युवाओं से कौशल विकास और रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने का आह्वान किया। योजना के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और रोजगार से जोड़ने के लिए विभिन्न गतिविधियां चरणबद्ध तरीके से संचालित की जाएंगी। मुख्यमंत्री युवा सुयोग योजना के तहत माय भारत केंद्र द्वारा नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान चलाया गया। अभियान के तहत जिले में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से दूर रहने तथा समाज में जन जागरूकता फैलाने का संदेश दिया गया। नगरीय विकास और आवास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने 12 नगर परिषद में आयोजित शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने शिविर में आमजन को मिल रही सेवाओं का जायजा लेकर अधिकारियों को समस्याओं के तुरंत समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावा सहित जनप्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत श्रीराम स्टेडियम और खेल संकुल में लगभग 2.5 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर 300 से अधिक खिलाड़ियों का सम्मान भी किया गया। जन प्रतिनिधियों ने कहा कि इन विकास कार्यों से जिले के खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध होंगी और नई प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। जिले के कोयला गाँव की यशोधरा हाड़ा और एंजल हाड़ा ने राज्य स्तरीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। दोनों राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई हो गई हैं। दोनों खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से जिले में खुशी का माहौल है और स्थानीय खेल प्रतिभाओं को नई प्रेरणा मिली है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यानी HPV टीकाकरण अभियान में 12 जिले ने प्रदेश में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। एक ही दिन में 247 किशोरियों का टीकाकरण किया गया। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक निर्धारित लक्ष्य का 36% से अधिक पूरा किया जा चुका है। महिला सुरक्षा संकल्प कार्यक्रम के तहत कृषि उपज मंडी परिसर में जिला स्तरीय आयोजन किया गया। इसमें लगभग 3000 महिलाओं और बालिकाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में महिला सुरक्षा, साइबर अपराध से बचाव, हेल्पलाइन नंबरों तथा आत्मरक्षा के उपायों की जानकारी दी गई। इस दौरान प्रशिक्षकों ने आत्मरक्षा के व्यवहारिक प्रदर्शन भी किए और विपरीत परिस्थितियों में सतर्क रहने के तरीके बताए। राज्य सरकार ने सोलर क्रॉप ड्रायर पर 40% तक अनुदान देने की योजना शुरू की है। इससे धनिया सहित उद्यानिकी फसलों के किसानों को फसल सुरक्षित ढंग से सुखाने और बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। आधुनिक तकनीक से किसानों की लागत घटने और उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ने की भी संभावना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन योजना का शुभारंभ जिले में भी किया गया। ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर ग्रामीणों को योजना की जानकारी दी गई। कार्यक्रमों में रोजगार, आजीविका संवर्धन और ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न प्रावधानों की भी विस्तार से जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त के तहत जिले में 1,70,658 किसानों के खातों में 34,13,00,000 रुपए की राशि DBT के माध्यम से हस्तांतरित की गई। अंता के कृषि विज्ञान केंद्र में इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। किसानों ने योजना से मिल रही आर्थिक सहायता को खेती के लिए उपयोगी बताया। इसी के साथ 12 जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, सुप्रीम कोर्ट 18 साल नो कम उम्र रा बिना आपराधिक रिकॉर्ड वाला प्रदर्शन करण वाला विद्यार्थियां ने तुरंत रिहा करण रा हुकम दीना। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो राज्य सरकार रो जनता ने पानी, बिजली और स्वास्थ्य जुड़िया बुनियादी सुविधा मुहैया

0: करावण मां थे खास ध्यान। स्वतंत्रता दिवस रे मौके राज्य स्तर रो जलसो बीकानेर मां मुख्य सचिव तैयारियां रो जायजो लीनो। और प्रदेश मां 2 अगस्त ताई चौमासारी चोखी बिरखारा आसार। काल 29 जिला सारू बारिश रो येलो अलर्ट। समाचारां सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। सुप्रीम कोर्ट नीट परीक्षा पेपर लीक मामला में प्रदर्शन करन वाला 18 सालों कम उम्र और गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाला विद्यार्थियों ने आज रिहा करन रा हुकम तीना। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहनारी पीठ नीट परीक्षा पेपर लीक मामला में लाडला दिना आखा देश में भी प्रदर्शनों जुड़िया इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सबूत हिफाजत सागे राखन राई हुकम तीना। अदालत आ प्रदर्शन रे दौरान पुलिस कानियों जोर आजमाइश रा आरोपों जुड़ी अर्जियां री सुनवाई करता थका कई अंतरिम निर्देश तीना। पीठ कहो के शुरुआती आरोपों रा आधारों निपक्ष और स्वतंत्र जांच माथे विचार करो चाहू चाहिए चिणमाए। प्रदर्शन रे दौरान जख्मी भया 200 पुलिस वाला रा परिवार री चिंता रोई ध्यान रखो चाहू चाहिए। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन बिल 2026 माथे चर्चा करी जा रही है। इन बिल में पेपर लीक रा दोषियां ने 10 साल ताई री कैद री सजा देवन सागे वहां माथे 10 करोड़ रुपया ताई रो जुर्मानो लगावन और वारी संपत्ति जब्त करन रोई प्रावधान है। ईसा गई एड़ा मामला रा बेगा निपटारा सारू हर राज्य और केंद्र रा राज वाला प्रदेशा माए फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलन रो प्रावधान है। बिल पेश करता था का कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह कहो के ओ बिल बतावे है के नौजवाना रा भविष्य सागे कोई समझौतो नहीं करियो चावेला। चर्चा रे दौरान कांग्रेस रा गौरव गोगोई सरकार माथे बनाई लिखाई रा हल्का माथे ध्यान नी देवन और असली सुधार लावन रो इरादो नी राखन रो आरोप मांडियो। समाजवादी पार्टी रा सांसद अखिलेश यादव न्यारी न्यारी परीक्षा वारा पेपर लीक वेवन पर चिंता जताई। वे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी माए आउटसोर्सिंग रे जरिए अहलकारा री भर्ती माथे सवाल उठायो। न्यारी न्यारी पार्टियां रा नुमाइंदा बिलू जुड़िया मुद्दा माथे वारी बात रख रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वारा कार्यकाल रा 4 साल पूरा फेवन रे मौके आज राष्ट्रपति भवन माए न्यारी न्यारी परियोजना वारी शुरुआत कीनी। वे राष्ट्रपति भवन माए बच्चा सारू बाल परिसर समर्पित कीनो। इन दौरान राष्ट्रपति बच्चा सागे बातचीत कीनी। वे वर्चुअल तरीकाओं किलकारी प्ले जोन और समर्थ आंगनबाड़ी सह पालन रोई उद्घाटन कीनो। इस मौके श्रीमती मुर्मू देश रा विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण रे बारा माए चर्चा कीनी। राष्ट्रपति कहो के लारला 4 साल माए राष्ट्रीय भावना ने मजबूत करन वाली कई पहल करी जी जिणु गुलामी री सोच अगीकरण और जड़ाऊ जुड़बा माए मदद मिली है।
1: इन 4 वर्षों में समावेशी विकास की सोच के साथ साथ देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व और आत्मगौरव की भावना को नई ऊर्जा मिली है। एक खुशी की बात है कि पिछले वर्ष ऐसे अनेक कार्य किए गए हैं जिनमें भारतीयता की भावना का विस्तार हुआ और हमने औपनिवेशिक मानसिकता के अवशोष को खत्म करने की ओर ठोस कदम उठाए हैं। विकास और जनसेवा की ये यात्रा निरंतर आगे बढ़ेगी तथा हम सब नए संकल्प और उत्साह के साथ अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर रहेंगे।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहो है कि राज्य सरकार जनता ने पानी बिजली और स्वास्थ्य जुड़िया बुनियादी सुविधा मुहैया करावन माथे खास ध्यान दे रही है। वे आज धौलपुर के न फूलपुर रा स्टेडियम माए राखी जी जनसभा माए बोल रहा है। श्री शर्मा कहो कि सरकार सबका साथ सबका विकास री सोच सागे हर तबका रा भला सारू काम कर रही है।
2: प्रदेश के किसान को समृद्ध और खुशहाली बनाने के लिए पिछले 2.5 साल में सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए अभूतपूर्व कार्य किए हैं। इस दृष्टि से 13.5 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के राम सागर के मध्य सिंचाई परियोजना के पुनर्निर्माण का कार्य का लोकार्पण भी किया गया है।

0: राजा खेड़ा से नागर मीठाबाली में 8.5 करोड़ रुपए की लागत से एनीकट बनाकर आज क्षेत्रवासियों को समर्पित किया गया है। सोने का पुर्जा में पुलिस थाना और बिजौली सेवर एवं झिरी में पुलिस चौकी बनाकर उनका लोकार्पण भी किया गया है।
1: इपाचे मुख्यमंत्री डीग जिला रा पूंछरी का लौठा माए राख्या जावण वाला कार्यक्रम माए शिरकत करण सारू रवाना भया। श्री शर्मा रो भरतपुर जिला रा खेड़ली गुजर माए गुरु पूर्णिमा रे मौके राज्य स्तर रा कार्यक्रम माए शामिल भे वन रो ये कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री विद्यार्थियों रा खाता माए स्कूल ड्रेस सारू रकम ही भेजेला। मारो मिशन पढ़ो राजस्थान रा तहत रीडिंग प्रमोशन कैंपेन री शुरुआत रो ये कार्यक्रम है। इनु पहली श्री शर्मा जयपुर माए आज मारा रहवास माथे नौजवाना सागे बातचीत कीनी। सपनों की उड़ान कार्यक्रम माए मुख्यमंत्री शिक्षा खेल स्टार्टअप माई भारत वॉलेंटियर सर प्रतियोगी परीक्षा मारी तैयारी कर रहा नौजवानों बातचीत कीनी। ऐ समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। स्वतंत्रता दिवस रे मौके 15 अगस्त ने राज्य स्तर रो जलसो इन दफा बीकानेर माए राख्यो जावेला। इनु पहली री संजा बीकानेर माए सांस्कृतिक कार्यक्रम ही फैला। राजधानी जयपुर माए एट होम कार्यक्रम राख्यो जावेला। इनु जुड़ी तैयारियां अर व्यवस्थावां रो जायजो लेवण सारू मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज जयपुर माए संबंधित महकमा रा अहलकारा सागे मीटिंग कीनी। वे बीकानेर जिला प्रशासन सागे तालमेल राखर टेम सर तैयारियां पूरी करण बाबत कहो। राजस्थान पुलिस अकादमी RPA और यूकेरी यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर बीचे अकादमिक सहयोग सारू करार करीचियो है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा री मौजूदगी माए आज जयपुर रा पुलिस मुख्यालय माए राखी चा जलसा माए ई करार माथे सही करीची। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर री ओरू डॉक्टर विमल कुमार शर्मा री अगुवाई माए प्रतिनिधिमंडल मौजूद रहो। ई मौके पुलिस महानिदेशक कहो क ई रे जरिए पुलिसिंग पुलिस कल्याण मानसिक स्वास्थ्य और सिखावण रा हल्का माए नुआ काम करया जावेला। वह कहो क ई करार रे मार्फत प्रदेश रा पुलिस कर्मचारियां ने दूरस्थ शिक्षा रे जरिए सर्टिफिकेट कोर्स रा मौका मिल सकेला। इस आगे PhD इंटर्नशिप और एक दूजारा अठे दौरा नहीं बधावो मिलेला। रब मौसम प्रदेश माए 2 अगस्त ताई चौमासारी चोखे बिरखा रा आसार है। मौसम विभाग काल 29 जिला माए बारिश रो येलो अलर्ट जारी कीनो है। इस दौरान कठे कठे जोरदार बायरो बाजन राई आसार है। जोधपुर संभाग रे अलावा दूजी सगली ठोणा मझलाऊ तेज दर्जा री बरसात री संभावना है। इन बीचे आज राजधानी जयपुर रा न्यारा न्यारा हल्का माए दोपहर पाछे पानी बरसियो। सवाई माधोपुर जिला और RSRA रा हल्का माए हल्की मझला दर्जा री बरसात हुई। तेज गर्मी और उमस पाछे आज चूरू माए चोखो मेह बरसियो। टोंक माए झमाझम मेह बरसियो। भरतपुर माए आखा दिन बिरखा फी। तुजिकानी सिरोही माए आखा दिन रिमझिम बारिश फी। आबू राज माए डूंगरिया माथे धुंध छाई रही और मौसम सुहावनो बनियो रहो। दूजिकानी हनुमानगढ़ और भीलवाड़ा माए उमस और गर्मियों लोग परेशान रहा। राज्य माए चलाया जा रहा ग्रामीण और शहरी सेवा फॉलोअप शिविरा माए जनतारी समस्यावां मौके दूर करी जा रही है। जालौर जिलारी 7 ग्राम पंचायतों माए लगाई जा शिविरा माए एक ही छत हेठ राजस्व पंचायती राज सामाजिक न्याय अधिकारिता चिकित्सा और स्वास्थ्य समेत न्यारा न्यारा महकमाओं जुड़िया काम कराया जा रहा है। काल नून थावला रेवतड़ा सेरना वणधर आकोली और दांता ग्राम पंचायत माए ग्रामीण सेवा फॉलोअप शिविर लगाया जावेला। आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है। ओ दिन मनावण रो मकसद हेपेटाइटिस री पिछाण इलाज और रोकथाम रा उपायां री जानकारी जनता ताई पुगावणो है। एनरो इन साल रो मुद्दो इसे खत्म करने के लिए बाधाएं मिटाएं राखी चियो है। पेट री बीमारियां रा जानकार डॉक्टर सुधीर महर्षि बतायो कि हेपेटाइटिस री बीमारी रे कारण लीवर माए सूजन आ जावे है। डॉक्टर महर्षि बतायो कि टेम सर इलाज नी भेवन री सूरत माए मरीज री हालत बिगड़ सके है।
2: बचाव के लिए अपने को घर का बना हुआ खाना खाएं, ताजा बना हुआ खाना खाएं, जब भी खाना खाएं तो हाथ धो के खाएं। दैट इज BCOD जो कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से या अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से या जो IV ड्रग एब्यूजर्स होते हैं इन लोगों में होता है। तो इस तरह के नशे और इस तरह की आदतों से

0: છે તો
1: વિશ્વ હેપેટાઇટિસ દિવસને મોકે પ્રદેશમાં આઈ ન્યારા ન્યારા કાર્યક્રમ રાખી છે. બાળમેરા સરકારી મેડિકલ કોલેજ અર અસ્પતાલમાં જનતા અર સ્વાસ્થ્ય કર્મચારીઓમાં હેપેટાઇટિસ પ્રતિ જાગ જગાવણ સારો ખાસ કાર્યક્રમ થયો. જયપુર નગર નિગમ રીઓરું એક અનોખી પહેલ કરી છી હૈ. એને તેજ સાવનમાં મિંદ્રાઉં બીલરા પત્તા અર ફૂલ ભેળા કર અર જૈવિક ખાદ બનાઈ ચાવેલા. ઓર બ્યુરો માણા ખબર નવીસું.
2: जेएमसी की ओर से सावन महीने के हर सोमवार को निगम के इलेक्ट्रिक हुपर मंदिरों से जैविक पूजन सामग्री एकत्र करेंगे. इनसे मशीन और कंपोस्ट किट के जरिए उच्च गुणवत्ता वाली खाद तैयार की जाएगी. शिवा अर्पणम नाम से तैयार इस खाद को विशेष पैकेट्स में श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाएगा. पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत शहर के तारकेश्वर महादेव, झारखंड महादेव, जंगलेश्वर महादेव सहित पांच प्रमुख शिवालयों से की जा रही है. जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर.
1: आखिर में खास समाचार एक बार फिर सुन ले रहा हूं. सुप्रीम कोर्ट 18 सालों कम उम्र रा बिना आपराधिक रिकॉर्ड वाला प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने तुरंत रिहा करण रा हुक्म दीना. मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो राज्य सरकार रो जनता ने पानी, बिजली और स्वास्थ्य जुड़िया बुनियादी सुविधा मुहैया करावण माथे खास ध्यान. स्वतंत्रता दिवस रे मौके राज्य स्तर रो जलसो बीकानेर माय राख्यो जावेला. मुख्य सचिव तैयारियां रो जायजो लीनो. और प्रदेश माय 2 अगस्त ताई चौमासारी चोखी बिरखारा आसार. काल 29 जिला सारू बारिश रो येलो अलर्ट. इसागे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो. मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजा हिंदी माय प्रसारित करियो जावेला. नमस्कार.
3: यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है. संध्या के 7 बजे हैं. ग्रामीण परिवार सुने अपना कार्यक्रम चौपाल.

चौपाल कार्यक्रम सुनिए सगळे परिवाराने आज श्रीपाल सारस्वत रहा मोकळा मोकळा राम राम सा। देखो सा ओ जेको मौसम चालन लाग रही है नी बरसात को जेको मौसम है कई करनी के जल है तो जीवन है पानी जेको है वो बचाणो एर भी वो सदुपयोग करनो। किसान भाइयों ने पानी की जरूरत पड़े खेती वास्ते अब राम जी राजी है एर बरसात को मौसम है काफ़ी जगह बरसात हुई भी है एर उम्मीद करा कि जठे बरसात नहीं हुई है बठे बरसात और वेली। बातचीत गए सागे सागे थाने बता दिया कि आज आपा चौपाल कार्यक्रम में सुना ला एक भेंट वार्ता एर एक खजूर फार्म के ऊपर जानकारी की रेडियो रिपोर्ट। तो कार्यक्रम की शुरुआत करा पहला ई भजन

0: बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: सुनो सा भजन रामनिवास राव एर साथियों की आवाज में गाइड हो। अबे सुनो अभेंट वार्ता, उर्वरकों का संतुलित उपयोग। वार्ताकार हैं पृथ्वीराम जकाशियों, बातचीत कर रहा है संजय बैद। तो सुनो सा आ भेंट वार्ता।
3: श्रोताओं, आज हमारे इस चौपाल कार्यक्रम में उपस्थित हैं एक प्रतिष्ठित खाद कंपनी के एरिया मैनेजर, जो पूरा बीकानेर संभाग अपने क्षेत्र के रूप में देख रहे हैं, पृथ्वी जी। पृथ्वी जी, आपका इस चौपाल कार्यक्रम में हम आकाशवाणी सूरतगढ़ की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं।
4: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अपने बारे में थोड़ा बताएं कि आप कब से इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, क्या आपका अनुभव है?
4: सबसे पहले तो मैं आकाशवाणी सूरतगढ़ को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने मतलब मेरे को यहाँ आमंत्रित किया
3: जी।
4: और किसानों की जो समस्याएं आ रही है उसके बारे में चर्चा करने के लिए आज अपने
1: फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: सुनो सा भजन रामनिवास राव एर साथियों की आवाज में गाइड हो। अबे सुनो अभेंट वार्ता, उर्वरकों का संतुलित उपयोग। वार्ताकार हैं पृथ्वीराम जकाशियों, बातचीत कर रहा है संजय बैद। तो सुनो सा आ भेंट वार्ता।
3: श्रोताओं, आज हमारे इस चौपाल कार्यक्रम में उपस्थित हैं एक प्रतिष्ठित खाद कंपनी के एरिया मैनेजर, जो पूरा बीकानेर संभाग अपने क्षेत्र के रूप में देख रहे हैं, पृथ्वी जी। पृथ्वी जी, आपका इस चौपाल कार्यक्रम में हम आकाशवाणी सूरतगढ़ की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं।
4: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अपने बारे में थोड़ा बताएं कि आप कब से इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, क्या आपका अनुभव है?
4: सबसे पहले तो मैं आकाशवाणी सूरतगढ़ को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने मतलब मेरे को यहाँ आमंत्रित किया और किसानों की जो समस्याएं आ रही है उसके बारे में चर्चा करने के लिए आज अपने यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो मैं मेरे बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा कि मैं 2011 का बीएससी पास आउट हूँ और पिछले 15 साल से निजी कंपनियों में कार्यरत हूं और आज मैं बीकानेर संभाग एक फर्टिलाइजर कंपनी में देख रहा हूं। और आज हम लोग जैसे किसान लेवल पे जाते हैं, किसानों से बात करते हैं, तो हम लोग जनरली ये देखते हैं कि वहां पर बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन किसान सिर्फ एक ही खाद की तरफ जाता है कि जी मेरे को डीएपी डालनी है, मेरे को यूरिया डालनी है। जबकि कहीं भी अपने जाते हैं या अपने खाना खाते हैं या शरीर की बात करें कि अपने को पूरे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, इसी तरह जमीन की आवश्यकता होती है, लेकिन किसान है वो सिर्फ एक डीएपी और यूरिया से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता है, जिसमें वो खर्चा भी अधिक करता है और उत्पादन भी वो बहुत कम ले पाता है। इसलिए आज के समय में किसानों को अपनी मिट्टी की जांच करवा के जमीन के आवश्यकता अनुसार पोषक तत्वों की जरूरत को पूरा करना चाहिए, ताकि कम खर्चे के अंदर हम लोग अधिक उत्पादन ले पाए।
3: जैसे आपने बात की पोषक तत्वों की, तो पहले आप हमारे सुनने वालों को ये बताएं कि ऐसे कौन कौन से सूक्ष्म तत्व हैं जिनकी एक भूमि को आवश्यकता रहती है।
4: जैसा कि हम लोग यदि इसमें बात करें तो हम लोग इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, तीन भागों में इसको डिवाइड करते हैं।
3: अच्छा।
4: तीन पोषक तत्व ऐसे रहते हैं जो जमीन, हवा, वायु से सीधे पौधों को मिल जाते हैं।
3: अच्छा।
4: जिनको हमें देने की आवश्यकता नहीं रहती है।
3: अच्छा, फ्री में मिलते हैं।
4: फ्री में मिलते हैं, जैसे कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। ये जमीन, पानी से सीधा मिल जाते हैं। उसके बाद में मुख्य पोषक तत्व होते हैं जिनकी हम लोगों को जरूरत रहती है और जो हम लोग उपयोग करते हैं, जिसके अंदर आज बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास है, जिनकी पौधों को अधिक आवश्यकता रहती है।
3: लेकिन मेजर तत्व हैं,
4: मेजर तत्व हैं, अधिक आवश्यकता रहती है। लेकिन इनके साथ में आज के समय में चार द्वितीय पोषक तत्व हैं, उनकी भी पौधों को बहुत ज्यादा जरूरत रहती है, जिसके अंदर हम लोग बात करें तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और आयरन। तो ये ऐसे पोषक तत्व हैं जिनकी पौधों को काफी अधिक मात्रा में जरूरत रहती है।
3: तो यदि हमारे इस बीकानेर संभाग की बात करें या मुख्य रूप से गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले की बात करें, तो यहाँ की मिट्टी जांच में ऐसे कौन से तत्व हैं जिनकी कमी सबसे ज्यादा पाई गई है?
4: यहाँ

0: पर अपने देखें तो पोटाश की बहुत कमी है,
1: अच्छा
0: जमीन के अंदर बहुत पोटाश है लेकिन वो पौधों को उपलब्ध अवस्था में नहीं है।
1: अच्छा अच्छा
0: तो उसके बाद में सल्फर की बहुत कमी है,
1: जी
0: ठीक है, तो ये दो, और जिंक है वो भी अपने काफी मात्रा में कम, आजकल धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि अपने यदि जमीन की जांच करवाएंगे ना तो कार्बन की मात्रा है वो 0.5% से भी कम हो रही है,
1: अच्छा
0: क्योंकि अब आजकल हम लोग गोबर की खाद डालते नहीं है।
1: हाँ हाँ
0: यदि पहले जैसे गोबर की खाद डालते थे जिसमें जमीन की उपजाऊपन है वो बढ़ता था, लेकिन आजकल हम लोग वो डालते नहीं, सिर्फ जो कार्बनिक खादें आती हैं डीएपी यूरिया या जो भी केमिकल खाद्स रहती हैं उनका ही उपयोग करते हैं,
1: अच्छा
0: तो वो सिर्फ एक या दो तत्व

0: से जमीन की जब अपने बुहाई करते हैं, जैसे गर्मियों की पहले अप्रैल के अंदर गहरी जुताई करके अपने छोड़ देते हैं, जिससे उसमें हानिकारक जो भी कीटाणु फंगस होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। उसके बाद में जब अपने रोहणी लगाते हैं खेत को,
1: पानी
0: लगाते हैं मतलब बिजाई करने के लिए, उस टाइम में इसको पहले खिलार के उसके बाद में हम लोग ऊपर से बिजाई कर सकते हैं। वो खरीफ में भी जैसे अपने पास उपलब्ध रहता है उसके हिसाब से खरीफ में भी कर सकते हैं, रबी में भी कर सकते हैं।
1: जितना ज्यादा पानी उसको लगेगा उतनी उसकी जो गर्मी है वो कम होती जाएगी,
0: और जब हम लोग उसको तैयार देखेंगे तो वो काले रंग की अच्छी खाद तैयार हो जाती है। अच्छा। तो वो सबसे अच्छा कार्बन की मात्रा जमीन के अंदर बढ़ाने का काम करती है।
1: अच्छा, कम मात्रा में ज्यादा उत्पादन देगी।
0: अच्छा। और सबसे बड़ा जो हम लोग जैसे अपना हार्ट होता है, आदमी के इंसान का हार्ट होता है, वो जमीन का हार्ट होता है।
1: अच्छा।
0: वो जितना अच्छा रहेगा कार्बन की मात्रा जमीन का, उतना ही उपजाऊपन अधिक रहेगा।
1: जी, अभी आपने बात की जिंक की, पोटाश की, तो पहले मैं आपसे ये जानना चाहेंगे कि पोटाश की कमी के लक्षण क्या है और पोटाश किस तरह से जमीन की फसल के लिए, इसकी गुणवत्ता के लिए काम करता है। हमने ये सुना है कि पोटाश के डालने से फसल का उत्पादन है उसमें दानों में भी चमक आती है और जो भारीपन रहता है उसमें अनाज के दाने का वजन भी बढ़ता है।
0: सबसे पहले तो हमें पोटाश का पूर्ण काम समझना चाहिए। जैसा कि पोटाश को यदि हम लोग समझेंगे ना, तो सीधा ये सोचिए कि पोटाश है एक ट्रांसफार्मर का काम करती है, मतलब ट्रांसफर जैसे अपने ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है।
1: अच्छा।
0: ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, जैसे एक जगह से दूसरे जगह तक पोषक तत्वों को लेके जाने का।
1: अच्छा।
0: जो हम लोग जमीन में डालते हैं उसको पत्तियों तक लेके आने का काम है वो पोटाश ही करता है।
1: अच्छा।
0: उसके बाद में जो पोटाश ऊपर जो खाना बनता है अपना, उसको जड़ों तक पूरे पौधे में फैलाने का काम है वो पोटाश करता है। तो सबसे महत्वपूर्ण काम है इसका ट्रांसपोर्टेशन का। उसके बाद में जैसे हम लोग देखते हैं कि पोटाश डालते हैं तो दाने में चमक आती है, वो इसी कारण से आती है क्योंकि जो न्यूट्रिशन हम लोग डाल रहे हैं उसको हाथों हाथ ऊपर से नीचे तक पूरे पौधे में वो सर्कुलेट करता है।
1: जैसे अपने यहाँ कॉटन बेल्ट भी है, तो जो पोटाश अगर ये डालेंगे तो जो नरमा का जो रेशा है उसकी गुणवत्ता में भी सुधार होगा।
0: इसमें क्या है कि आप जमीन की जांच करवाओगे ना, तो जमीन के अंदर पोटाश बहुत मात्रा में अपने यहाँ पर, लेकिन वो उपलब्ध अवस्था में नहीं है, जिसके लिए हम पीएसबी कल्चर जो आता है उसका, केएमबी कल्चर है उसका उपयोग कर सकते हैं।
1: अच्छा, वो सस्ता भी पड़ता होगा।
0: सस्ता भी पड़ता है और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। जमीन के लिए उसका कोई नुकसान नहीं है, जमीन के अंदर जो पोटाश पड़ी है वो पौधों को उपलब्ध करवाता है। पोटाश सोल्युबल बैक्टीरिया अपने बाजार के अंदर बहुत सारा मिलता है, बहुत सारी निजी कंपनियों का भी है और गवर्नमेंट भी इसको मतलब सोसाइटी वगैरह में भी उपलब्ध करवाती है, तो वहां से भी आप इनको ले सकते हो।
1: अच्छा, जिंक की अपन बात कर रहे, तो जिंक की कमी के लक्षण क्या है और जिंक पौधों के लिए किस तरह से आवश्यक है?
0: जिंक की बात करें तो जिंक पौधों के लिए आज के समय में काफी उपयोगी तत्व है, और स्पेशली हम लोग धान और गेहूं में बात करें तो बहुत ज्यादा जरूरत रहती है।
1: अच्छा।
0: वैसे तो सब फसलों में रहती है, लेकिन इन दो फसलों में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत रहती है। जैसे हम लोगों ने सुना भी होगा कि जिंक की कमी से धान के अंदर खैरा रोग आ जाता है, ठीक है। तो उसके अलावा जिंक की कमी से पौधों में मतलब हरापन पूरा नहीं बनेगा, उसकी क्वालिटी डाउन होती रहती है, तो इसलिए जिंक बहुत जरूरी है। जिंक भी आजकल दो तीन तरह की आती है, आजकल चिलेटेड फॉर्म में भी आने लगी है,
1: स्प्रे में भी काम आ जाती है।
0: नीचे भी अपन लोग डलवा सकते हैं, 33% जो आती है वो नीचे डलवा सकते हैं। आजकल जिंक ऑक्साइड के रूप में भी आने लगी है।
1: अच्छा।
0: तो वो भी बहुत अच्छा काम करती है। तो इसके बहुत सारे विकल्प है, किसी भी विकल्प पे जाके, और स्पेशली धान और गेहूं के अंदर हम लोगों को जिंक डालना ही चाहिए। उनके लिए जिंक धान और गेहूं के लिए बहुत जरूरी पोषक तत्व है।
1: अच्छा।
0: मुख्य पोषक तत्वों में इसकी गिनती है, वो होने लग गई है।
1: एक माइकोराइजा का नाम आजकल काफी चलन में है, ये क्या है और किस तरह से काम करता है, क्यों आवश्यक है?
0: माइकोराइजा की बात करें तो माइकोराइजा कोई न्यूट्रिशन नहीं है।
1: अच्छा।
0: लेकिन माइक्रोराइजा जमीन के लिए बहुत जरूरी है।
1: अच्छा।
0: हम लोग कॉटन की बात कर रहे हैं, नरमा कपास की बात कर रहे हैं, सभी किसान भाई भी जानते होंगे कि कॉटन की जड़ें हैं ना, वो आधे फीट से ज्यादा नहीं जाती है।
1: हाँ, खासकर बीटी कॉटन की,
0: ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे तो कॉटन है, लेकिन कॉटन दूरी में बहुत लगता है। न्यूट्रिशन जो हम लोग देते हैं वो तो पूरे खेत के अंदर देते हैं, ऐसा तो है नहीं कि जड़ों के पास देते हैं। तो जो माइक्रोराइजा है इसका मुख्य काम है वो सेकेंडरी रूट, जो व्हाइट सेल्स जिसको अपने बोलते हैं, व्हाइट जड़ें, उनका निर्माण करने का इसका मुख्य काम रहता है। तो ये जितना जड़ों का विकास होगा उतना ही पौधा मजबूत रहेगा, और जो जमीन के अंदर पोषक तत्व पड़े हैं उनको भी ये उपलब्ध करवाएगा। स्पेशली फास्फोरस जो अपने जमीन के अंदर पड़ा है उसको भी ये सोलेबल करके और पौधों को उपलब्ध करवाने का काम करता है। जैसे बाद में अपने देखते हैं कि कॉटन के अंदर कॉटन शॉर्ट मार जाता है, क्योंकि वो न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है।
1: अच्छा।
0: देसी भाषा में बात करें तो कॉटन है वो एक तरह की अमेरिकन गाय होती है। तो इसमें क्या है कि जितना न्यूट्रिशन ज्यादा देंगे उतना ही उत्पादन ज्यादा होगा।
1: काफी अच्छी जानकारी पृथ्वी जी आपने हमारे सुनने वालों को दी है। हम आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे कि आपने बात की थी कि 16-17 जो सूक्ष्म तत्व होते हैं, हमारे सुनने वालों को आप उनके नाम बता दें, क्योंकि कई लोगों ने वो नाम भी नहीं सुने होंगे। जब नाम नहीं सुनेगा फार्मर हमारा, काश्तकार हमारा, किसान जो हमारी देश का अन्नदाता है, तो बाजार में लाएगा कहां से, मांगेगा कैसे?
0: जी, जैसे अपने तीन पोषक तत्व तो मैंने आपको पहले बताए थे, जो कि हवा पानी जल से मिल जाते हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, जिनकी अपने को अलग से देने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये सीधे पौधों को मिल जाते हैं। उसके बाद में मुख्य पोषक तत्वों में

0: बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये तीन मुख्य पोषक तत्व
1: एनपीके जिनको बोलते
0: एनपीके अपने लोग जिनको बोल देते हैं ये रहते हैं। उसके बाद में अपने कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये भी द्वितीय मुख्य पोषक तत्व आजकल रहते हैं। सल्फर की अपने बहुत ज्यादा जरूरत रहती है।
1: ये पीएच भी कम करती है।
0: हाँ जी बिल्कुल, पीएच कम करती है।
1: कहते हैं अम्ल है,
0: बिल्कुल जमीन क्या कड़क हो जाती है, वो हार्ड हो जाती है, उसको मतलब पानी को रसाने का काम भी करती है ये। उसके बाद में बात करें तो फेरस, जिंक, बोरोन, मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकल, अच्छा। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जिनकी पौधों को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता रहती है लेकिन बहुत जरूरी भी रहती है।
1: लेकिन एक काश्तकार कैसे पहचाने अपनी फसल को देख के, उसके पीलेपन को देख के या पत्तियों को देख के कि फसल में इस पोषक तत्व की कमी है? ऐसी कोई पहचान का कोई सीधा सरल रास्ता है कोई है?
0: जो मुख्य पोषक तत्व रहते हैं इनकी कमी के जो मुख्य लक्षण रहते हैं वो नीचे की पत्तियां हैं वो पीली पड़ती है, तो जिसमें नाइट्रोजन, उससे ऊपर फास्फोरस, पोटास, इनका वो हम लोग नीचे की पत्तियों से पता लगवा सकते हैं। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं ये मतलब ऊपर की पत्तियां रहती है उनमें, जैसे पत्तियां बहुत छोटी रह जाती हैं, हरापन कम हो जाता है, बढ़वार अच्छी नहीं होती है, तो अच्छा। वहां से हम लोग अलग अलग पोषक तत्व की अलग अलग तरह से पहचान कर सकते हैं।
1: अच्छा अच्छा, तो आपके कहने का अर्थ ही है कि एक जैसे एक हम सब्जी बनाते हैं उसमें कई तरह के मसाले डालते हैं, हर मसाले का, हर नमक का, मिर्च का, हल्दी का अपना महत्व है, उसी तरह से फसल के उत्पादन के लिए, उसकी गुणवत्ता के लिए और अधिक उत्पादन लेने के लिए पोषक तत्वों का काफी महत्व है।
0: क्योंकि हम लोग खर्चा बहुत करते हैं लेकिन कम खर्च के अंदर अधिक उत्पादन कैसे लेना है, वो एक बैलेंस न्यूट्रिशन की पूर्ति करके हम लोग ले सकते हैं। यदि एक ही मुख्य पोषक तत्वों पे ही हम लोग जोर देते रहेंगे कि जी हमारे पड़ोसी ने एक गट्टा डाला तो हम दो डाल दें, तो उससे खर्चे ही बढ़ेंगे, उत्पादन नहीं बढ़ेगा और जमीन का नुकसान होगा वो अलग है। आज डीएपी हम लोग देखते हैं खेतों के अंदर, जब कसी चलाते हैं तो हम लोग देखते हैं उसके अंदर पत्थर दिखते हैं आज, और ये दिनों दिन अब बढ़ते जा रहे हैं। यदि हम लोग उसी पे चलते रहेंगे तो ये आने वाले समय में जमीन का बहुत बड़ा नुकसान है, जमीनें ऊसर हो जाएंगी, इसलिए बैलेंस फर्टिलाइजर बहुत जरूरी है।
1: आज हमारे चौपाल कार्यक्रम में पृथ्वी सोलंकी ने जमीन में सूक्ष्म तत्वों के महत्व के बारे में अपने किसान भाइयों को विस्तार से जानकारी दी है। हम ये उम्मीद करते हैं कि इस जानकारी से निसंदेह किसान वर्ग लाभान्वित होगा और जो अनावश्यक खर्च उर्वरक के प्रयोग में वो कर रहे हैं उनसे उनको थोड़ा छुटकारा मिलेगा और वो फसल के जो सूक्ष्म तत्व हैं या मुख्य पोषक तत्व हैं एक संतुलन रखते हुए अपनी फसल में उर्वरकों का प्रयोग करेंगे। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे सुनने वालों को दी है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं।
2: सुनिसा भेंट वार्ता उर्वरकों का संतुलित उपयोग, वार्ताकार हा पृथ्वीराम जी एर आसू, बातचीत करने वाला हा संजय बैठ एर अबे सुना ओ गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: कालूराम प्रजापति एर साथियों गाइड गीत अभी सुनियो आपा। एर अबे किसान भाइयों आपा आज बातचीत करी के आज रे चौपाल कार्यक्रम में थाने सुनावाला एक रेडियो रिपोर्ट के दैदासपुरारा प्रगतिशील किसान शिशपाल ओजा रे सागे मिया रे खजूर रे बाग में जार बासु बातचीत करी तो सुनो आ रेडियो रिपोर्ट। श्रोताओ प्रस्तुत है खजूर रे बाग री रेडियो रिपोर्ट। दैदासपुरा गांव में खजूर री खेती करने वाला प्रगतिशील किसान शिशपाल ओजा रे खजूर फार्म रे खेत माए जा एर बातचीत करी एर खजूर री खेती रे मुजब जानकारी ली। तो सुनो सा खजूर री खेती री रेडियो रिपोर्ट।
3: मरुदर थारे देश में केसर बरनी रेत, मरुदर थारे देश में केसर बरनी रेत, मोटा मोटा धोरिया और सुरंगा लागे खेत। देखो सा आपनो जेको रंग रंगीलो राजस्थान है आ धोरांगी धरती है और आपने ई धोरांगी धरती के माँ खजूर को बाग है। आज आपा ई बाग के माँ और आपने सागे शिशपाल जी ओजा और बड़ी मेहनत कर गए जेको बाग लगाए हुए और आज चमन बना रखे सा। तो सारों पहला आंगो परिचय थाने दे रहा हूँ शिशपाल जी। राम राम।
4: राम राम।
3: तो वो जो खजूर फार्म थे लगा रखे हुए परिचय जो है वो श्रोतावान दे होते।
4: मेरा नाम शिशपाल, गांव दैदासपुरा सूरतगढ़, जीएस डेड्स दैदासपुरा।
3: वाह जी वाह। तो ए जगह खजूर का जगह थे पौधा लगा रखे है, बाग लगा रखे है, देखने में भी बहुत बढ़िया लगे और खाने में भी खजूर बहुत मीठो लगे, स्वाद लगे। पहले भी आप आया तो खजूर लगाने की जकी विधि है बा किसान भाइयों ने आज सागे सागे बता दियो थे।
4: शुरुआत में किसान भाइयों ने उद्यान विभाग में आवेदन करना पड़ेगा और आवेदन करने के बाद में साल या दो साल तक इंतजार करने के बाद पेड़ मिलेगा और पेड़ मिलने पहले आपकी जमीन ने समतलीकरण कर लियो और बिंग अंदर ड्रिप फिटिंग कर लियो, बिंग बाद में आपका पेड़ जिया मिले वह खेत में लगाओ।
3: अब बहुत अच्छी थी जानकारी दी। तो कितनी की दूरी के ऊपर आप पेड़ लगावा, अब जिया थे पेड़ लगा रखे है, आज तो है पेड़ के बहुत बड़ा बड़ा पेड़ बन रहा है जगह पौधा लगावा, आप के विधि है लगाने की बाबी थोड़ी सी थे बता दो।
4: पेड़ लगाना 15-20 दिन पहले गड्ढो करके गोबर की खाद घेर के भी ड्रिप चालू कर दियो और बिंग बाद में 8 मीटर की दूरी पर पेड़ लगाओ, यानी कि 26 फुट मान लो।
3: अच्छा, पेड़ लगाने के बाद के माँ अंगो के रख रखाव है, सार संभाल किया करनी पड़े भाभी बता दो।
4: छोटा पेड़ लगाने के बाद में एक तो पशुओं को ध्यान रखना पड़ेगा या जंगली जीव है बंगो भी ध्यान रखना पड़ेगा और कोई फंगीसाइड या कोई दिक्कत है तो नॉर्मली स्प्रे करनी पड़ेगी।
3: ए देखा इन पेड़ लाग भी रहे, छोटा छोटा पेड़ है, बाद में लग रहा है,
4: ये बाद में लग रहा है, आन 3 साल हो गया लग गया।
3: कोई रासायनिक कोई खाद उर्वरक वह भी देना पड़ेगा?
4: ये दोनों चीज किसान पर निर्भर करे, अगर रासायनिक पर करना तो रासायनिक पर कर लियो, ऑर्गेनिक करना तो ऑर्गेनिक कर लियो।
3: बढ़िया बात है। बताई आप खजूर की किस्म देखा, कई बार आप बाजार में भी अब जी खजूर की रुत है, मौसम है, तो आप किस्म देखा, कटी लाल रंगा खजूर हुआ, कटी पीला रंगा खजूर हुआ, कटी छोटा खजूर हुआ, कटी बड़ा खजूर हुआ, तो जकी बढ़िया किस्म है अपनी धरती वास्ते अपनी जमीन सुटेबल जकी हुए और बढ़िया उत्पादन देवे, तो बढ़िया किस्म के बारे में और बता दो।
4: लाल रंग की किस्म तो खुनेज जी और पीला कलर की बरई और क्लास 2 वैरायटी हुआ और एक मेड़जूल हुआ जिकी बड़ो साइज हुआ, कलर बिंग भी पीलो हुआ, लेकिन आपने लिए आमतौर पर लगावा तो खुनेजी लाल रंग वाली और पीला रंग वाली बरी दो कामयाब किस्म है। कोई भी किसान भाई लगाता दो किस्म ने आराम लगा सके।
3: ए देखा खजूर लाग रहा है पौधा का बड़ा बड़ा गुच्छा लाग रहा है, अंग अंदर अपन दिखन भी लाग रहा है, साइज भी अंग बहुत बड़ी है, आज की किस्म है आ किसी किस्म बोले
4: आ बड़ी किस्म है,
3: तो इनकी के खासियत है?
4: सबू ज्यादा उत्पादन ये किस्म हुआ है, सबू ज्यादा मीठा, सबू ज्यादा बढ़िया, मतलब बाजार की बिक्री है जिसकी

0: नहीं पर निर्भर करे।
1: अच्छा, मिठास इंगो बढ़िया हुए, उत्पादन इंगो बढ़िया हुए।
0: हाँ,
1: कितने समय के बाद गए माँ खजूर को जो को पौधो है वो किसाना ने उत्पादन देनो शुरू कर दिया, कितना टाइम लगे?
0: तीन चार साल में स्टार्ट कर दिया। 10-20 किलो या 14 साल 10-20-30 किलो तक हो जाए, फिर धीरे धीरे बढ़ तो जाए 10-12 साल वो पूरा जवान पेड़ हो, अभी 3-4 क्विंटल वजन एक पेड़ को निकल।
1: आज आप यही पौधे के नीचे खड़े हैं तो यही पौधे के गुच्छा भी बहुत लग रहे हैं। 10 साल हो गया पौधे लगे।
0: 13 साल को पेड़ है।
1: 13 साल को पेड़ है। 13 साल को पेड़ कितना उत्पादन दे दिया अब इन ऊपर उठे कितो खजूर है जो उतारोगा?
0: अब इन पर मान के चलो 2.5-3 क्विंटल
1: एक पौधो है जो
0: 2.5-3 क्विंटल वजन देगा।
1: चलो बहुत बढ़िया थे आ जानकारी बताई। किसान भाइया ने आवेदन करने वास्ते कोई प्रक्रिया जकी है भाभी थे बता दो कि आज अपनी बातचीत सुन गए कोई किसान भाई अगर खजूर को पेड़ लगानो चाहे तो एक तो आवेदन करने को तरीको बता दो, दूसरो अपनी जमीन माँ जी आप भी थे बताए अभी ड्रिप सिस्टम आते ड्रिप लगा भी रखी है तो ड्रिप सिस्टम में पानी को जो साधन है वो हटे थारे ट्यूबवेल को है?
0: बिल्कुल।
1: नहरी सिंचाई को नहीं
0: ना कोनी।
1: तो ट्यूबवेल को कितना पानी वह वो इन माने और किसे पानी का कामयाब अगर किसी जमीन सही जाए खजूर ने?
0: खजूर के लिए जमीन तो एक आमतौर पर आप ठीक ठाक जमीन है, कोई कोई विशेष यहाँ कोनी भी एकदम डेरी की जमीन में लगाओ,
1: रेतीली जमीन
0: जमीन में एवरेज ठीक ठाक जमीन अभी लगा सका।
1: बिल्कुल।
0: दूसरी बात पानी को नापो है जबकि जमीन वो अपना सरसों जो कणक अभी पानी खजूर भी हो जाएगी
1: पानी खजूर हो
0: जाएगी नाप तोल के हिसाब कोई चेक करवा कोई नहीं करवा सरसों जो कणक अभी पानी
1: बिल्कुल दलन ही जबकि फसल मूंग हो गया चना हो गया बन है तो बहुत बढ़िया पानी जो है मूंगफली
0: तो नहर के बराबर को
1: पानी बढ़िया पानी चाहिए लेकिन थोड़ा बहुत जी आप देखा खारो पानी वेबिंग में गेहूं का उत्पादन भी हो जाए जौ को भी हो जाए सरसों को भी हो जाए तो वो पानी खजूर ने कामयाब है।
0: बिल्कुल कामयाब है। और फाइल आवेदन करने के लिए किसान आपकी जमाबंदी आधार कार्ड ज्यादा विशेष की कोई एक जन आधार है ई मित्रा पर लेके जाएगा बट आराम आवेदन करके छोड़ दो
1: उद्यान विभाग में
0: नहीं नहीं ई मित्रा हूँ ऑनलाइन आवेदन करना उद्यान विभाग में जानो ही कोनी
1: ऑनलाइन
0: आवेदन कर दो भी किसान को नंबर आवेगा उद्यान विभाग को फोन आ जाए तारा पेड़ आ गया पेमेंट जमा करा और पेड़ लेगी।
1: अच्छा पेमेंट की थे बात करी तो लगभग कितने रुपया को पौधों को मिले और इन पौधे के ऊपर पूरा पैसा देना पड़े या कुछ सब्सिडी सरकार की तरफ कोई सहायता है भाभी बता दे।
0: आज के दिन 5,000 रेट है
1: एक पौधे को 5,000
0: रेट है और गवर्नमेंट को हाँ ही किस्म को और गवर्नमेंट 75% सब्सिडी देगा
1: 75% गवर्नमेंट की
0: और रेट बढ़ता घटता रहा स्टार्टिंग में 2200-2300 रेट और 90% सब्सिडी 4,000 रेट हो गया 75% सब्सिडी अभी 5,000 रेट हो गया तो बढ़ता घटता रहा जिसका मौका पर रेट हुआ मिल जाएगा।
1: चलो बहुत अच्छी थी जानकारी बताई बिंगे बाद में क्यों है कि खजूर भी लगा लिया किसान भाई और उत्पादन भी होना शुरू हो जाए तो मार्केटिंग ही फसल ने बेचने की कई बार यहाँ अपने दिक्कत आवे या जानकारी सही नहीं होने के कारण पूरा वाजिब दाम जो है वो किसान भाई ने मिले को नहीं तो कोई किसान भाई अगर लगाना चाहे तो इनकी खट्टे आप बेच सका खटेगी मंडियां लगे खटेगी ज्यादा बिक्री हुए बिंगे बारे में थोड़ी सी जानकारी दो।
0: आमतौर पर तो बिक्री भी जगह किसान लगा रखी हो नहीं वो आप खेत बेचना चाहो तो खेत बेच
1: अच्छा पड़ो भी ग्राहक मिल जाए
0: आराम एक एवरेज रेट है 50 रुपया भी कोई बेचना चाहो तो खेत पड़ो बेच दियो
1: लगभग ओ भाव जो कोई 50 रुपया किलो का आसपास
0: आपकी मेहनत कर लेगो जो भी फ्रूट भी बढ़िया बना लेगो साइज फ्रूट को बढ़िया लेगियो या जो मिठास बढ़िया तरीके को साफ रख लियो वो भी तेज रेट बेच लेगो खुद मार्केटिंग कर लेगो तो और ज्यादा पैसा कमा लेगो लेकिन बाहर का बड़ा बड़ा व्यापारी 100-200-500 क्विंटल रोज वजन उठावा व्यापारी आवे ले जाए कोई समस्या
1: अभी बहुत अच्छी बात बताई लगभग के हुए जकी आप फ्रूट की खेती करा तो अंगमा के हुए कई बार उत्पादन कोई चीज को ज्यादा हो जाए तो आपने बिक्री की समस्या आवे तो आज अच्छी बात बताई कि बाहर का जो बड़ा बड़ा व्यापारी जो है वह आपने खेत में आ गए और आपने सागे रेट मुका गए और आपने कॉन्टेक्ट करके अपनी फसल देखी है वह खरीद सके अपना फ्रूट जो है वह खरीद सके आ तो होगी खजूर ने आप तैयार कर गए और बेच गए पैसा कमा सका। फ्रूट की थोड़ी सी एक बात थे और बताओ कई बार आप मन में एक बात आवे कि खारक आप जी खावा खारक देखी खजूर की बनेड़ी हुए और भी कई जगह प्रोडक्ट कोई हिस्सा जगह खजूर का बने तो बेचने के अलावा आप खजूर को खुद यूं के चीज तैयार कर सका इनके बारे में भी थोड़ी
0: आप खुद ही खारक तैयार कर सका अचार तैयार कर सका और पिंड खजूर बोला जी का पैकिंग वाला बे भी तैयार कर सका
1: जगह बाजार के मां सर्दियां का मां मीठा मीठा सा गुड़ला गेड़ा सा खजूर आवे
0: आप तैयार कर सका
1: बे खजूर आप आ खजूर भी तैयार कर सका
0: ए खजूर की सारी चीजें बननी हुए।
1: अच्छा बिंगे के
0: अलग अलग वैरायटी थोड़ा बहुत डिफरेंस है लेकिन आम भाषा में ये भी खजूर की है चीजें सारी
1: खजूर की चीज है अचार वाली बात भी थारी रोचक लगी बढ़िया लगी एक जगह पैकिंग हुए मीठा मीठा खजूर आवे जगह आप सर्दियां में खावा स्वाद भी लगे तो बिंगी थोड़ी सी विधि जकी है बात है बता सको
0: विधि आमतौर पर तो एक तो तरीको हुआ है पेड़ के ऊपर ही पक गया अपन ड्राई करके अंदर रख लिया।
1: अच्छा
0: दूसरो तरीको हुआ है थोड़ा बहुत मतलब अपन ये लगे मिठास कम है तो अपन उबाल गए पानी और गुड़ को देसी भाषा में कहते हैं पैकिंग करके वो पैक
1: तो वो खराब को
0: नहीं
1: इम्यूनिटी भी बढ़िया हुआ ताकतवर भी हुआ स्वाद भी लगे
0: सारी चीज
1: बहुत

0: जी जानकारी बताइए। आज आकाशवाणी सूरतगढ़ थारे खजूर फार्म के मां आयडा अपना कार्यक्रम प्रमुख आकाशवाणी सूरतगढ़ नवीन जी सिसोदिया भी आपने सागे और अच्छी थारी जानकारी जकी है बा बिल्कुल किसान भाइयों ने पसंद आसी। तो आखिर में थारू वो पूछना चाहूँ, किसान भाइयों ने थे खजूर के बारे में या खजूर की खेती के बारे में कोई थारी तरफ कोई बातचीत कहना चाहो, कोई संदेश देना चाहो तो बता सको।
1: किसान भैया ने पारंपरिक खेती छोड़ दी, दूसरी आ कोनी भी सारी छोड़ दियो, बिंग सागे सागे दूसरी खेती करनी चाहिए, खजूर की करनी चाहो वो खजूर की करो और तरीकों करनी चाहो, खेती में बदलाव करो। क्यों किसान भैया की आपकी आमदनी भी बढ़ेगी, काम भी सुधरेगा, सारी चीज बढ़िया बनेगी, नयो काम करोगा तो बी हुई फायदे में रहोगा किसान भाई।
0: अच्छी थी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। सोताओ आही देदासपुरा गांव रे खजूर फार्म री रेडियो रिपोर्ट। ई रेडियो रिपोर्ट रा संयोजक नवीन सिसोदिया, वाचक स्वर एर संपादन श्रीपाल सारस्वत रो। सुनीसा खजूर रे बागरी रेडियो रिपोर्ट एर अबे सुना ओ गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: किसान भाइयों, सुनियो गीत सीमा मिश्रा एरे साथियों री आवाज़ में। आपने ताई बाजार भाव कई मंडियां रा पहुंचेड़ा है। सूरतगढ़ मंडी के मां सरसों रा भाव रहा 7,547 रुपया प्रति कुंटल। ग्वार रा भाव रहा 5,520 रुपया कुंटल। मूंग रा भाव रहा 5,550 रुपया ले गए 6,300 रुपया कुंटल। जैतसर मंडी में सरसों बिकी 7,295 रुपया से ले गए 7,443 रुपया कुंटल। कणक का भाव रहा 2,590 रुपया से ले गए 2,531 रुपया कुंटल। ग्वार का भाव रहा 5,568 रुपया से ले गए 5,611 रुपया प्रति कुंटल। चना बिकया 5,781 रुपया कुंटल। पीलीबंगा मंडी के मां सरसों का भाव रहा 7,534 रुपया कुंटल। एर कणक का भाव रहा 2,573 रुपया से ले गए 2,651 रुपया कुंटल। एर गंगानगर मंडी के मां बाजार भाव इतरिया रहा।

सरसों बिकी 7,030 रुपया से ले गए 7,583 रुपया कुंटल। कणक बिकी 2,495 रुपया से ले गए 2,620 रुपया कुंटल। मूंग का भाव रहा 5,790 रुपया से ले गए 7,060 रुपया कुंटल। और ग्वार का भाव रहा 4,790 रुपया से ले गए 5,555 रुपया प्रति कुंटल। अब है आज रो चौपाल कार्यक्रम समाप्त करने री श्रीपाल ने सीख देव सा राम राम सा राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर बोल रहे हैं। श्रोताओं, आप हमारे कार्यक्रम DRM पर 909 किलोहर्ट्ज़ पर, FM पर 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और मोबाइल ऐप NewsOn AIR पर भी सुन सकते हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या के 7:45 हुए हैं। लीजिए कार्यक्रम सुनिए, फिल्मी भक्ति संगीत।

अभी आपने लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ों में ये रचना सुनी। आइए हेमलता, जसपाल सिंह और साथियों के स्वर में ये भक्ति रचना सुनें।

कुछ भक्ति रचनाएं सुनी। ये भक्ति रचनाएं फिल्मों से थी। मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। हम अपने सुनने वालों को बता दें, आज रात 9:15 पर आप सुनेंगे राजस्थानी लोक संस्कृति का कार्यक्रम, लोकगीतों लोक भजनों का फरमाइशी कार्यक्रम गोरबंद आप सुनेंगे। रात 10:00 फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गंगा होगा। इन कार्यक्रमों के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं और साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप में संदेश भी प्रेषित कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात के 8:00 वाले हैं। थोड़ी देर में आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संसद समीक्षा सुनेंगे। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध समाप्त होने के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल ये विधेयक सदन में पेश किया था। राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ कड़े प्रावधान वाले इस विधेयक को सदन में पेश करते हुए कहा कि ये विधेयक सरकार की छात्रों के कल्याण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इसे भारतीय संसद के इतिहास में मील का पत्थर कहा जा सकता है। कांग्रेस नीत पूर्ववर्ती सरकारों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में गड़बड़ियों और प्रश्न पत्र लीक आदि की घटनाएं पहले भी होती रही हैं और विभिन्न राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारों के दौरान भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। श्री सिंह ने 2009 में रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा, 2011 में अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा, इसी साल पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2010 में उत्तर प्रदेश में बीएड प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी और 2012 में एम्स नई दिल्ली की प्रवेश परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने का उल्लेख करते हुए कहा कि ये सूची लंबी है। उन्होंने कहा कि सरकार को लगा कि इस संबंध में एक व्यापक कानून की आवश्यकता है। श्री सिंह ने कहा कि देश में उच्च शिक्षा में परीक्षाओं का प्रबंधन करने के लिए एनटीए जैसी एजेंसी की सिफारिश 1992 और 2010 में भी की गई थी, लेकिन पता नहीं इस पर विचार क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए का गठन 2017 में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने ही किया था। श्री सिंह ने कांग्रेस सदस्यों की ओर इंगित करते हुए कहा कि आपका अधूरा काम मोदी सरकार ने पूरा किया। श्री सिंह ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ सरकार 2024 में ही विधेयक लाई थी, जिसे जून 24 में लागू भी कर दिया गया। उन्होंने कहा कि लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में आज के संशोधन विधेयक के माध्यम से कड़े प्रावधान शामिल किए जा रहे हैं। उन्होंने इस तरह के मामलों की जल्द सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन का भी जिक्र किया, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले की थी। श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये फास्ट ट्रैक अदालतें घटना की रिपोर्ट दर्ज होने के 5 महीने के भीतर आखिरी निर्णय देंगी, जो इस संशोधन विधेयक का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। उन्होंने कहा कि सदस्य सरकार की प्रतिबद्धता का इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इस विधेयक के साथ ही कानून मंत्री ने ये प्रस्ताव भी रखा है कि विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने की प्रक्रिया साथ ही शुरू

की जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें पहले ही गठित की जा चुकी हैं और आने वाले दिनों में बाकी जगहों पर भी इनकी स्थापना होगी। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने लोकसभा में परीक्षा प्रश्न पत्र निरोधक कानून को मोदी सरकार की विफलता का स्मारक करार दिया। उन्होंने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह को सदन में इसका जवाब देना चाहिए कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया था। श्री गोगोई ने दावा किया कि 2024 में लाया गया मूल कानून पेपर लीक रोकने में नाकाम रहा था और नया प्रस्तावित कानून भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं होगा। कांग्रेस सांसद ने कहा कि 2024 में जब इसी तरह का विधेयक लाया गया था तब सरकार ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए दावा किया था कि पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन उसी वर्ष नीट यूजी पेपर लीक मामले में 45 लोगों को आरोपी बनाया गया। इनमें से अधिकतर को जमानत मिल चुकी है। उनका कहना था कि मामले के कथित मास्टरमाइंड को भी जमानत मिल गई। श्री गोगोई ने आरोप लगाया कि जब 2024 में पेपर लीक का मामला सामने आया था तब तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इससे इनकार किया था और इस बार भी उनका रवैया वैसा ही रहा। कांग्रेस सांसद ने संसद परिसर में भाजपा के कुछ सदस्यों द्वारा श्री प्रधान का स्वागत किए जाने का हवाला देते हुए कहा कि संसद में पूर्व मंत्री का ऐसा स्वागत किया गया मानो वो पाकिस्तान से जंग लड़कर आए हों। श्री गोगोई ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 लोगों को हटाए जाने की बात कही गई जबकि संस्था में स्वीकृत पदों की संख्या 34 है। उन्होंने सरकार से इस संबंध में स्पष्टीकरण देने की मांग की। उन्होंने ये भी सवाल किया कि जब एनटीए के महानिदेशक को बदल दिया गया तो चेयरमैन को क्यों बरकरार रखा गया। उन्होंने कहा कि भाजपा से संबंधित एक वैचारिक संगठन के लिए शिक्षा विभाग महत्वपूर्ण है और विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां इसी सोच के तहत की जा रही हैं। श्री गोगोई ने संशोधन विधेयक के प्रावधानों का जिक्र करते हुए कहा कि केवल जुर्माने की राशि बढ़ाने से शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं होगा। उन्होंने जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि युवाओं को अपने भविष्य की चिंता है और इसी कारण वे सड़कों पर उतरे। कांग्रेस सांसद ने कहा कि गृहमंत्री को सदन में आकर इसका जवाब देना चाहिए कि दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन चलाने, लाठियां भांजने और आंसू गैस के गोले दागने का आदेश किसने दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि इस संशोधन विधेयक को लाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता और उनकी सरकार की जिम्मेदारी का प्रमाण है। सुश्री स्वराज ने प्रश्नपत्र लीक की घटनाओं पर दुख जताते हुए कहा कि जब किसी प्रतियोगी परीक्षा में अनियमितता होती है तो उसका असर केवल अभ्यर्थी पर ही नहीं बल्कि उसके माता पिता पर भी पड़ता है। उन्होंने कहा कि स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पेपर लीक एक घोर अपराध है, इसलिए इस सदन को आश्वासन देना चाहूंगी कि मोदी जी के लिए पेपर लीक को घोर पाप कहना केवल एक बयान नहीं उनकी सरकार की नीयत है, इसलिए ये संशोधन विधेयक लाया गया है। भाजपा सांसद ने कहा कि वर्तमान में परीक्षा माफिया संगठित होकर अंतर्राज्यीय आपराधिक नेटवर्क बन गया है, ऐसे में ये विधेयक क्षेत्राधिकार की उलझन को सुलझाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ ही और विपक्ष के लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रश्न पत्र लीक की समस्या केवल 2014 के बाद पैदा हुई है। सुश्री स्वराज ने कहा कि मीडिया की रिपोर्ट को सच माने तो विपक्षी दल शासित राज्यों और 2014 से पहले कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के दौरान 22 बार पेपर लीक होने के कारण परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी थीं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं रोक पाए वो पेपर लीक भला कैसे रोक पाएंगे। श्री यादव ने जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन का हवाला देते हुए कहा कि सरकार झुकती है, सिर्फ झुकाने वाला चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्व शिक्षा मंत्री जब लोकसभा में लौटे तो सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया, इससे हमें कोई शिकायत नहीं है। माननीय सदस्यों को कितनी राहत मिली होगी, एक प्रधान जी को हटाकर अपने भाजपा ने प्रधानमंत्री बचा लिया। सपा नेता ने कहा कि नई पीढ़ी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने भाजपा को झुकने के लिए विवश कर दिया। उन्होंने कहा कि जब सरकार घबरा जाती है और डर जाती है तब मांगों को स्वीकार कर लेती है। श्री यादव ने कहा कि ये ऐसा पहला आंदोलन था जिसमें बच्चों के साथ उनके माता पिता भी जुड़ गए थे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए में कर्मचारियों को आउटसोर्स पर रखने का उल्लेख करते हुए कहा कि डर लगता है कि कहीं पूरी सरकार को आउटसोर्स न कर दिया जाए। श्री यादव ने कहा कि सरकार ने शिक्षा और शैक्षणिक संस्थाओं को एक रंग में रंगने का प्रयास किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर रही है ताकि पिछड़े, दलित और गरीबों के बच्चे न पढ़ पाएं। उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 26,386 प्राथमिक विद्यालय बंद किए गए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अपने सलाहकार बदल लेने चाहिए और यदि सरकार जेन जेड पर भरोसा वापस जीतना चाहती है तो प्रधानमंत्री को कैमरे का एंगल नहीं बल्कि दिल का एंगल भी बदलना पड़ेगा। उन्होंने लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा में भाग लेते हुए ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को इसका जवाब देना चाहिए कि किसके आदेश पर छात्रों के खिलाफ पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य ने कहा कि ये देश सांसदों की जागीर नहीं बल्कि जनता की अमानत है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जनता के सवालों का जवाब दे। प्रियंका गांधी ने दावा किया कि आज युवाओं को लगने लगा है कि मेहनत से ज्यादा बेईमानी मायने रखती है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को लेकर कहा कि इसमें गंभीर खामियां हैं, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं और परिवार कर्ज लेकर पढ़ाई करा रहे हैं।

सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जनता के सवालों का जवाब दे। प्रियंका गांधी ने दावा किया कि आज युवाओं को लगने लगा है कि मेहनत से ज्यादा बेईमानी मायने रखती है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को लेकर कहा कि इसमें गंभीर खामियां हैं, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं और परिवार कर्ज लेकर पढ़ाई करा रहे हैं। विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि वो इस विधेयक का समर्थन करते हैं और कड़ा कानून जरूरी है, लेकिन अगर व्यवस्थागत विफलताओं से परीक्षाओं में गड़बड़ी होती रही तो ये पर्याप्त उपाय नहीं है। श्री बनर्जी ने 2024 के लोक परीक्षा कानून में लाए गए संशोधनों के संदर्भ में कहा कि सजा बढ़ाने से सरकार की 12 वर्ष की अक्षमता खत्म नहीं हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ये सरकार नए भारत की बात करती है। आज का युवा पूछता है कि अगर ये नया भारत है तो प्रश्न पत्र लीक क्यों हो रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस नेता ने दावा किया कि मोदी सरकार के पिछले 12 साल के कार्यकाल में प्रश्न पत्र लीक के एक भी मामले में कोई दोष सिद्धि नहीं हुई है। द्रविड़ मुनेत्र कशगम के सांसद दयानिधि मारन ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि नीट परीक्षा की शुरुआत से लेकर अब तक उनके राज्य तमिलनाडु समेत पूरे देश में अनेक छात्र आत्महत्या कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये इस बात को दर्शाता है कि नीट परीक्षा से क्या हालात हो गए हैं। मारन ने कहा कि सरकार मुख्य मुद्दे का समाधान नहीं कर रही है। मुद्दा कानून का नहीं बल्कि नीट का है, जिसकी आवश्यकता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ने नीट लाकर गलती की तो आप इसे थोपकर दूसरी गलती कर रहे हैं। नीट हमारे बच्चों पर मत थोपिए, इसे रोकिए। उन्होंने कहा कि द्रमुक ने तमिलनाडु में नीट का शुरू से विरोध किया है और लगातार इस बात को कहती रही है कि नीट नहीं चाहिए। समीक्षा लिखे जाने तक चर्चा जारी थी। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। नीट प्रश्नपत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक आज एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण उच्च सदन में आज भी शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके अलावा उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति की 2 रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गईं। आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखवाने के बाद सभापति ने शून्यकाल शुरू किया। उन्होंने असम से UPPL के रवंगवरा नारजारी को अपना मुद्दा उठाने के लिए कहा। श्री नारजारी ने बोडो भाषा में बोलना शुरू किया। इसी दौरान विपक्षी सांसद अपनी सीटों से खड़े हो गए। उन्होंने पिछले सप्ताह राष्ट्रीय राजधानी में नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा कथित बल प्रयोग का मुद्दा उठाया। हंगामे के कारण नारजारी की बात सुनी नहीं जा सकी। विपक्षी सांसदों, खासकर वाम दलों के सदस्यों ने मांग की कि छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह सदन में बयान दें। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जहां इस मांग का विरोध किया, वहीं विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग के समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए। कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने मांग की कि अमित शाह गृहमंत्री हैं और उन्हें सदन में आकर प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। कुछ विपक्षी सदस्य श्री शाह के बयान की मांग करते हुए अपने स्थानों से उठकर आगे आ गए। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते थे, लेकिन शोर शराबे के कारण वे ऐसा नहीं कर सके। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से शून्यकाल में सूचीबद्ध मुद्दे उठाने को कहा, लेकिन हंगामा जारी रहने पर उन्होंने करीब 11:07 पर ही सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक दोबारा शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतनराम मांझी से सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश करने के लिए कहा। हंगामे के बीच ही श्री मांझी ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक MSME क्षेत्र के विकास की गति को देने के उद्देश्य से लाया गया है। इस विधेयक के तहत 2006 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है। श्री मांझी ने कहा कि मूल विधेयक 2006 में बना था और इसमें समय तथा बदलती परिस्थितियों के अनुरूप सुधार करने की जरूरत है। उनके अनुसार इस विधेयक का उद्देश्य उद्योग जगत के बदलते हुए परिदृश्य के अनुसार इस क्षेत्र की इकाइयों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को बढ़ाना है। विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि MSME के निशुल्क और स्वैच्छिक पंजीकरण के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म अधिसूचित किया जाएगा। श्री मांझी द्वारा विधेयक पेश करने के बाद उपसभापति हरिवंश ने एक और विधेयक सदन में पेश करने

के लिए कहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों के हंगामे को देखते हुए उन्होंने उनसे कहा कि आप सदन नहीं चलने देना चाहते। उपसभापति ने सदस्यों से शांत रहने और कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन सदन में व्यवस्था बनते न देख उन्होंने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। उच्च सदन की बैठक अब कल सुबह 11 बजे होगी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात के 8:35 हुए हैं। लीजिए कार्यक्रम सुनिए एक ही फिल्म से। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हमारी आज की फिल्म है मिस्टर एक्स इन बॉम्बे। इस फिल्म में अभिनय जिन्होंने किया विथि किशोर कुमार, कुमकुम और मदनपुरी। चूंकि दिन आज इस फिल्म की नायिका कुमकुम का, कुमकुम जिनका जन्म का नाम ज़ेबुनिशा खान, 8 जून 1938 को आपको जन्म हुआ और आज के दिन यानी 28 जुलाई 2020 को आपका निधन हुआ। उन्हें याद करें और उनकी अभिनीत इस फिल्म के गाने सुनें।

अभी आपने किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज़ों में ये गीत सुना। आइए इस फिल्म का एक पॉपुलर गाना सुने किशोर कुमार की आवाज़ में।

0: इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। यह आकाशवाणी का कार्टून सिटी चैनल सूरत का है। 8:30 बजे हैं। स्पोर्ट्स कैन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नज़र स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। राष्ट्रमंडल खेलों की तैराकी स्पर्धा में श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बनाई, शर्मिला ने जीता देश के लिए दूसरा स्वर्ण पदक। आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीता, प्रतियोगिता में भारत तीसरे स्थान पर। गुजरात की देविया नीवा झाला ने इतिहास रचते हुए एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई किया। एमीरा खोसला ने किया ऐतिहासिक प्रदर्शन, वर्ल्ड यूथ क्लाइंबिंग चैंपियनशिप में बनाया नेशनल रिकॉर्ड। श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम की घोषणा, अनुभवी रविंद्र जडेजा की वापसी। और हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला एकेडमी चैंपियनशिप में राउंड ग्लास हॉकी एकेडमी ने किया ऐतिहासिक प्रदर्शन, दागे 41 गोल।

0: कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं राष्ट्रमंडल खेलों से, जहां खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन जारी है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों की तैराकी स्पर्धा में श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में आज जगह बना ली है। श्रीहरि नटराज ने 100 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में 13वें स्थान पर रहते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। सेमीफाइनल देर रात खेला जाएगा। दो बार के ओलंपियन और इस इवेंट में भारत के नेशनल रिकॉर्ड होल्डर नटराज हीट में सबसे तेज 16 तैराकों में शामिल होकर आसानी से आगे बढ़े। बेंगलुरु के इस तैराक ने अपने हीट में 5वां और कुल मिलाकर 13वां स्थान हासिल करने के लिए 55.58 सेकेंड का समय लिया। 25 वर्षीय तैराक ने शुरुआती 50 मीटर की दूरी 26.26 सेकेंड में तय की और फिर 55.58 सेकेंड में रेस पूरी कर ली। वहीं अनुभवी साजन प्रकाश की चुनौती पुरुषों के 50 मीटर बटरफ्लाई में क्वालिफाई न कर पाने के बाद खत्म हो गई। वहीं इस समय महिला वेट लिफ्टिंग की 63 किलोग्राम भार वर्ग में निरुपमा देवी प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। और लगातार भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में अच्छा प्रदर्शन किया है। कल भी कई पदक भारत ने अपने नाम किए। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारतीय पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। वुमेन्स शॉटपुट F57 वर्ग की फाइनल स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने 9.81 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। उन्होंने 6 प्रयासों में 9.48, 9.58, 9.81, 9.17, 9.37 और 9.60 मीटर का प्रदर्शन किया। तीसरे प्रयास में हासिल 9.81 मीटर उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। इस उपलब्धि के साथ शर्मिला ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए ये पदक अपने नाम किया और ये पदक उन्होंने अपनी मां को समर्पित किया।
1: बहुत खुश हो रहे हैं सर, मेडल लाके हमारे देश के लिए प्राउड फील हो रहा है और ऐसे ही हमारे देश का नाम बचा सकते। बहुत ही अच्छा लगता है, ये मेरा सपना था, मेरी माँ का सपना था और ये गोल्ड मेहनत से गोल्ड लेके आए हैं। मेरी माँ बहुत खुश होगी, मेरी माँ के लिए ये मेडल है। मेरा एशियन गेम की तैयारी है और आगे ओलंपिक, ये मेरा फर्स्ट मेडल है और आने वाले टाइम में और अच्छे अच्छे मेडल लाते रहेंगे लॉन्ग टाइम तक।
0: दूसरी ओर भारतीय हाई जंप खिलाड़ी सर्वेश अनिल कुशारे ने फाइनल मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 2.25 मीटर की छलांग के साथ रजत पदक अपने नाम किया।
2: भारत के सर्वेश अनिल कुशारे, उनका पहला अटेम्प्ट 2.05 मीटर की हाइट पर सफाई से पार किया। सर्वेश अनिल कुशारे का ये अटेम्प्ट कामयाब होगा, बिल्कुल कामयाब होगा। क्लियर किया, कामयाबी सर्वेश के नाम और दावेदारी पेश कर।

0: 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के पैरा खिलाड़ी सुश्री शर्मिला धनकर ने स्वर्ण पदक व सुश्री शिल्पा के शायल ने कांस्य पदक जीता है। श्री सवेश कुमार सारे, श्री वलूरी अजय बाबू, सुश्री ज्ञानेश्वरी यादव ने रजत पदक एवं सुश्री बिंदिया रानी देवी ने कांस्य पदक जीतकर इस प्रतियोगिता में भारत का गौरव बढ़ाया है। भारत की 18 वर्षीय क्वेश खिलाड़ी सुश्री अनाथ सिंह ने कनाडा में वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियन 2026 खिताब जीतकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। मैं सदन की ओर से देश की मान बढ़ाने वाले सभी खिलाड़ियों को उनके योगदान के लिए एवं टीम इंडिया कोच सबको परिवारजनों को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं।
1: और श्रोताओं, हमें अभी अभी खबर मिली है विशाल टीके ने 400 मीटर दौड़ स्पर्धा के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। एक अन्य भारतीय राजेश रमेश बेहद मामूली अंतर से अगले दौर में जगह बनाने से चूक गए। इसके अलावा एथलेटिक्स, तैराकी, पैरा तैराकी और लॉन बॉल्स में आज भारतीय खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे। वेट लिफ्टिंग में आज रात 11 बजे

0: महिलाओं के 69 किलोग्राम फाइनल में हरजिंदर कौर पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। लॉन बॉल्स में भी नवनीत सिंह और दिनेश कुमार प्रतिस्पर्धा करते नजर आएंगे। महिलाओं के सिंगल सेक्शनल प्ले में नयन मोनी सैकियर आज रात मुकाबला करेंगे। वहीं बॉक्सिंग में महिला वर्ग के 54 किलोग्राम क्वार्टर फाइनल में प्रीति आज रात 10:30 बजे मुकाबला करेंगी और 11 बजे प्रिया का मुकाबला 60 किलोग्राम के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में होगा और परवीन जो है वो 65 किलोग्राम क्वार्टर फाइनल मुकाबले में प्रतिस्पर्धा करेंगी। वहीं एथलेटिक्स में हाई जंप फाइनल में पूजा आज मुकाबला करती नजर आएंगी और तैराकी में भी कई मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुषों की 50 मीटर फ्री स्टाइल S13 हीट्स में RVV BK बुदिग्ना और इमाम अली ने भी अगले दौर में जगह बना ली है और भारत की पदकों की संख्या और प्रतिनिधित्व करते नजर आ रहे हैं। उधर राजकोट की देविया निभा झाला ने एशियन गेम्स के 400 मीटर रेस के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वो इस इवेंट में हिस्सा लेने वाली गुजरात की अकेली महिला एथलीट है। एशियन गेम्स का आयोजन जापान के आईजी नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक खेला जाएगा। और अब बात निशानेबाजी पर। चीन के हांगझोउ में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीत लिया है। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में ये पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। सुनते हैं वैष्णवी की एक रिपोर्ट।
1: फाइनल में सोनम और हिमांशु ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 441.2 पॉइंट के साथ कांस्य पदक जीता। एलावेनिल और पार्थ 378.8 की फाइनल स्कोर के साथ चौथे स्थान पर रहे। इससे पहले दोनों भारतीयों ने क्वालिफिकेशन राउंड में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बनाई। सोनम ने 317.2 और हिमांशु ने 317.4 पॉइंट के साथ कुल 634.6 अंक के साथ क्वालिफाई किया था। एलावेनिल वालरिविन और पार्थ राकेश माने की जोड़ी ने 634.2 के अंक के साथ अगले दौर में जगह बनाई थी। सोनम ने इससे पहले 2024 में काहिरा में ISSF वर्ल्ड कप और नई दिल्ली में ISSF वर्ल्ड कप फाइनल में रजत पदक जीता था। ISSF वर्ल्ड कप ग्रेनेडा में उन्होंने 5वां स्थान हासिल किया था। 20 साल के हिमांशु के लिए कांस्य पदक उनका पहला सीनियर ISSF वर्ल्ड कप पोडियम है। हिमांशु ने इससे पहले 2025 में नई दिल्ली में ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर राइफल पुरुष जूनियर इवेंट में स्वर्ण पदक जीता था। इससे पहले उन्होंने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अब बात क्लाइंबिंग चैंपियनशिप पर। भारत की 15 वर्षीय अमीरा खोसला ने इटली के ऑर्ग्रो में वर्ल्ड यूथ क्लाइंबिंग चैंपियनशिप में 7.60 सेकंड का समय लेकर इतिहास रच दिया। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
2: अमीरा खोसला ने प्रतियोगिता में छठा स्थान हासिल करते हुए स्पीड क्लाइंबिंग में नया इंडियन नेशनल यूथ रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले क्वालिफिकेशन राउंड में उन्होंने 7.74 सेकंड के साथ अपना निजी श्रेष्ठ रिकॉर्ड तोड़ा था और फाइनल में 7.60 सेकंड के साथ इसे बेहतर किया। इस जीत पर अमीरा ने कहा कि वर्ल्ड यूथ क्लाइंबिंग चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करना उनके लिए सबसे गर्व का पल है। दुनिया के सबसे अच्छे यंग स्पीड क्लाइंबर्स के खिलाफ मुकाबला करते हुए उनका परफॉर्मेंस वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में किसी भारतीय का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है और वैश्विक मंच पर इंडियन स्पोर्ट क्लाइंबिंग के लिए एक और उपलब्धि है। वर्ल्ड यूथ क्लाइंबिंग चैंपियनशिप में इंडियन टीम का प्रतिनिधित्व अमीरा, श्लोक दादुकर, नील वारके और रुद्र करंदीकर ने किया। दादुकर ने 6.76 सेकंड के साथ 27वें स्थान पर रहे। वारके 35वें जबकि करंदीकर ने 44वां स्थान हासिल किया। मुकेश कुमार बल, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अब बात हॉकी पर। ग्वालियर में हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला एकेडमी चैंपियनशिप में कल राउंड ग्लास हॉकी एकेडमी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। पुल सी मुकाबले में राउंड ग्लास हॉकी एकेडमी ने तमिलनाडु हॉकी एकेडमी को रिकॉर्ड 41-0 से धूल चटाई। ये हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला एकेडमी चैंपियनशिप के इतिहास में किसी टीम की सबसे बड़ी जीत बन गई है। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
3: शुरुआत से ही राउंड ग्लास हॉकी एकेडमी ने आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया, विरोधी टीम को उनके ही हाफ में दबाए रखा और बेहतरीन फिनिशिंग दिखाई। टीम के लगातार आक्रामक दबाव का नतीजा ये हुआ कि पहले क्वार्टर के अंत तक वे 8-0 से आगे थे और दूसरे क्वार्टर में 11 गोल करने के बाद हाफ टाइम तक ये

0: बढ़त तेजी से बढ़कर 19-0 हो गई। टीम ने तीसरे क्वार्टर में 9 और गोल किए और आखिरी 15 मिनट में शानदार 13 गोल दागे, जिससे तमिलनाडु का डिफेंस पूरी तरह ध्वस्त हो गया, जबकि दूसरी तरफ उन्होंने कोई गोल नहीं होने दिया। गोलों की इस ऐतिहासिक बारिश में सलोनी का व्यक्तिगत प्रदर्शन शानदार रहा, जिन्हें 12 गोल दागने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सलोनी को कप्तान रश्मीन कौर और हरमनजोत कौर का बेहतरीन साथ मिला, जिन्होंने अटैकिंग सर्कल में जबरदस्त खेल दिखाते हुए 7-7 गोल किए। रुखसाना लगातार खतरा बनी रही और इस ऐतिहासिक स्कोर में 5 गोल का योगदान दिया, जबकि हरमनप्रीत कौर ने 4 गोल किए। इस शानदार आक्रामक प्रदर्शन को दिया और मुस्कान गिल के 2-2 गोल ने और मजबूती दी। पूल सी के एक अन्य मुकाबले में मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी ने अनंतपुर स्पोर्ट्स एकेडमी को 15-0 से रौंद दिया। मध्य प्रदेश की शानदार जीत में नम्मी गीताश्री ने 6 गोल किए, जबकि भाविका ने 5 गोल दागे। ख्वाहिश परमार, चुटकी कुशवाहा, शीतल प्रजापति और जागृति यादव ने भी गोल कर अहम योगदान दिया। प्रतियोगिता के पूल ए मुकाबले में राजा करण हॉकी एकेडमी ने तमिलनाडु हॉकी एकेडमी को 9-1 से हराया। कप्तान राखी ने 5 गोल किए, जबकि शबनम ने 2 गोल दागे। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब बात क्रिकेट पर। बीसीसीआई ने आज श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। आइए सुनते हैं अर्जुन की रिपोर्ट कि किन किन खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया है।
2: बीसीसीआई ने कप्तान शुभमन गिल की कप्तानी में अधिकतर युवा खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया है। ऑफ स्पिनर सारांश जैन को पहली बार भारतीय स्क्वाड में जगह मिली है। 33 वर्षीय सारांश घरेलू मैचों में लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने 188 विकेटों के साथ साथ 2223 रन भी बनाए हैं। मानव सुथार, गुरनूर बरार, साई सुदर्शन, देवदत्त पड़िक्कल और ध्रुव जुरैल जैसे युवा खिलाड़ियों को अच्छे प्रदर्शन के दम पर टीम में शामिल किया गया है। वहीं अनुभवी रविंद्र जडेजा टीम में वापसी कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 26 नवंबर को उन्होंने आखिरी टेस्ट मुकाबला खेला था। जसप्रीत बुमराह और साई सुदर्शन फिटनेस क्लियरेंस के बाद ही मुकाबला खेलने के लिए उपलब्ध हो सकेंगे। वहीं वॉशिंगटन सुंदर पहले टेस्ट मैच में उपलब्ध नहीं रहेंगे।
1: और अब बात शतरंज पर। भारत के मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश फिडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में चैलेंजर जावोखीर सिंदारोव का सामना करेंगे। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा जारी। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र, बिहार और असम में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित विधानसभा चुनावों को अवैध कब्जे को छिपाने की कवायद बताया। जून में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीने के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंचा। ओडिशा में मूसलाधार बारिश के कारण प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का कहर। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और खेलों में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए

0: तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त हो जाने चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था।
1: You must compliment Prime Minister Modi and this government.
2: कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय देना चाहिए क्योंकि हमारी सरकार ने उस अधूरे कार्य को पूरा किया है जिसे पहले ही पूरा किया जाना चाहिए था। वर्ष 2024 में ये विधेयक विद्यार्थियों को ये विश्वास दिलाने के उद्देश्य से लाया गया था कि उनका भविष्य सुरक्षित है। 2024 के अधिनियम के क्रियान्वयन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर अब ये संशोधन लाया जा रहा है ताकि कानून को और अधिक सख्त बनाया जा सके तथा शीघ्र न्याय सुनिश्चित किया जा सके।
1: To ensure speedy justice.
0: कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं होने और वास्तविक सुधार नहीं करने का आरोप लगाया।
3: इस संशोधन वाले बिल का विवरण पढ़ के साफ साफ पता चल जाता है कि ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
0: समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक पर चिंता व्यक्त की। तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी निष्पक्ष परीक्षा का हकदार है। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी के लावू श्रीकृष्ण देवरायलू ने कहा कि सरकार ने पेपर लीक मामले को स्वीकार कर लिया है और आवश्यक बदलाव करने को तैयार है। शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने कहा कि ये ऐतिहासिक विधेयक देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, आकांक्षाओं और प्रयासों को सम्मान देगा।
4: मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरी सरकार ताकत के साथ खड़ी है। पेपर लीक की घटनाओं के तुरंत बाद हमारी सरकार ने रिकॉर्ड समय में ऐसे कड़े कानून बनाए जिससे आने वाले समय में पेपर लीक जैसी घटनाएं ना हो। हमारा लक्ष्य सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं है बल्कि बच्चों का कीमती साल बचाना भी है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित हुई।
5: पिछले 6 दिनों से बार बार सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद आज लोकसभा में भोजनावकाश के बाद कामकाज सुचारू रूप से चला। पहली बार कार्यवाही स्थगित होने के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। इससे पहले जब सुबह 11 बजे दोनों सदनों की बैठक शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। जब राज्यसभा की बैठक पुनः शुरू हुई तो एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। वहीं विपक्षी सदस्यों का विरोध जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। इस बीच महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने के आदेश दिए गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया है कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। एफआईआर वापस लेने की प्रक्रिया संबंधित अदालतों की अनुमति से शुरू की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या

0: बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का प्रयास बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही।
1: हमने पाक अधिकृत कश्मीर में सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है। जम्मू कश्मीर लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। वहां चल रहे लीपापोती वाले इलेक्शन पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहाँ के लोगों का मानव अधिकार का हनन कुछ छिपाने का प्रयास है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि ओडिशा बंदरगाह पर MV AGN रागनार जहाज पर हुए हमले में लापता हुए भारतीयों की तलाश जारी है।
1: ओडिशा बंदरगाह के पास में जो हुई थी उसमें 4 भारतीय नागरिक उस पे सवार थे। 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और 2 अभी भी लापता हैं। छानबीन चल रही है उनके लिए और वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं उनसे हम लोग संपर्क में हैं। साथ ही साथ 2 भारतीय जो लापता हैं उनके परिवारजनों के साथ में भी हम लोग संपर्क साधा है।
0: इस वर्ष जून महीने में भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीनों के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंच गया। आज जारी आंकड़ों के अनुसार जून महीने में विनिर्माण क्षेत्र में 7.8 जबकि बिजली और गैस आपूर्ति क्षेत्र में 10.6% की वृद्धि हुई। जलापूर्ति, सीवरेज और अपशिष्ट प्रबंधन में 6.1 और खनन तथा उत्खनन क्षेत्र में अपेक्षाकृत धीमी गति से 1% की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने इस वर्ष 1 अगस्त से 30 नवंबर तक देश भर के चीनी व्यापारियों पर भंडारण सीमा लागू करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकना तथा उचित मूल्य पर चीनी की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करना है। सभी व्यापारियों को अपने पास उपलब्ध चीनी के भंडार की घोषणा करनी होगी और खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर प्रत्येक सप्ताह स्टॉक को अपडेट करना होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल के आज 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने 5 स्मृति पुस्तकों का विमोचन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस उच्च संवैधानिक पद को महज सम्मान नहीं बल्कि एक गहन जिम्मेदारी बताया।
2: राज्यों की यात्राओं के दौरान युवाओं से मिलती हूँ तो मैं उन्हें प्रेरित करती हूँ कि वे नैतिक मूल्यों से जुड़े रहें और देश एवं समाज की उन्नति के लिए कार्य करें। महिलाओं से मेरा आग्रह होता है कि वे स्वावलंबी बने और आत्मविश्वास के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। जनजातीय समुदाय के लोगों से संवाद करते समय अनुरोध करती हूँ कि वे अपनी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करें।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ओडिशा में लगातार मानसूनी बारिश के कारण राज्य की प्रमुख नदियों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: उड़ीसा में लगातार हो रही मानसून की बारिश की वजह से प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है जिससे बाढ़ का संकट और गहराता जा रहा है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उड़ीसा के सुंदरगढ़, संबलपुर, बरगढ़ और झारसुगुड़ा जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है जबकि 13 अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट वाले जिलों में बचाव और आपातकालीन तैयारियां के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की टीमें तैनात की गई है। राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार,
0: भुवनेश्वर। केरल के 10 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
4: केरल में भारी वर्षा की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग ने राज्य के 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इससे पहले केवल 6 जिलों में येलो अलर्ट लागू था लेकिन शाम तक विभाग ने 4 और जिलों को अलर्ट की सूची में शामिल कर दिया है। विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। ऐसे में लोगों से सतर्क रहने तथा जारी परामर्श का पालन करने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम्पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए इस महीने की 31 तारीख तक मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। दिल्ली सरकार ने आज महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से 2500 रुपया प्रति माह की वित्तीय

0: सहायता प्रदान की जाएगी। योजना का पोर्टल अगले महीने की पहली तारीख से पंजीकरण के लिए खोला जाएगा। भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इससे रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। कैनोला की खेप ले जा रही 40 वैगनों की इस रेलगाड़ी ने संशोधित भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत अपनी यात्रा पूरी की। और अब खेल खबरें। निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीत लिया है। पदक तालिका में भारत एक स्वर्ण, एक रजत और दो कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में धावक विशाल टीके और तैराक श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। श्रीहरि नटराज ने 100 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में 13वें स्थान पर रहते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। सेमीफाइनल देर रात खेला जाएगा। वहीं धावक विशाल टीके ने पुरुषों की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में पदक की उम्मीद बनाए रखी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आज श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी। रविंद्र जडेजा की टीम में वापसी हुई है। श्रृंखला का पहला मुकाबला 15 से 19 अगस्त जबकि दूसरा 23 से 27 अगस्त के बीच खेला जाएगा। आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने एम्स नई दिल्ली और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज के सहयोग से स्ट्रोक के बाद होने वाले वाचाघात एफेसिया के लिए मेलोडिक इंटोनेशन थेरेपी का पहला हिंदी संस्करण विकसित किया है। ये एक संगीत आधारित उपचार है जो स्ट्रोक के बाद ठीक हुए लोगों को दोबारा बोलने की स्थिति में लाने में मदद करता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा जारी। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र, बिहार और असम में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित विधानसभा चुनावों को अवैध कब्जे को छिपाने की कवायद बताया। जून में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीने के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंचा। और खेलों में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अनुजा कुमार विद न्यूज एट 9। The headlines. Lok Sabha discussing bill proposing stricter punishment and setting up of fast-track courts in paper leak cases. Government says new legislation reflects resolve to protect students' future. Opposition stresses on wider reforms. Supreme Court orders release of minor students arrested during protests on NEET paper leak issue. Maharashtra, Bihar and Assam orders withdrawal of cases against students. 20 people killed in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir in firing on protesters. India terms so-called assembly polls in POJK a cosmetic exercise to camouflage illegal occupation. Industrial output growth hits 23-month high of 7.3% in June. Odisha faces flood fury as heavy rains swell major rivers. Red alert for extremely heavy rainfall over Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Vidarbha region for next 2 days. And at ISSF Shooting World Cup, Indian pair of Sonam Uttam Maskar and Himanshu Dhillon clinch bronze medal in 10-meter air rifle mixed team event. And now the news in detail. The Lok Sabha is holding discussion on the bill proposing stricter punishment and setting up of fast-track courts in paper leak cases. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. To ensure the expeditious disposal of cases, the legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track

0: 12 major rivers. Red alert for extremely heavy rainfall over Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Vidarbha region for next 2 days. At ISSF Shooting World Cup, Indian pair of Sonam Uttam Maskar and Himanshu Dhillon clinch bronze medal in 10-meter air rifle mixed team event. That is all in the news at 9. Good night.
1: यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात के 9:15 हुए हैं। आइए सुने कार्यक्रम गोरबंद।

राम राम साह। गोरबंद सुनिया सगले बेलिया ने आज रोहितास सर मारी घनी घनी राम राम। बेलियों लुआ शुलारो छुटा हर मसा आपा आषाढ़ नेड़ो लियो हर अबार आषाढ़ रा दिन दोइच हर फूटरो सावण। यूं आषाढ़ में भी खूब बिरखा हो रही है हर चोखो मौसम है पून चाले ठंडी पण कई ठोड़ भाईड़ा कह उमस हो रही है। तो भाई देखो आ उमस जी की है ना आ बिरखान बुलावे इं तो बिरखा हुए पछे इं बिरखाऊ दापी कोनी जमी ए दापे कोनी आपा जण की है का उमस है ना। सावण रो मीनो फूटरो जासी सावरो करे सा अरे चोखो मे बरसे गो चोखा हिंडा हिंड सी तीजण्या है ना। कै बड़कत तड़कत बीजड़ीर धड़कत तड़कत गाज कोप करी आवे घटा आ कुण पर आज आ की पर आवे है। जना दूसरी जी की सखी है नी बाकी बोले कै गाज नगाड़ो चमक खग अर बरसत बाण तड़ाक घटा नहीं आ कामरी आवे फौज लड़ाक आ कामरी फौज ऐसा इच्छा फड़ी भूत हुए सगड़ मिनखारी ई खतर की है कै वो सावण रो मीनो बनियो ऐसा अडीका सावण ने जिया थे अडीको जिया मे अडीका जिया सारी दुनिया अडीका धरती अडीके सा कै सावण आवे अर खूब बरसे कै पड़ड़ पड़ड़ बूंदा पड़े अर गड़ड़ गड़ड़ घन गाज अर कड़क कड़क बीजड़ करे अर धड़ड़ धड़ड़ धर आज आ बात है सा।

वसा सावण आयो रे, के कंता लुबदी आए घर काई करे विदेश। कंता लुबदी आए घर अर काई करे विदेश, लाखीणो जोबन गयो लाओ किसो लयेस। ओ जोबन जावे लाखीणो, तू क्या चार टका लारे फिरतो फिरे, सावण आ गयो। आ बाते सा कागदिया बांचू की दौलतपरा गंगानगर सिंह शोलाल बी निवाड़, मंजू मोहित हेमंत बी निवाड़, सूरतगढ़ सिंह भूपेंद्र मिशन, प्रभजोत मिशन और बीबी जानविका, लोकू कॉलोनी लोहारू सिंह बिल्लू सिंह चिंडालिया, लक्ष्मी देवी न्यारिका, सुरेंद्र कुमार बरखा, युगेंद्र कुमार नरेंद्र कुमार चिंडालिया, रघुनाथपरा गंगानगर सिंह लालगिरी गोस्वामी रो कागदियों मिलियो ऐसा, साथ है हेमलता हीना हर्षित और खुशी गोस्वामी, चकपंद्रा पी एस सिंह सरबजीत सिंह जोसन, सरबजीत कौर जोसन, गुरमन सिंह जोसन, आदर्श पाल जोसन मेलबर्न, रोबिन सिंह जोसन बेकुनूर वाजीवा, डब्बाली सिंह अपने जेके बकोलिया, सुनीता संजय अनिल गसागे मीनू बकोलिया, एर डब्बाली सिंह बसंत सिंह चंद राजकुमार सुनीता कुलदीप गांधी रो कागद मिले सा, आप रो घणो घणो धन्यवाद है कि आप कागद मांडियो अपने कार्यक्रम ताई। हो देखो सा कह राम राम सा लाडलो कार्यक्रम गोरबंद माने घणो दाय आवे सा, तारीख 14 जुलाई रो गोरबंद कार्यक्रम सुनियो खूब दाय आयो, कहानी भी पसंद आई, ए विकास पारिक जी ने मोकली मोकली धन्यवाद करा, और लाडले मंगलवार ने फोन रो कार्यक्रम सुनियो सा वो भी खूब दाय आयो, श्रीपाल भाई ने मोकली मोकली धन्यवाद है, घना घना रंग है, सगड़ा से विनती करूँ सा कि बरसात रो मौसम है तो सगड़ा ने 5-6 पौधा जरूर लगावे, बारी देखभाल करे रुखाड़ी करे, रुतास रो कार्यक्रम सुन लाग रहा माने चोखो पसंद आवे। बात मांडी है कवाई 12 राजस्थान सिंह सतीश श्रीवास्तव, एर यारे घर सिंह प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी हर्षिता एर अभिषेक श्रीवास्तव वाजी वाह, बहुत बहुत धन्यवाद है आपने। मैसूर कर्नाटक सिंह आपा ने सुन लाग रहा है सुमन जोशी, मनोज जोशी, पलक नयन जोशी, काजल। बेंगलुर कर्नाटक शू निरंजन ओजा, नेहा ओजा, चीकू ओजा। अर्जन सर से प्रोग्राम सुन ला रहे संदीप ओजा, ममता ओजा, संजय ओजा, ज्योति गजानन, नीतू वंश, पार्थ। अरे गंगानगर में प्रोग्राम सुन रहे पवन कुमार शर्मा, भावना, भास्कर, अंजलि, ज्योति, आरती, स्वाति, प्रभात और मानवी वासा। 16 MOD शू मंडी गुलवाड़ा लागे आंगे, राजपाल रामस्वरूप, बलवीर हरि सिंह, राहुल अभिजीत एर सुनील सिहाग। कह प्रोग्राम फूट रो लागे सा माने अबार जी को गीत चलायो थे, गीत बड़ो फूट रो है पण की दबा दुबी सी करो गीत, सावण मोड़ो आयो नी जण की दबियो पड़ियो है, 12 महीना रुखाणा एर सावण आवे जणा ए गीतड़ा बाजे, जण की माड़ मोठा ऊंचा नीचा तो थे शाणा हो हुई जैसा है ना। आ बात ऐसा प्रोग्राम सुन लाग रहे ऐसा उम्मेदाराम जी, और साथ है सुरेश कुमार।

सुरतेश गोदारार मदन चौधरी के मारी हाजरी थे मांड लियो सा होडू शू आपने मांडिया करे सा यार प्रोग्राम के बहुत फूट लगे बिल्कुल सा आप रे ताणी जो चाले प्रोग्राम आप लोग आ जाओ यार उनली बूनली चार बात उजे जना प्रोग्राम फूट उजे 10 जेड श्यू लालचंद्र शांति देवी 7 जेड श्यू ओम ओजा कांता राजलक्ष्मी शक्ति और साथ है गांव 10 जेड श्यू भानी राम जी बिशन किशन जी दीपू राकेश रोहानी और कल्लड़ खेड़ा पंजाब श्यू लालचंद संतोष ओजा ईया कमलेश रत्नेश भावित आनव दिवाकर का आपरी वाज माने मीठी लागे सा प्रोग्राम घणो फूट लागे हैर गांव फेफाणा श्यू लालचंद ओजा ओम ओजा राजेंद्र दिलीप प्रदीप ब्रजमोहन और सगड़ा मिल गए प्रोग्राम सुना रेयांश भी सुन लाग रही है प्रोग्राम और गंगानगर श्यू ललिता ओजा इंदु रुचि सुनीता जयदीप सिद्धार्थ

लाल लिखे कार्यक्रम गोरबंद पेशकर्ता ने गणी गणी राम राम सा एर माने प्रोग्राम घणो चोखो लागे एर कोई सीमा मिश्रा को गीत थे सुना दियो। बिल्कुल सा कोशिश अपनी पूरी है कि थारी पसंद जी की है नी बात थार ताई पुगावा एर कई बार की है वह कि भाई ऊक चूक हो भी जे है ना तो हुजे तो हुजे गीतड़ा फूटरा मिल सी थन। ओ देखो सा के गोरबंद कार्यक्रम पेश करता आपकी मीठी वाणी छू सगलांगो आनंद देने वाला हिवड़े में बस नाल बरुतास ने सगले श्रोतावा ने मोकली मोकली रामा श्यामा अपनी माइड भाषा रो मान सम्मान लेर गोरबंद कार्यक्रम बहुत फूटरो पेश करे जिको माने जिसोरो हुए के मान बड़ाई छोड़ देर मत कर झूठी ऐश कितरा जुग में जीवना सदा न राजा देश। क्या बात है सेवा कर जे समाज रीर माता पिता सुजात जन्म सफल हुई जावे जग में होवे बात अर नब में उमड़िया बादलार मन हरख्यो मनड़ो हरख्यो आज बरसो मन भर बादली राखे धरती लाज। क्या बात है सादुल शहर शिव राम कुमार रिवार्ड अर चंद्रकला रिवार्ड इतनी फूटरी बात मांडे क्या जीव सोरो जैसा अपनी मेल भी देखो चालू ऐसा अपना कई बेली साथी मेल करे सनेसा करे बनकी है कि एक ही मार्ग लेनो सा है ना क्योंकि अलग अलग मार्ग पकड़ लियो नी तो क्या है कि मंजिल तक पहुंचे को नहीं आदमी चार पगीने में लिया चार पगीने में लिया पाछो बीच गया प्रिया जे एक मार्ग ले लियो सोरा रेशो। आ बात है सा दतार सिंह जीरो अपन मेल मिलियो है पेल पोत भाई दतार सिंह गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से साथ है संगीता कंवर तुषार सिंह रिंकी शेखावत वाह जी वाह। भंवर भाई अपन मेल करिए सा लखवाड़ी हेड से मास्टर भंवरलाल कृष्णा सौरभ विशाल राजपाला राजबाला ममता नब्या लक्षिता मोहम्मद रफीक महावीर लोरा मुकनाराम लाइव सुन ला रहे सावण की बधाई। बिल्कुल सा बधाई आपने चोखा अपने सावण को है ना मौसम है तो इंगो इंगो पूरा आनंद लेनो ऐसा ओ मीनो जी को है नी ए नन हो करके अपन इस्तेमाल करनो है ना। हाँ बात ऐसा सावण तो क्या है कि भागण आन मिले थे भी भौर जी कोई हिंडो आंडो हिंड लिया आपने चोखो कोई कीकर हुआ है चोखो कोई हुआ ना भी पर मांडनो है चंगो भजन खस है थार में गीत सुनो थे।

वर्षा चौमासो लाग्यो होइन, चौमासो सात चार महिनाहरू बगत देव उठनी ग्यारसमै देव जागेगा, जिते त यहाँ पनि माडा मिणिया फेर्न छ भगवान् र ल्याउनु नाम कायन सुधार निसा। आगोतर तो दिखे है ना मिनख जुणी मिलिए है ना, सोई किंचाल है राग रंग है तो गीतर भजन भी है ना। सकड़ी देखो तो ताकड़ी रो है ना पालड़ो एन बराबर राखनो, एक खानी नहीं झुकनो घणो, भक्ति खानी तो झुको भले ही पण शाणा उथे कह राम राम सा। हर आने वाली सावण तीज की आगूंच बधाई, वारे वा लाला खूब उंतावल करी सावण तो आवण दे। नगराना स्यू लालचंद नाथ दुलनाथ कछावा प्रेम सोन मंजू प्रदीप अमन अंकुश राहुल अर पोतो पीयूष नाथ अर सागे बख्ता वाली गंगानगर श्यू पवन जी रेणु दोयतो दीपक अर योगेश नाथ अर रेणु कवे काज रुतास काका रा सगड़ा प्रोग्राम मैं सुना अर आज तो चौमासो सुनाओ काका, तो चौमासो आपने पेश कर दी ने उसा आपने दाय आयो है सगड़ा ने आ उम्मीद हूँ रखूँ। पायला कला जिला बालोतरा राजस्थान श्यू मोहन लाल प्रजापत साहब आप मेल कर दीनी है साहब रो घणो घणो धनबाद है। आ मेल मिले बकानी खुर्द पोस्ट आमली कला भवानी मंडी झालावाड़ राजस्थान श्यू क्लासिक रेडियो श्रोता संघ है बठे राजेश कुमार मेहरा नंद किशोर विनोद अर्जन दुर्गा शंकर सिकंदर राहुल चंदू देवराज लक्ष्य और सगड़ा गाँव का प्रोग्राम सुन लाग रहे। वाह जी वाह। बस स्टैंड के नेड़े बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका हूँ भाई रमन वर्मा अमन वर्मा दिव्यांश वर्मा डॉक्टर मदन लाल आपने मेल करी ऐसा एर के कोई प्रोग्राम में मान शामिल कर लियो सा, बिल्कुल सा शामिल आपने क्यों कौन करा कर सा। गांव दुलपुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान मोहम्मद सलमान इरफान इसरार एर नरगिस खातून साहब रो अपन मेल मिलियो आप रो घणो घणो धन्यवाद करा। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से मेल करियो है। सीमा मिश्रा रो गीत मांगे है तो आपने सुनाई दियो। बैरवाला कला टिब्बी शू राजेंद्र मोयल जमुना मोयल जयपाल मोयल पूजा आरती एर कुलदीप मोयल क्या गोरबंद कार्यक्रम सुन ला रहे सा माने पसंद आवे था ने ई खातर बहुत बहुत धन्यवाद है। डाबकी रोड़ा कोला से सुशीला देवी मंदूरकर ए मंदूरकर साहब देखो परने भी आई संदेश भी करियो है ना। सदानंद मंदूरकर कुमार गौरव मंदूरकर उसके ना करियो है कई बार के है के मेरो भी चेतो थंठा है ईशो ही है आजकल है ना। गांव तंगोरी जिला मोहाली पंजाब सिंह गुरप्रीत सिंह तंगोरी जसबीर कौर महिकप्रीत कौर ए सहीजप्रीत सिंह वाह जी वाह मोहाली वाला बेली अच्छा फूटर नाम है भाई। मंगल जनागल साहब को मेल मिला सा 5 MD पत्रोड़ा शू साथ है श्रीमती रोशनी अंकुर इंदु ए डॉक्टर सुनील जनागल का गोरबंद कार्यक्रम सुन लाई रहा सा बहुत बढ़िया लागे और सावण को गीत थे फूटरो चलायो एक खातर धन्यवाद है। धन्यवाद आपने साहब का आप कार्यक्रम सुन लाग रहा हो और आपने पसंद आ रही है। धोरे कर ली डाणी अब तो डाणी सुरंगी हो रही होली का कोनी बिस्नाराम जी बिस्नाराम बलियान बिदामी देवी बरवड़ सुनील पूजा सुरेश सुभाष एर श्याम सुंदर भानु का कार्यक्रम पेश करता रुतास ने मारा घना घना राम राम। रुतास जी आपरी आवाज में साउंड में कोयल बोले नहीं बीमें बोलो थे।

वाह जी वाह, के बात करिए ऐसा है। मैं तो कागला हाँ कोयल क्या गया, थे सुनो थे सरो जन किए गए इति बात ऐसा, और तो थाना के कहाँ थे शाना हो। आपने संदेशा अपना बेली साथी आपने मांडे ऐसा, तो बस संदेशा मु थाना मैं बताऊँ कि कुण कुण आप संदेश आपने तई भेजो ऐसा। ये देखो सा, आपने खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल एर आंगा पापा जी है नानक चंद मल्होत्रा, आप मेल करिए ऐसा कार्यक्रम में, आप रो घणों घणों में धन्यवाद करा एर कार्यक्रम सुनता रहो सा एर ऊक चूक तो करियो मतिर, एक संदेश वो भेज दियो जन कार्यक्रम यहाँ को नहीं कह भाई सुना ना, सुनो कार्यक्रम ने की थाने है ना। बागपत यूपी से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया अपार, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी निशा तुलसी दिशा, भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखीलाल वर्मा, सिद्धार्थनगर दरियापुर भाबली से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप और अशोक को अपन है संदेशों मिले ऐसा। जोसन साहब वो संदेशों आप शामिल कर ही लेने हो और वो देखो सात तहसील भादरा अनूप शहर शू गजानन सारस्वत, डॉक्टर ताराचंद, सोनू पवन कुमार, साहिल राघव, अशोक कुमार, उपेश कुमार, मुरारीलाल शर्मा, ममता, मीतू, कीनू, मदनलाल शर्मा, फूसा राम एर महावीर लौरा लिखे गोरबंद पेश करने वाला मारे राम राम। एक हंसणी ऐसा कह धनी लुगाई के बीच में टाबरियो पूछे कह बच्चे ने के देने लाई रही, तो लुगाई कह दांत जल्दी निकलूंगी दवाई देने लाई रही, तो घरालो कह दो ढक्कन दादी ने भी दे दी बिंगा दांत निकल जी सी। वाह जी वाह की बात है, देखो सा कह दांत है ना भगत सर निकल डा ठीक है, नहीं तो क्या है कह थे श्याणा। अलीका डब्बाली से बसंत सिंह चंद, राजकुमार और सुनीता, कुलदीप गांधी, गांव खारिया जिला सिरसा हरियाणा, प्रताप जिनागल, इंदिरा, मुकेश, दिनेश, अंशु, बलदेव कटारिया, तुलसी मस्किन साहब अपन मेल करिए सा, बिना मस्किन के सागे, आशीष राजा, चेतन मस्किन, मेघा राहुल, रचित खुराना और केशु रिदान खुराना, हीरावाड़ी फाजिलका पंजाब, सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, सरवण रेणवा, हंसराज भाटिया, मणिराम, रणजीत राम किरोड़ीवाल, सुरेंद्र भादु आई करी ऐसा मेल के लारलो प्रोग्राम जी को फोन पर सुनो नी वो श्रीपाल जी पेश करियो मन फूट लागो सा, बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा थन फूट लागो। तो सूरतगढ़ से कन्हैया लाल टेलर, श्रवण कुमार, पवन कुमार, लेखराज, सुरजीत सिंह, रवि कुमार के सागे, कुंदन लाल शाक्य अपन मेल करिए कि राजस्थानी लोकगीत सुना दियो, राजस्थानी धमेड़ी है अपने कन तो और कोई दूजी तो बात ही को नहीं है ना। आ बात है गीत थान सुना शाम फूट रोसो अबार के है कि कोई अपना बेली साथी जी का संदेश भेज रहा है, तो वे संदेश भी पूगना पूगता करना बड़ा जरूरी है सा, क्योंकि अपना बेली अड़िक है सा के कार्यक्रम जी को है ना। आ बात है सा कृष्ण डाबी भाई प्रोग्राम सुन लाग रहा है सा यार फूट लागे आपने प्रोग्राम, तो कह जी प्रोग्राम के अंदर माने शामिल थे कर लिए।

नहीं लुगाई के बीच में टाबरियो पूछे के बच्चे ने के देन लाई रही तो लुगाई के दांत जल्दी निकलने की दवाई देन लाई रही तो घर वालों के दो ढक्कन दादी ने भी दे दी बिंगा दांत निकल जी वाह की बात है। देखो सा के दांत है ना भगत सर निकल डा ठीक है नहीं तो क्या है के थे श्याणा अली का डब्बाली सिंह बसंत सिंह चंद राजकुमार और सुनीता कुलदीप गांधी गांव खारिया जिला सिरसा हरियाणा प्रताप जिनागल इंदिरा मुकेश दिनेश अंशु बलदेव कटारिया तुलसी मस्किन साहब अपन मेल करिए सा बिना मस्किन के सागे आशीष राजा चेतन मस्किन मेघा राहुल रचित खुराना और केशु रिदान खुराना हीरावाड़ी फाजिल का पंजाबू सुभाष गोदारा बिमला गोदारा इंदु पार्वती हिमांशु गोदारा सरवण रेणवा हंसराज भाटिया मनीराम रणजीत राम किरोड़ीवाल सुरेंद्र भादु आई करिए सा मेल के लारलो प्रोग्राम जी को फोन पर सुनो नहीं वो श्रीपाल जी पेश करियो मन फूट लागो सा बहुत बहुत धन्यवाद है सा थन फूट लागो तो सूरतगढ़ सिंह कन्हैया लाल टेलर श्रवण कुमार पवन कुमार लेखराज सुरजीत सिंह और रवि कुमार के सागे कुंदन लाल शाक्य अपन मेल करिए कि राजस्थानी लोकगीत सुना दियो राजस्थानी धमेड़ी है अपने कन तो और कोई दूजी तो बात ही को नहीं है ना आ बात है गीत थान सुना शाम फूट रोसो अब आर किया है कि कोई अपना बेली साथी जिका संदेश भेज रहा है तो वे संदेश भी पूगना पूगता करना बड़ा जरूरी है सा क्योंकि अपना बेली अड़िक है सा के कार्यक्रम जी को है ना आ बात है सा कृष्ण डाबी भाई प्रोग्राम सुन लाग रहा है सा यार फूट लागे आपने प्रोग्राम तो कह जी प्रोग्राम के अंदर माने शामिल थे कर लियो

दीजे घरवाली दीजे खींचा ताणी मत दीजे, क्या बात है सा। घर दीजे घरवाली दीजे खींचा ताणी मत दीजे, और जून बड़दरी दे दीजे तेली री घाणी मत दीजे।

कै डूंगरिया हरिया हुया अर पड़ियो जड़ भर पंथ, डूंगरिया हरिया हुया अर पड़ियो जड़ भर पंथ, बरसाले मत बिछड़ो कामण आवे कंथ। ई रुत में नहीं बिछड़नो सा आ बात है। चंडीगढ़ सिटी सु सतीश अनेजार विमला अनेजा अपन मिल कर ऐसा लिखे बात के हाथी दीजिए घोड़ा दीजिए गदा गदेड़ी मत दीजिए, सुगरारी संगत दे दीजिए नशा नशेड़ी मत दीजिए अर

नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरव ज्योति रानी गुरमत कौर मनु और आंगा बेली के एनी सॉन्ग अंदर माने शामिल कर लियो। बिल्कुल सा एनी सॉन्ग में ही होते मदन बरोड़ मंजू बाला प्रीति बरोड़ दिव्या हितेश कामना लुभानी आरती अजय पेंटर मुकेश पेंटर राजू पेंटर माऊ बापू हनुमान बरोड़ और इमरती देवी बरबोड़। क्या बात है सा सीमा मिश्रा जी को गीत के सुनियो में फूट लागे। धन्यवाद है सा आपने घणो घणो। सुरेश खुराना पप्पी किरण खुराना लव्या आरव मेगा आशीष अनुज छोटू और एस के पप्पी अभी प्रोग्राम सुन लागे सा MLB रोड ग्वालियर शू अपन मेल करें आप रो घणो घणो धन्यवाद है सा। वो देखो सा मेल मिले आभार कोका भिलाई उत्तम सिंह जंघेल मोरस अनिल अजीत आयुष और नंदनी साथ है धमदा गांव सुखरी कला श्यू अमित जंगेल शकुन आरुषि ओशिका आदित्य और अंजलि। बहुत बहुत धन्यवाद है सा आपने कि आप कार्यक्रम सुनो और पछ मेल अपन पुख तो करो। जवाहर नगर दुरक्षु आरसी कामड़े करुणा मीना अश्वनी और विपुल को अपन मेल मिले सा। मेल मिले अपन मुकेश भाई को मुकेश कश्यप शीतल कश्यप सोनू सुरेश राजपाल पंकज काजल सीमा मानवी तन्वी लक्ष्य सोनी मोनी ऋतिक और बलवीर सिंह गांवांगो सागी ऐसा गांव दुलपुर यूपी सू जिलो लागे मुरादाबाद। क्या बात है। वो देखो सा रामनिवास भाई मेल करे रामनिवास सुथार गुरुजी जी मौसम और गोरबंद कार्यक्रम घणो अच्छो लागे दिन दूनी रात चोगनी तरक्की हुए नोर सू रामनिवास सुथार आपा नाम मेल करिए। नोर रा बेली अपना कई ऐसा प्रोग्राम में थोड़ा सा लेट है लेकिन आज इसी जिया देखो वो आयो आबार कह सावण सू हरियाणो धर्म रिम झिम बरसे मे भोला नात्री भक्ति सू मिट जावे मन रो कलेश। क्या बात है। जिला हनुमानगढ़ तहसील नोर सू सुरेंद्र सुथारी लाडे सर सुचित्रा रू मुजरो बड़े स्वीकार करो राम राम सा मारे साथ है गोरबंद रो आनंद लेवन सारू बापू सा माँ भाई हिमांशु है गोरबंद एर थार गोरबंद पेश करण रो ढप माने घणो दाय आवे सा सनातन धर्म पाक महीनो सावण लागे सा सावण रो घणो घणो रंग। बिल्कुल सा सावण में तो भगवान शंकर रो नाम लेवो है ना आ बात है। करणपुर शु भाई पवन कटारिया रो मेल मिला है शालू कटारिया समीर कटारिया ठीक है सीमा मिश्रा की आवाज़ में गीत तो कह सुनाओ सुना दियो ना सर गीत आप थोड़ा सो लेट मन लगे सुन लागिया हो प्रोग्राम क्या मीठी मीठी बातांग बीचे सावण को गीत माने झूमन खातर मजबूर कर दियो। बिल्कुल सा पवन भाई आप प्रोग्राम सुन लाग रहे हो आपने घणों घणों में धन्यवाद करा। रणवीर गोस्वामी साहब मंडी गोलवाड़ा श्यू शिशपाल गोस्वामी राममूर्ति महावीर रणवीर और ईशिका गोस्वामी गैस आगे मेल करे सा साथ है आगे पन्नीवाड़ी सू श्रवण कुमार नाई कह आणत सावण री शुभकामना प्रोग्राम री घणी उड़ीक रहे सा। बिल्कुल सा प्रोग्राम आपरी खिदमत में पेश है एर सावण आई गयो तो सावण रो भी स्वागत करो आपरे तरीका सू जिया भी थे कर सको नाचो कूदो है बिरखाम नहाओ बिरखाम नहाणो चाहिए कोई अड़ाई धड़ाई हो जाए ना बे फूट जाए सगड़ी एर शरीर आ जाए यूं कंचन सो के बात करो थे नालिया आपका बरसा। कृष्ण कुमार डाबी भूपत कुमार डाबी अपन मेल करे सा लिखा आकाशवाणी सूरतगढ़ सू गोरबंद कार्यक्रम पेश करता भाजुतास ने मारे हिवड़ा रा हेंत सू घना घना राम राम और घनी खम्मा आप रो कार्यक्रम गोरबंद जी को है मांडन जी कला है मनगणी चोखी लागे सा राजस्थानी भाषा में जदा आपो प्रोग्राम देवो पूरे घर सगड़े परिवार आपरी मीठी बोली राजस्थानी लोकगीतार भजनारो लेवे आनंद रेडियो हामी बैठ जावे घनी उड़ीक रहे सा प्रोग्राम रही घणो घणो धन्यवाद है साहब आपने कि आप कार्यक्रम सुनो और भी शू लगाव करो। गांव गोविंदगढ़ माजीवाड़ा करणपुर शू राजू टूटेजा खुशदिल उर्मिला टूटेजा गुड्डू जीनू मन्नू शिव सेठी करणपुरी एर पाल मिस्त्री करणपुरी इस्माइल टूटेजर पवन गुज्जर गांव 34 STG पीड़ी बंगाशू बिशनलाल मेरा अमन समीर रितु चाल कला पंजाब सिंह अमरजीत बंगा परमिंदर बंगा राजा बंगा कुलविंदर कौर अंबा चाल क्या गोरबंद प्रोग्राम सुन ला रहा सा आज की शुरुआत में थे बात करी नहीं बहमान अच्छी लगी सीमा मिश्रा गीतड़ो है वो भी मन फूट लागो धन्यवाद सा। राइस नगर सिंह सोन जांगीर मंजू जांगीर संजय सुनील शिवप्रकाश साहब राम श्यामी लिखा गोरबंद पेश करता मार राम राम सा गोरबंद कार्यक्रम पूरे परिवार के सागर सुना माइड भाषा रो कार्यक्रम माने बहुत फूट लागे सा और लालो प्रोग्राम श्रीपाल भाई दियो वो भी मन सुनो लागियो हर मंगलवार ने उड़ीक करा सा प्रोग्राम की। बिल्कुल सा उड़ीक तो देखो थे भी करो प्रोग्राम री और मैं करा थारी उड़ीक है ना वो तो आपस री रो मिलो जुलो है सा सिस्टम अपनो कह एक भाई दूजे भाई ने है ना वो देखो सा जाधव साहब है आपने सुधाकर राजे जाधव देशमुख सागे प्रशांत राजे सचित प्रथमेश सर्वद प्रणाली

अनवी अर्शद एर आएंगी सारों मोटी खासियत है कि पांच सात तो मेल कर दिया एर जान की बाजी फिल्म को गाना सुनना चाहे मोहम्मद अजीज हो गाइडो प्रोग्राम सुनो थे जादव साहब थाने थापड़ सी भाई इन प्रोग्राम में जिका है सौदा दूसरा ही है राजस्थानी रा प्रोग्राम सुनया करो राजू मिगलानी भाई जी आपने प्रोग्राम सुने आई मेल करिए सा दुर्गा कॉलोनी हांसी छू राजू मिगलानी बबीता मिगलानी सुभाष योगी बब्बू और डब्बू के कोई भी लोकगीत में मन शामिल करियो बिल्कुल सा लोकगीत तैयार है आप सुनो।

0: लागर गिंडकड़ा मोटर पाछे कान्यो बोलो दूर
1: गोविंद सिंह जी गीत आप सुन लाई रहसा कानिया मान्य कुर ए मिल मिलैसा बलोल नगर सिंह हरी शहरी जगतार जेरी सुशील डेलू राकेश चारो लिखा गोरबंद घणो फूट लागे सा राजस्थानी बात सारी बात ही जोर की लागे बिल्कुल सा के रुतास भैरा रंगी न्यारा है। क्या बात है हरीश भाई।
0: जोधपुर ए जी जोधपुर का कबूतर अर भाई उड़ता रे फुर फुर र के मोटर बोली गुर छोरा बोलिया हुर लागर गिंडकड़ा मोटर पाछे कान्यो बोलियो दूर र के कान्या मने मने।
1: गोविंद सिंह जी गीत आप सुन लाई रसा कानिया मान्य कुर ए मिल मिलैसा बलोल नगर सिंह हरी शहरी जगतार जेरी सुशील डेलू राकेश चारो लिखे गोरबंद घणो फूट लागे सा राजस्थानी बात सारी बात ही जोर की लागे बिल्कुल सा के रुतास भैरा रंगी न्यारा है। क्या बात है हरीश भाई।

0: बाल भाई रे कान्यो गयो रूस लारे कबूतर सूस कान्यो गयो रूस लारे कबूतर सूस ये जी मोर राम जी कर फैसलो नानी तो कंजूस रे भाई नानी बोली अर छोड़ दाल चर पर
1: वाह जी वाह नानी बोली अर अर छोड़ दाल चर पर गीतां की ओडेसा विक्रम कड़वासरा सचिन सतीश योगेश युद्धव कड़वासरा अर कुंदन जाकर गया सागर लीला दर्श्यामी किरसन मायल कीडू राम जुया हनुमान सारण अर सुनील पाईपाल शर्मा लिखा राम राम सा राजस्थानी भाषा री शान गोरबंद कार्यक्रम सुना बहुत अच्छो लागे मिसारा बेली एक जहाँ बेड़ा वो कार्यक्रम सुना आज पतराम नाथ हु गायडो गीत पतराम नाथ साहब गीत तो नहीं सुना पाया आप गाँव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ विक्रम भाई रो मेल

संदेश हुए सा बनवारीलाल जयपाल साहब मेल करे आपने कागज संदेशों मांडे सा बिमला सोनू ममता दीक्षा मोक्ष सुशांत विक्रम जयपाल पूनम चालियाग सागे कह सावण सुरंगो मोर्री बांध गोरबंद घणो फूट लागे सा एर सीमा मिश्रा की आवाज में गीत बिल्कुल सा सुना दियो गीत तो आपने ओम बगड़िया भाई गो संदेशो आयो सा बांडीवाड़ा फाजिल का पंजाब शू ओम बगड़िया क्रियांश रजत एर बीबी गरिमा एर ओ देखो सा गांव वे डाकघर निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा जसबीर सिंह अरोड़ा जतेंद्र कौर गुरप्रीत सिंह जनकपुरी सहारनपुर सू जोन डिकेस्ट्रो रोजी पर्ल एर विलिस डिकेस्ट्रो एर ओ देखो सा राजस्थानी लोक संगीत में से लोक संगीत लोक भजन में से कोई भी सुना दें आपका बहुत बहुत आभार है। बात मांडे संदीप मकड़ ज्योति मक्कड़ मन्नत मक्कड़ भरत मक्कड़ एर कमल सानी पिंगा वाला चौक गौरिया जालंधर सू एर डॉक्टर साहब आपा नोर सू संदेश भेजे डॉक्टर राकेश शर्मा चलता चलता एक टप्पो सुन लियो।

चौदह PSB सिंह, कुलदीप सिंह, राजविंदर कौर, संदीप सिंह, जसकरण सिंह, हरदीप सिंह, मनराज वीरक, रोबी संदेश वापन मिलियो ऐसा हबार तो बात अति करांगा सा हर आज रे कार्यक्रम सिंह आपरे बिली रुतास ने सीख दियो के पना तिहारे पीवरो कहो निक नाम कहीं के क्यों भूलो छो लाज में झुक झुक झूठे ही के नाम ना ले सियूं लाज सियूं साटकियो सहस्या कने बुलार कान में छाने से कैसा राम राम सा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गोरबंद। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। आइए सुने कार्यक्रम गीत गंगा।

कि अब क्या बताएं, टूटे हैं कितने कहां से हम, और खुद को समेटते हैं यहां से वहां से हम। लेकिन हमारी आंखों ने कुछ और कह दिया, कुछ और कहते रह गए अपनी जबां से हम। नमस्कार सभी सुनने वालों को, रोहिता शर्मा की ओर से। दोस्तों, गीत गंगा आकाशवाणी सूरतगढ़ से प्रसारित आप सभी का मनचाहा कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम आपके पसंद के उन गीतों पर आधारित है जो आपके दिल के नाजुक रगों को छूता है। गीत के बोल, संगीत और आवाज, जिन्हें एक शब्द में कहें तो मेलोडी कहते हैं, ये गाने हम कभी नहीं भूल पाएंगे। ये सदा ताज़ा रहेंगे और हमें ताजगी से भरते रहेंगे। प्यार का इजहार, विरह मिलन, मीठा सा दर्द, जिसे मोहब्बत भरे दिल इन गीतों के साथ और भी शिद्दत से महसूस करते हैं।

साहिर का गीत सुना आपने प्रोग्राम के आगाज में, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, रवि की मौसीकी, नील कमल फिल्म का नाम। सुनना चाहते इस गाने को दौलतपुरा से गंगानगर से शिवलाल बेनीवाल, मंजू मोहित हेमंत बेनीवाल, लोको कॉलोनी लोहारू से बिल्लू सिंह चिंडालिया, लक्ष्मी देवी निहारिका, सुरेंद्र कुमार बरखा, योगेंद्र नरेंद्र कुमार, रघुनाथपुरा से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना, हर्षित और खुशी, डब्बाली से जेके बोकोलिया, सुनीता, संजय, अनिल और मीनू, अलीका तहसील डब्बाली से बसंत सिंह चन्न, राजकुमार, सुनीता और कुलदीप गांधी, चक 15 पीएस से सर्वजीत सिंह जोसन, सर्वजीत कौर जोसन, गुरमन सिंह जोसन, आदर्श पाल जोसन मेलबर्न, रोबिन सिंह जोसन वेकुनूर कनाडा, इसी गीत के लिए चक 14 पीएसबी से कुलदीप सिंह, राजविंदर कौर, संदीप सिंह, जसकरण सिंह, हरदीप सिंह, मनराज विर्क और इनके बहुत सारे दोस्तों ने हमें भेजा। सूरतगढ़ से भूपेंद्र मिशन, प्रभजोत और बीबी जानविका के, उसकी कदर करने में देर मत कीजिए जो इस दौर में भी आपको वक्त देता हो। बात आपने अच्छी लिखी, कार्यक्रम आप सुनते हैं, इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। कार्यक्रम सुन रहे हैं आशुतोष और वंदना इंदौर में, कार्यक्रम आपको अच्छा लग रहा है, ये बात आपने हमें अपने मेल में लिख के भेजी है, आपका भी हम शुक्रिया करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। कार्यक्रम के अगले गीत के लिए फरमाइश हम पढ़ें गंगानगर से दिनेश इंदु और जयदीप ओझा लिखते हैं कार्यक्रम। गीत गंगा हमारा पसंद का कार्यक्रम है, गाने सदाबहार पुराने इस कार्यक्रम में सभी श्रोता चाहते हैं, अच्छा लगता है रात के वक्त ऐसे गाने सुनना। आज हमें मोहम्मद रफ़ी इंद्राणी मुखर्जी का गाना जुल्म की पुकार फिल्म से इश्क मोहब्बत की कुछ है अजीब रस्में सुनवाएं, अगर सुनवा पाएं तो बिल्कुल हम सुनवाएंगे गाना आपको, आप सुनते रहें कार्यक्रम। संदेश हमें मिला है जिला अंबागढ़ खान आयशा सबीहा अनस और रेहान का, गांव खोखरा वाली श्री गंगानगर से विनोद बारासा, विशाल विकास, रोशनी और शगुन, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नोहनकर, निर्मला और विशाल नोहनकर ने हमें मेल किया, आपका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप कार्यक्रम सुन रहे हैं और साथ ही मेल हमें कर रहे हैं। मजनू कटिल्ला से कमल बालूजा, मधु सागर, उमंग आकांक्षा और माही का संदेश हमें मिला। धनोरा विटाली से जो तहसील नांदूरा जिला बुलढाणा महाराष्ट्र में है, वहां से भगवान पाटिल, मंगेश और सचिन ने हमें संदेश भेजा है। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति और अजस्वी ने हमें संदेश किया। दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा और नूखेलाल वर्मा का संदेश हम तक पहुंचा। संजय ढींगिया, नमन और अपार ने हमें बागपत यूपी से संदेश किया है। ढाबा झालार से अनिल शर्मा और शोभा देवी ने हमें मेल किया, आपका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश और डॉक्टर मदन लाल वर्मा का संदेश हम तक पहुंच गया है। आप सब सुनिए जुल्म के पुकार फिल्म का ये गाना।

गाना आपने सुना इश्क मोहब्बत की कुछ है अजीब रस्में। भोपाल मध्य प्रदेश से मनीष श्रीवास्तव, हर्षिता लाली श्रीवास्तव और विमल श्रीवास्तव के साथ आशा, राधिका और श्रीवास्तव परिवार के सभी सदस्यों ने हमें संदेश प्रेषित किया है। आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप कार्यक्रम सुन रहे हैं और साथ ही आपका मेल भी हमें मिल रहा है। श्री विजयनगर से हनुमान तिवारी, मंजू बाला, दीक्षा, सुरेश सेन और सोनू सेन के साथ इनके परिवार के सभी सदस्यों ने हमें गीत गंगा कार्यक्रम में मेल किया है। आपका हम धन्यवाद करते हैं। शिवपुरी में कार्यक्रम सुन रहे हैं मोनिका जैन और उनके परिवार के सभी लोग। लिखते हैं, कार्यक्रम रात के वक्त इन गानों से हमें अच्छा लगता है। आकाशवाणी सूरत करके हम नियमित श्रोता हैं। एक आध बार हमने टेलीफोन प्रोग्राम में भी टेलीफोन किया था, अगर आपको याद हो तो। जी बिल्कुल, हमें याद है। आप कार्यक्रम सुनते हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हरियाणा से अंकित कांगड़ा, मोनू, मोनी, प्रिंस और सीताराम के साथ साहिल का संदेश हमें मिला है। ये मेल हमें किया है सब्जी मंडी बुल्ढाणा से शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मुस्सू बाबा, आयसा अनम, मुदस्सिर हुसैन और इनके परिवार के सभी लोग। गाना जो आप सुनना चाहते हैं, गाना ये भी हम आपको सुनवाएंगे, बस आप सुनते रहें कार्यक्रम। बाबा कुटी रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी और उत्कर्ष का हमें मेल मिला। शब्बीर भाई, आपका मेल हमने शामिल कर लिया है, इसलिए अब आप ना करें, है ना। लालगिरी को भी हमने शामिल कर लिया है कार्यक्रम में, आप भी ना करें मेल हमें अब। रघुनाथपुरा से जो लालगिरी गोस्वामी है, हमारी बात को सुन रहे हैं ना। हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी के साथ पुनः आपका मेल हमें मिला है। ये मेल हमें किया है टेगोर गार्डन नई दिल्ली से रेडियो के निमित्त श्रोता रविंदर सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी। लिखते हैं, हम भी आपके नियमित श्रोता हैं। बिल्कुल, हमने मान लिया इस बात को और बड़ी शिद्दत से कार्यक्रम सुनते। गुजारिश आपसे, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। बिल्कुल, आप तो रविंद्र भाई हमारे नियमित श्रोता हैं, रेडियो के दीवाने। आप तो कार्यक्रम में शामिल हैं हमेशा। ये मेल हमें किया है सहारनपुर से नाजिया इब्राहिम, सैयद मसरूर और शाइना हसन ने। बुल्ढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला और सुमित कुमार। बुल्ढाणा वटशिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभाताई, दीपाली और श्लोक कुमार। जिला श्री गंगानगर गोविंदपुरा 18 जीजी से राम राम के साथ खुशी राम रणवा, मोहन महला, विजय झाझड़िया, पवन जाखड़, चमन महला, ऋषभ, मनीष, उदेश भींचर, दीपक, राम प्रताप सारण, नीतिवाली से। नीतिवाला लिखना चाहते होंगे मेरे ख्याल से आप।

हनुमान खीरवा, अवतार सिंह, लालचंद महला लिखते हैं। गीत गंगा हम बहुत समय से सुन रहे हैं, हमें बहुत खुशी मिलती है और हमारे मेल बहुत कम शामिल होते हैं। आपने मेल हमें तो आज किया खुशी राम जी, अन्यथा आपके नाम से तो हम वाकिफ हैं, कार्यक्रम में आपके टेलीफोन तो आते हैं। पंकज शर्मा ने मेल किया हमें, जगह का नाम हमें ढूंढना पड़ेगा कुछ तो, मॉडल टाउन करनाल से। सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभाष शर्मा, इसप्रीत शर्मा, किरण ठाकुर, हरिपाल कौर, मीनाक्षी तिवारी और राम राम आपने हमें लिखा है, आपका हम धन्यवाद करते हैं। कार्यक्रम आप सुनते रहें। जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल का हमें मेल मिला, आपका भी हम धन्यवाद करते हैं। ये मेल हमें मिला है भोपालगढ़ राजस्थान से, धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान और पूजा परियार का। अरविंद कुमार ने मेल किया हमें, अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भव्या कुमारी, निवेश, नियति कुमारी, बेनीपट्टी, मधुबनी, बिहार से। गाने आपने जो लिखे हैं उनमें से एक गाना हम आपको जरूर सुनवाएंगे, बस आप सुनते रहें इसी तरह से अपना पसंद का कार्यक्रम गीत गंगा। गीत गंगा में अब हमारे पास संदेश है हमारे सुनने वाले, गांव जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा खटक। एक नज़र फिल्म का गाना आप सुनना चाहते हैं, वो गाना हम आपको ज़रूर सुनवाएंगे, बस आप कार्यक्रम इसी तरह से सुनते रहें जिस तरह से आप इस समय सुन रहे हैं। संदेश हमें मिला है गांव लसूड़िया पाता, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़, एमपी से, गोविंद वैष्णव दिव्या, सुमन कोमल परी, कृतिका और रमेश चंद्र दांगी का। ये हमें संदेश मिला गीत गंगा कार्यक्रम पेशकर्ता रोहिताश शर्मा को, हमारा नमस्कार। सादुल शहर से ये बात लिखी राम कुमार रिवाड़ और चंद्रकला रिवाड़ ने। लिखते हैं, भारतीय सिनेमा के सबसे महान गायक मोहम्मद रफ़ी साहब, जिनकी 31 जुलाई को पुण्यतिथि है। रफ़ी साहब का जन्म 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के अमृतसर के कोटला सुल्तान सिंह गांव में हुआ। उनकी जादुई आवाज़, बहुमुखी प्रतिभा और सादगीपूर्ण जीवन ने उन्हें संगीत की दुनिया का बेताज बादशाह बना दिया। अमर आवाज़ के मालिक मोहम्मद रफ़ी साहब को सादर नमन करते हैं, उनका गाया हुआ एक खूबसूरत गाना हम सुनना चाहते हैं। बिल्कुल, गीत हम आपको मोहम्मद रफ़ी का ज़रूर सुनवाएंगे राम कुमार जी, आप कार्यक्रम सुनते रहें। बहरहाल, गाना हमारे पास हमारे श्रोताओं की पसंद का ये है, पहले ये सुनिए आप, इसमें मोहम्मद रफ़ी भी है।

मीर तकी मीर की ज़मीन पर मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। मिल मिला हमें कवाई बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी हर्षिता और अभिषेक श्रीवास्तव का। लिखते हैं आपके यहाँ से दिल को छू लेने वाला कार्यक्रम गीत गंगा हमें पसंद आता है। वाकई एक से बढ़कर एक इस कार्यक्रम में गीत सुनने को मिलते हैं, हमारा दिल खुश हो जाता है। आपके केंद्र के सभी अनाउंसर्स लोग बड़ी ही मेहनत के साथ पूरे ही कार्यक्रम लाजवाब पेश करते हैं, पर्दे के आगे भी और पीछे के जो लोग हैं उनका भी काम हमें पसंद है। हम लोग परिवार के सभी जन अलग अलग मोबाइल और रेडियो पर बड़े ही ध्यान से प्रोग्राम सुनते हैं। आपकी सभी अनाउंसर्स की आवाज़ कार्यक्रम पेश करने का अंदाज हमें पसंद आता है और ये कार्यक्रम गीत गंगा ये तो हमारी पसंद का है। गाना आप हमें आया सावन झूम के फिल्म का सुनवाए। बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि ये गाना हम आज के कार्यक्रम में आपको सुनवा पाएं। कार्यक्रम में हमारे श्रोता हमें संदेश करते हैं, मेल करते हैं, ख़त भी उनके हम शामिल करते हैं। महेंद्र मोदी ने मेल किया हमें रामगढ़ कैंट से, ममता मोदी, प्रियंका मोदी और तस्नीम कौसर के साथ। गाना आप सुनना चाहते हैं कश्मीर की कली का, ये गाना भी हम आपको सुनवाएंगे। आप कार्यक्रम सुनते रहें। संदेश मिला हमें

इंदु पार्वती हिमांशु सरवण रिणवा हंसराज भाटिया मनीराम रंजीत राम किरूड़ीवाल सुरेंद्र भादू। अस्पताल रोड विश्वविद्यालय सागर एमपी से चंद्रेश गोहर श्रीमती वंदना मयंक तन्वी और जयपाल यादव उत्तम कुमार भगत श्वेता भगत कीसु तासु अर्नब आनंद और सत्यम आनंद ने पाकुड़ झारखंड से हमें मेल किया। अनिल कुमार घोड़के वैशाली प्रजाक्ता वैष्णवी गायत्री और यज्ञेश का हमें ये संदेश मिला है औरंगाबाद महाराष्ट्र से। गांव कलाना तहसील भादरा से विक्रम कड़वासरा सचिन सतीश और योगेश मंसूरी रेडियो श्रोता संघ बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी कमरुन निशा शबिस्ता मोहम्मद नसीब पलक लुबना और यश मंसूरी। 15 पीएस से सर्वजीत सिंह जोसन का संदेश हमने शामिल कर लिया है कार्यक्रम में। अब बारी गीत सुनाने की है, सो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं ये वाला, सुनिए।

अभी आपने आनंद बख्शी का लिखा लक्ष्मीकांत प्यारीलाल की मौसीकी में ये गाना सुना। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों ने आवाज़ें दी। आया सावन झूम के फिल्म का नाम था और सुनना हमारे सभी श्रोता चाहती थी। यूं सतीश श्रीवास्तव ने हमें ये फरमाइश भेजी थी। बहरहाल कृष्ण कुमार डाबी कार्यक्रम सुन रहे हैं, कार्यक्रम पसंद होने आ रहा है। लिखते हैं, गीत जो आपने अभी सुनवाया ये प्यारा लगा। इससे पहले जुल्म के पुकार फिल्म का गाना भी हमें अच्छा लगा। आज का गीत गंगा वाकई यूं गंगा की तरह बह रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद डाबी साहब कि आप कार्यक्रम सुन रहे हैं और बड़े प्यार से आप हमें संदेश कर रहे हैं। नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद ओमकार साई गायकवाड़ और इनके परिवार के सभी लोग, ये संदेश हमें किया है। सिटी पंजाब से सोनू रवि राज गुलशन लक्की जालंधर सिटी पंजाब से, शमशुल कमर राही शाहिना फातिमा अदनान खान फैजान अन्नू उस्मान और कलीम अंसारी ने गंज डुंडवारा से हमें ये संदेश भेजा है। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा पूनम गगनेजा विशाल प्रिया दिशानी और निमित का संदेश मिला। करणवीर हाउस भुच्चो कैंचियां बठिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा मनजीत कौर करणवीर करण दपिंदर वरिंदर कुलदीप सीमू एकम दमन और अभिजीत का संदेश मिला। आज से पहले आपके खत हमें मिलते थे, बड़े प्यारे आप खत हमें भेजते थे। आज आपका संदेश हमने पढ़ा। कार्यक्रम से आपका लगाव, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। जगदीश धाकड़ नाइमा रंजूबाई युवराज सिंह और शिवांगी का संदेश हमें मिला। मालवा रेडियो श्रोता संघ गांव हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से। महाराष्ट्र जालना से विजय पाटिल का संदेश मिला, आपका धन्यवाद। हनुमानगढ़ टाउन से ये संदेश मिला हमें हमारे नियमित श्रोता सुल्तान सिंह तरट का। एनी सॉन्ग आपने लिखा है, साथ में आपके कपिल देव हिमानी जाखड़ है। हिंदुस्तान रेडियो मित्र बने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा तारा देवी सोनाली सोनम और आशीष विश्वकर्मा का संदेश हमें मिला। और ये संदेश हमें भेजा है कविता अरोड़ा ने नई दिल्ली मोती नगर एरिया जोन से। साथ में आपके हैं गौरव अनिल और परिवार के सभी लोग। भोपाल मध्य प्रदेश से मनीष श्रीवास्तव हर्षिता विमल और आशा के साथ राधिका श्रीवास्तव। नाईवाला जिला हनुमानगढ़ से वेद मिड्ढा और अलका मिठा का संदेश हमें मिला है। गाना आप सुनना चाहते हैं प्रेम पर्वत का, ये 1973 में आई फिल्म लता मंगेशकर की आवाज़ में गाना है ये दिल और उनकी निगाहों के सहारे। ये गाना हम आपको जरूर सुनवाएंगे विद भाई, आप कार्यक्रम सुनते रहें। रानी झाम का संदेश मिल गया हमें बिट्टू झाम के साथ नानी बाजार बीकानेर से। भोपालगढ़ जिला जोधपुर से घनश्याम सिंह चौधरी और अंकित सिंह चौधरी का संदेश मिल गया है। हरियाणा झज्जर से बिट्टू भाटिया रीटा रजत और मयंक ने भी हमें संदेश भेज दिया है, आपका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करें। और गाना हम आपको सुनवाते हैं जो हमारे एक श्रोता सुनना चाहते थे, कश्मीर की कली फिल्म का मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में है। तो ये गाना हम रिवार्ड साहब को भी समर्पित करें, वो भी सुने रफ़ी साहब की आवाज़ का ये गाना।

एस एच बिहारी का गाना आपने सुना। ओपी नैयर की मौसीकी थी, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ और कश्मीर की कली फिल्म का नाम था। मिल मिला हमें मंगल जनागल का लिखते हैं, लाइव सुन रहे हैं गीत गंगा कार्यक्रम। अगर संभव हो तो हमारी पसंद का ये गाना आप हमें सुनवाएं। राजा मेहदी अली खान की कल पुण्यतिथि और 31 जुलाई को महान गायक मोहम्मद रफ़ी साहब की पुण्यतिथि है, इसलिए गीत हमने ये सुना। बिल्कुल मंगल भाई, गीत हम आपको ज़रूर सुनवाएंगे, आप सुनते रहें कार्यक्रम। कार्यक्रम गीत गंगा के लिए हमारे बहुत सारे श्रोताओं के संदेश हमें मिल रहे हैं, साथ ही आपके मेल हमें मिल रहे हैं। कंवर कॉलोनी बुड़वास से प्रवीण शिमाली, मीना शिमाली और इनके बहुत सारे दोस्तों ने हमें मेल किया। खरगोन मध्य प्रदेश में ये कंवर कॉलोनी है। खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य लाडू और नानक मल्होत्रा ने हमें संदेश किया। कुरुक्षेत्र दमदम एयरपोर्ट, फिल्म कुरुक्षेत्र का गाना सुनना चाहते हैं। दमदम एयरपोर्ट कोलकाता से बसंत कुमार सिन्हा, अजय कुमार सिन्हा, अभय कुमार सनातनी, रिमू तनुश्री गुप्ता और रेखा देवी। मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना और निवान का संदेश हमें मिला। नीतीश कुमार देवांगन ने दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, पूना राम कृष्णा देवांगन के साथ मेला में किया पलारी छत्तीसगढ़ से, धन्यवाद आपका। गांव व डाकघर निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत और इनके बहुत सारे दोस्तों का संदेश हमें मिला है, आपका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप कार्यक्रम गीत गंगा जो आकाशवाणी सूरतगढ़ से प्रसारित होता है सुन रहे हैं। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से आकाशवाणी सूरतगढ़ के बड़े पुराने श्रोता बबलेश पंवार, डेनी पंवार, मनीष पंवार आपके साथ हैं। दिनेश चौहान रामदेवरा से जो नेत्रहीन हैं और कार्यक्रम आकाशवाणी सूरतगढ़ के नियमित सुनते हैं। साथ में आपके बाबूराम जयपाल डांगरी से, खुदाबख्श खलीफा खलीफों की बावड़ी से, बहुत बहुत धन्यवाद बबलेश भाई कि आपने हमें संदेश किया। कृष्ण कुमार डाबी, भूपत कुमार डाबी, राधा तंवर, विक्रम, अर्चना और साक्षी ने हमें गांव टूंकिया तहसील सिंधरी जिला बालोतरा राजस्थान से मेल किया है। कार्यक्रम आप आकाशवाणी सूरतगढ़ के नियमित सुनते हैं। मंगल जनागल ने चक 5 MD पत्रोड़ा से हमें मेल किया। मंगल जनागल, श्रीमती रोशनी, अंकुर, इंदु और डॉक्टर सुनील जनागल। गाना जो आप सुनना चाहते हैं दुल्हन एक रात की फिल्म का, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गाना मिलेगा आपको, आप सुनते रहें कार्यक्रम। स्वर्ण सिंह गांव दोलेवाला जिला मोंगा पंजाब से हमें मेल करते हैं। भंवरलाल मास्टर हमें मेल करते हैं लखवाली हेड से। साथ में आपके कृष्णा सौरभ, विशाल, ममता राजबाला, नव्या लक्षिता, मोहम्मद रफीक और संगरिया से इनके साथ अटैच हैं मुकना राम। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से का हमें संदेश मिला है, धन्यवाद आपका। शेरवानी स्कूल गंज टुंडवारा यूपी से आफ्ताब अंसारी, रियाज, मोहम्मद कैफ, अनवर लुबना और आलिया का संदेश हमें मेल हमें मिला है। अरविंद कुमार साहब ने हमें मेल करके पुनः याद दिलवाया, उनका गाना हम आपको सुनवाएंगे। सुरेंद्र संधू ने कोलाम रोड हरगोविंद नगर नवा शहर पंजाब से हमें मेल किया है। सुरेंद्र संधू, अनीता, रोहित, रितेश, शिखा, प्रीतीश और मैक्स, कोलाम रोड हरगोविंद नगर नवा शहर पंजाब। सुरेश नारंग साहब का मेल मिल गया हमें। स्वयंवर फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं। सुरेश नारंग, आशु नारंग, सोनाली और इनके परिवार के सभी लोग, ये गाना हम आपको ज़रूर सुनवाएंगे सुरेश भाई।

बस आप कार्यक्रम इसी प्यार से सुनते रहें। एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या अरब और एसके पप्पी का मेल हमें मिला है।

राजा मेहदी अली खान के बोल मदन मोहन की मौसीकी, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, दुल्हन एक रात की फिल्म का गाना आपने सुना। अभी ये संदेश हमें मिला है नोहर ज़िला हनुमानगढ़ से। नरेंद्र सुथार, मनोज सुथार, हिमांशु पवन, शंकर बिहारी, शिव कुमार, सोनू मिस्त्री और मोहन लाल लिखते हैं, कल गुरु पूर्णिमा है, उसकी शुभकामनाएं। गुरुओं का आदर सम्मान करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और सावन का महीना भी आ गया, सावन के गीत और बरसात का मौसम बहुत सुहाना खूबसूरत है, और ये कार्यक्रम गीत गंगा ये भी हमें लिखते हैं बड़ा प्यारा लग रहा है। सावन का गीत और लता रफ़ी जी की आवाज़ का क्या कहना। 31 जुलाई को मोहम्मद रफ़ी की पुण्यतिथि है, उन्हें श्रद्धा सुमन हम भेंट करते हैं, और गाना अनजाना फिल्म का आप हमें सुनवाएं। बिल्कुल, हम सुनवाएंगे गीत आपको, आप बस सुनते रहें कार्यक्रम। संदेश हमें हमारे श्रोताओं के बराबर मिल रहे हैं, कुंडलवारी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजया लक्ष्मी, राजेश और राकेश के साथ ऋषिता का संदेश मिला। जिला नांदेड़ यतला महाराष्ट्र से शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल, शुभम, अर्णव, राखी, तृप्ति और दुर्गेश्वरी। गांव कोला हनुमानगढ़ से महावीर सुथार, कैलाश, युवान और नरेंद्र के साथ लक्षिता। गाना आप सुनना चाहते हैं अनजाना फिल्म का, जरूर हम सुनवाएंगे। धनुरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद, बीबी आलिया, रयान बाबू। कुलविंदर सिंह, सुखप्रीत, जसदीप ने गांव 4M से हमें संदेश किया। कल्याण मुंबई से किशोर हिवराले, सुजाता और प्रतीक का संदेश मिला। प्रवीण सोनी, कलावती सोनी और जगदीश जोरी ने गांधीनगर, गांधी ग्राम, गुजरात से हमें संदेश किया। रघुवीर नगर से दिलावर खान और हसीना बानो के साथ एलिजा नायाब और लड्डू ने हमें संदेश कर दिया है। पटेल नगर मलोड से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया का थोड़ा देरी से हम संदेश पढ़ पा रहे हैं, माफ़ी हम चाहते हैं। गीता रानी, गगनदीप और आरजू के साथ गुड्डू उनके इस मेल में शामिल है, गाना तैयार है।

गाना आपने सुना अभी आनंद बख्शी का, लिखा हुआ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, मौसीकी दारा पंडित संजय शर्मा प्रियंका शर्मा ने चौटाला हरियाणा से हमें मेल किया। गाना आप सुनना चाहते हैं, हकीकत फिल्म का बोल आपने लिखे, मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था। बिल्कुल गीत हम आपको सुनवाएंगे दारा भाई, आप सुनते रहें कार्यक्रम जिसका नाम है गीत गंगा। गीत गंगा में हमारे श्रोताओं के संदेश हमने पढ़े, कुछ रह गए, कुछ हम अभी और पढ़ने वाले हैं। ये मेल हमें मिला, ये संदेश हमें मिला है गांव अरायन से, बनवारी लाल जयपाल, बिमला सोनू, ममता, दीक्षा, मोक्ष, सुशांत, विक्रम जयपाल, पूनम चालिया और इनके परिवार के लोग, चक 58 NP रायसिंह नगर से, सुल्तानराम मलखट, सरस्वती देवी मलखट, हरवंश लाल मलखट।

अनवारी लाल, गोपी राम, ललित कुमार, नरेंद्र कुमार, मीनाक्षी और इनके परिवार के सभी लोग। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चेतन मस्किन, मेघा मस्किन, राहुल खुराना, रचिता और किशोरी धान, अलीका डब्बाली से बसंत सिंह चंद, राजकुमार सुनीता, कुलदीप गांधी, मेरे नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत ग्वांडकर, राही सरिता ग्वांडकर, प्रणीता लाडा टुकटुक, एकांश सुमित कुमारी ध्वनि और इनके परिवार के सभी लोग।

इसी गीत के साथ आज के इस कार्यक्रम से अपने दोस्त रोहिता शर्मा को अनुमति दें, इस बात के साथ कि वो अपने घर चला गया, अफसोस मत करो, इतना ही उसका साथ था, अफसोस मत करो, वो देखो फिर से आ गई फूलों पे तितलियां, एक रोज़ वो भी आएगा, अफसोस मत करो। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी सूरतगढ़ है। रात के 11 बजे हैं। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त करने होंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण के लिए, उनकी रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था। कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं होने और वास्तविक सुधार नहीं करने का आरोप लगाया। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग

छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जाँच आवश्यक है। महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर सचिव स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य तथा उद्योग और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को गति देना था। बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। इस वर्ष जून माह में भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीनों में उच्चतम 7.3% पर पहुंच गया। आज जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार जून महीने की विनिर्माण क्षेत्र में 7.8 जबकि बिजली और गैस आपूर्ति क्षेत्र में 10.6% की वृद्धि दर्ज हुई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथा कथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का छलावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही। ओडिशा में लगातार मानसूनी बारिश के कारण राज्य की प्रमुख नदियों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं केरलम के 10 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। चीन में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम बस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीत लिया है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।